0: जी लाता तू मेरी टेंशन दूर करती। नाले तेरी ताई कहती सी भी पता करी इंडियन बॉक्स बेट दा, ओनू वाला फिकर लगा रहिंदा लीड़े लते सामण दा। लिया फिर पता लिखा फिर पंजाबी फर्नीचर दा। लिखो फिर 2A 130 किंगस्टन रोड अंडरवुड ब्रिस्बेन। आ कॉल कर लियो ताया जी 0404-000-536 ते। वेबसाइट है जी punjabifurniture.com.au। नवी अपडेशन दे लई फॉलो करो फेसबुक पेज नू @punjabifurniture।
1: अपनी बिजनेस की तरक्की लई तुसी भी हरमन रेडियो दियां सेवावां हासिल कर सकदे हो। हरमन रेडियो ते अपने बिजनेस की एड देने लई जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नू स्पॉन्सर करन लई संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन विजिट करो।
2: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ
3: ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ
4: ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਰੀਝ ਪੁਗਾਵਾਂਗੇ ਮਨ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ।

अपना मुंह धूप वाल रखोगे तो परछावे थोड़ी पिठ से पिछले पासे ही पैणगे। विचार बार ट्विटमैन चंगे विचारां लई जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

0: सुनावा अखाण सियाणिया दा ज्ञान। लो जी अज दा मुहावरा
1: आटा गुन्दी हिल्दी क्यों है। इस दा मतलब है कि जदों कोई आने बहाने किसे दे नुक्स कड्डे तां ए अखाण वर्त्या जादा है।
0: मुहावे अते अखाण साडी अमीर सभ्यता दियां निशानियां। हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया आस्ट्रेलिया आस्ट्रेलिया
2: ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਰੀਝ ਪੁਗਾਵਾਂਗੇ ਮਨ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ ਤੇ।

0: अखां जद चुंध्यादे मंदर मन अंदर प्रगास करी भीड़ा विच गुआच न जावी आपे दा एहसास करी।
1: दुनिया भर दे पंजाबी लेखकां दी प्रतिनिध जथेबंदी केंद्रीय पंजाबी लेखक सभा रजिस्टर दा मैं वाइस प्रेजिडेंट सुलखण सरहदी आस्ट्रेलिया दे पहले 24 घंटे पंजाबी अते पंजाबी सभ्याचार वास्ते प्रोग्राम देण वाले हरमन रेडियो लई शुभ इच्छावां भेट करदा हां। मैं उम्मीद करदा हां कि हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया दे हर पंजाबी दे घर दी शान वी बनेगा अते जरूरत वी।
0: घर दे विच वी हाजर रहना, पौणा विच वी कोल उड़ना, फुल विच जिद्दां खुशबू वसे घर विच एदां वास करे।
2: हरमन रेडियो, हरमन रेडियो।

0: मेरा झूठ चढ़ जाए पतझड़ वांगू, मेरा झूठ चढ़ जाए पतझड़ वांगू, खिड़ेगी हमेशा हकीकत खिड़ेगी। इसलिए असि लेके आने तुहाडे लई ताजा तरीन सोहणियां ते खुशनुमा सच्चियां ते सुच्चियां खबरां दा सिलसिला। देश ते विदेश दीआं खबरां ते जानकारियां दी अपनी डेली डोज लई जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल, जो दवेगा तुहानू तुहाडे कल अज ते कल दी पूरी खबर। तुहाडा अपना हरमन रेडियो।
1: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसीं।

सफेद बारे वेल्स की कहावत है कि सियाणा बग्याड़ अपने पंजे लुका के रखता है। विद्या विचारी ता पर उपकारी

0: सियाने दी ताकत आखदी है नहीं सच तकड़े दी सियाणप आखदी है कि दुश्मन नू कादे लई मारना है ओदे अंदरली दुश्मनी नू मारो ते दुश्मनी नू मारन लई किसे तीर दी नहीं शमशीर दी लोड़ नहीं हुंदी बस कुरकी चाहीदी है गल ना बने तां बुरकी चाहीदी है बुरकी नाल उठे होए हाथ हिलदी पूछ बन जांदे ने बुरकी नाल दुश्मन अंदरों दुश्मनी तक ही होर भी बड़ा कुछ मर जांदा है दुश्मन नू कादे लई मारना है तकड़े दी सियाणा पाखदी है
1: तुहाडे मन दी रीझ पुगावांगे मन चाहे असी गीत सुनावांगे हर मन रे

ना शुकरापन बारे पैरागुआ दी एक मशहूर कहावत अनुसार नेकी विचों सब तो छोटी नेकी किसे दे एहसान दा धनवादी होना है अते बुराई विचों सब तो बड़ी बुराई किसे दे एहसान नूं भुल जाना है। लेखक परमिंदर सोढी, किताब संसार प्रसिद्ध मुहावरे। चंगे अते सोहणे विचारां नाल जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

0: अपने बिजनेस की तरक्की लिए तुसी भी हरमन रेडियो दियां सेवावां हासिल कर सकते हो। हरमन रेडियो ते अपने बिजनेस की एड देने लिए जा किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नु स्पॉन्सर करने लिए संपर्क करो accounts@harmanradio.com या harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन विजिट करो।
1: तुसी सुन रहे हो अपना हरमन रेडियो 24 घंटे 7 दिन ऑस्ट्रेलिया दा पहला पंजाबी रेडियो हरमन रेडियो।

0: साड़ी अमीर सभ्यता दियां निशानियां। एक गोदड़ी विच दो फकीर समा सकदे हन, पर एक राज विच दो राजे नहीं समा सकदे।
1: इस अखाण विच एह सच्चाई प्रगटाई गई है कि गरीब तां गरीबां नाल रल के रह सकदे हन, परंतु अमीर आदमी दूजे अमीर नूं देख के ईरखा ही करदे हन।
0: मुहावरे अखाण अते पंजाबी बोले हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया
2: तुहाडे मन दी रीझ पुगावांगे, मन चाहे असीं गीत सुनावांगे। हरमन रेडियो।

0: रोटी हजम नहीं होंगी। वरतो गोल्डन ग्रेन फ्लोर मिल्स का गरेवाल चक्की आटा, ताजा घट कैमिकल की वरतों वाली कणक जिड़ी की सीधी खेतों चो मिल च लिया जाती। आस्ट्रेलिया का बनिया शुद्ध आटा, ताजा खाओ ते तंदुरुस्त रहो। आटे तो इलावा ताजा बेसन, लड्डुआ लई स्पेशल बेसन, मल्टीग्रेन आटा, काबली छोले, मसरां दी दाल, चना दाल, सोयाबीन ते बादाम भी साडे अपने प्रोडक्शन हन। वधेरे जानकारी लई विजिट करो गरेवाल गोल्डन ग्रेन .com.au या फोन करो 0428-895-564।
1: आ गया तुहाडा ताया आस्ट्रेलिया दे ब्रिस्बेन चो। ओ आजो आजो ताया जी, वेलकम। ताया अज रात ता साडे कोल ही रहना पऊ थोनू। ओ मैं आ ता गया, मैं ता नींद इंडिया आले गद्दे ते आउंदी आ। इथों किथों मिलू इंडिया आले गद्दे? लो ताया आपां लै आउने इंडिया आले गद्दे पंजाबी फर्नीचर तो। पंजाबी फर्नीचर? जी हाँ, पंजाबी फर्नीचर इथों मिलदा। सारा इंडियन फर्नीचर जो भी तुहानू चाहिदा सब इथों मिलू। मंजे, धार्मिक फोटो, चादरां, साइकिल, चूल्हे, दातियां, रंबे, कई सब कुछ इथों मिलू। ताया जी लाया था तू मेरी टेंशन दूर करती। नाले तेरी ताई कहिंदी सी भी पता करी इंडियन बॉक्स बेड दा, ओनू वाला फिकर लगा रहिंदा लीड़े लते सामने दा। लिया फिर पता लिखा फिर पंजाबी फर्नीचर दा। लिखो फिर 2A130 किंगस्टन रोड अंडरवुड ब्रिस्बेन। अकाल कर लियो ताया जी 0404-000536 ते। वेबसाइट है जी punjabifurniture.com.au। नवी अपडेशन दे लई फॉलो करो फेसबुक पेज नू @punjabifurniture।
2: तुसी सुन रहे हो अपना हरमल रेडियो, 24 घंटे 7 दिन आस्ट्रेलिया दा पहला पंजाबी रेडियो। हरमल रेडियो, हर्मल रेडियो।

सत श्री अकाल जी, माफी चाहुंदा हां कि मैं न्यूजीलैंड तो अज खबरां दा बुलेटिन नहीं पेश कर सकिया। सुनदे रहो हरमन रेडियो, परमिंदर सिंह पापा टोयटे वालों सत श्री अकाल।

कुलदीप मानक, मोहम्मद सदीक, रणजीत कौर, मोहम्मद रफी, शिंदा, दिलशाद अते होर चोटी दे पंजाबी गायकां दे हिट गीत रोज दुपहरे 12 तों 1 बजे सिडनी समय अनुसार हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया ते। अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसीं।

0: पंजाबी गीतां दा खजाना चोटी दे कलाकारां दे पुराने ते नवे गीत हरमन रेडियो ते माणो आनंद सुनो हर रोज।
1: केड़े केड़े देशां विच की वापर रहा है, हर देश विच हो रही भिन्न भिन्न गतिविधियां दी जानकारी मुहैया करवाएगा हरमन रेडियो। हरमन रेडियो विदेशी बसदे पंजाबियां दी रूह नूं पंजाब दी मिट्टी नाल जोड़न दा उपराला।

पैसे बारे स्पेन दी कहावत अनुसार पैसा बिल्लियां नू नचण अते कुत्तियां नू गौण ला सकता है। लेखक परमिंदर सोडी किताब संसार प्रसिद्ध मुहावरे चंगे अते सोहणे विचारां लई जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

0: के दोप में फंसो।
1: चट्टा के मुंडे साढ़े नाल है जो चंडा गाड़ के बदमाशी करना है।
2: थोड़ा थोड़ा हंसना जरूर चाहिए।
1: रुक दे फट्टा।
3: वैसे कुगी साहब तुसी नवी सदी दे तोहफे बड़े वधिया वंडे जे, पर कुगी साहब वक्त दे नाल नाल बाकी दुनिया ने इनी तरक्की कीती है, पर असी लोग पिछे क्यों हां?
4: ना गल सुन, तू और की तरक्की करनी है? चंगा भला बांदर तो बंदा बन गया, तेनू और की चाहिए?
3: हद हो गई तुहाडे वाली कुगी साहब, मैं कल्ला ही बांदर तो बंदा बनया? सारे बांदर तो बंदे बने हैं।
4: बने तो असी नहीं हां, पर साडा पता नहीं हो लगता। शक्ल वेख के लगता जे ताजा ताजा बांदर तो बंदा बने।
3: ओहो कुगी साहब, तुसी हर रोज मेरी बेइज्जती क्यों करदे हो?
4: ते तू एक दिन छड्ड के आया कर मेरे घर।
3: खैर कुगी साहब, केड़ी गल नूं तुसी किधर लै जांदे हो? मैं गल तरक्की दी करन डिया सी कि अमरीका, कनेडा, जापान, इंग्लैंड वर्गे देश तैयार बैठे आ वे कदों असी चंद्रमा ते जाके कब्जा करिए, पर अपना इंडिया लगदा चंद्रमा ते जाने नहीं चाहुंदा।
4: तैनूं फिर अजे इंडिया दीआं स्कीमां दा नहीं पता
3: की?
4: जे तू कल्ला पागल है ते सारा इंडिया पागल नहीं।
3: की मतलब?
4: बेवकूफा, इंडिया दे स्कीम ही बड़ी वधिया बना के बैठा है कि जदों अरबां खरबां डालर खर्च के कनेडा, अमरीका, जापान वाले चंद्रमा ते पहुंच गए, वो चंद्रमा दे कमलिया भार नाल ही थल्ले नूं आ जाना, जदों चंद्रमा नेड़े आ गया आपां चढ़ जांगे।
3: वाह कुगी साहब, मन गया तुहाडी स्कीम नूं, कुत्ते नहीं खांदे फीम नूं।
4: हुण कुत्ते फीम कित्थों खाणगे? पंजाब दे गभरुआं कोलों फीम बचेगी ते कुत्ते खाणगे? वैसे भी अफीम दा ते स्कीम दा काफिया बड़ा मिलदा है। आ स्कीम ते अफीम तो याद आया ना, पिंड वाला फोमन सिंह अमली, वो भी बड़ा स्कीमी है।
3: अच्छा,
4: पिछे जे साडे पिंड वाला बिकर वलैतिया आया बाहरों, ते ओ तेनू पता बड़े साऊ सुभा दा, वैसे भी बड़ा लोकां दी मदद करन वाला, गऊ गरीब दी।
3: अच्छा,
4: दान पुन करन वाला बंदा, पैसे बहुत वंडदा। ते हुण अमली जिहड़ा, ओनू पता भी नशे पत्ते आसे ते देने नहीं बिकर ने।
3: अच्छा,
4: ते तोट बड़ी लगी ओनू एक दिन नशे दी, ते सोचा भी पैसे आप माठ सकते हैं सिर्फ इस बिकर वलैतिए को।
3: अच्छा,
4: ओनू स्कीम ना सोचे भी केड़ी स्कीम ना को पैसे ठगी है। फिर राती सुते पे कि स्कीम दिमाग च आ गई, तड़के 5 बजे जाके बिकर वलैतिए दा बुआ खड़का दिता। बिकर वलैतिया सिर सिर बेचारा उठिया, बासिया जी ले बहार आया, आके बुआ खोलिया गया, हां भी अमली आ किधर आया? अमली नाल ही पूरी स्कीम ना।
5: ओ गई ना बिकर सिया, मैं सुता सी राती दे सुपने च, तेरा सुरगवासी प्यो मिलिया मेनू, कहिंदा भी अमलिया सवेरे उठदिया नाल ही सवेरे सवेरे जाके मेरे मुंडे तो रुपया 5000 ले आई।
4: ओ समझ गया बिकर वलैतिया, तो ये स्कीम मार के मेरे को पैसे ठगना आया।
3: अच्छा,
4: पैसे किसी को इन्ने वादू तो नहीं ना होंदे। अगो ओने भी स्कीम मारी फिर बिकर वलैतिया ने,
3: की
4: कहिंदा अमलिया यार प्यो मेरा ता मेरे सुपने च भी आया जाती, मेनू आके कहिंदा सी भी मैं अमली नूं किसे तरीके घेर के तेरे को लियाऊंगा, ओनू इत्थे बूहे च बिठा के 100 छेत्र सिर च मारी। अमली निमो झूना जिहा हो गया, कहिंदा अमलिया की सोचदा?
5: ए मैं सोचदा बिकरा आ तेरा प्यो बड़ा इक्या वाला, मेनू कुछ कह गया तेनू कुछ कह गया।
6: Harman Radio
7: 24/7। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਿਮੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ।
8: ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ, ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ, ਸ਼ਿੰਦਾ, ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤ ਰੋਜ਼ ਦੁਪਹਿਰੇ 12 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਸਿਡਨੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ। ਅਗਲੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਚ ਸੁਣੋਗੇ ਤੁਸੀਂ

0: चल रहे ने नवे पुराने हिट गीत हरमन रेडियो हरमन रेडियो
1: सत श्री अकाल जी। ए हरमन रेडियो है अते हरमन रेडियो दा तीसरा पड़ा चल रहा है। सन 2000 विच आस्ट्रेलिया दे सिक्की दे तुरे पिंड बुलगुलगा तो 2 घंटे दे प्रोग्राम दी शुरुआत हुई सी। सन 2005 तो लैके 8 तक सिडनी अते मेलबर्न दे विच FM दे साइड बैंड ते हैरिस पार्क स्टूडियो पैरामेटा तो हरमन रेडियो चलिया। सन 2011 विच हरमन रेडियो नू पंजाबी हिंदी दी पहली ऐप राही आईफोन ते एंड्रॉयड ते लांच करके वर्ल्ड वाइड हो गया। जुड़े रहो हरमन रेडियो नू।

मेहमान बारे जापान दी कहावत है कि चंगा लगन वाला प्राहुणा भी लोड तो ज्यादा रुकन नाल थकाउन लगदा है। सुने विचारां दे अंग सन

अभी चलो काम से सुनी जाओ हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया।

0: देख के लगती रोशनी भारी डालियां का कट हो गया उत बोतल मंगा लिया ताली
1: महल नाल मारी दर्शन माना दा जिन कुटी रोशनी सारी
0: हाने थाने तो

0: सिडनी समय दोपहर नू इस घंटे विच तुसी सुन रहे हो एक पुराना अते एक नवा हिट गीत।
1: सत श्री अकाल जी, मैं हाँ अमनदीप सिंह सिद्धू, डायरेक्टर हरमन रेडियो। दुनिया दे हर कोने तो पंजाबी साडे नाल जुड़दे हन अते आला दर्जे दी पेशकारी दा आनंद माणदे हन। हरमन रेडियो दे आस्ट्रेलिया तो सारे प्रेजेंटर मुफ्त सेवा निभाउंदे हन। तुसी भी साडी मदद कर सकदे हो, सानू वधिया वधिया जानकारियां भेजो अते साडियां अपनियां आईफोन अते एंड्रॉयड दीयां एप्लीकेशंस एप स्टोर तो डाउनलोड करके उस विच सानू सुनो। तुहानू रेडियो दे नाल अखबार, पॉडकास्ट, वधिया वीडियो, लेख, दरबार साहिब अते होर गुरधामां दा लाइव कीर्तन सुनन अते देखण नू मिलेगा। ऐप विचों ही सीधा सुनेहा कल सकोगे। अज ही साडियां एप्स इंस्टॉल करो। धन्यवाद।

0: माफ करी। मैं अगले जन्म च आवांगा, चलिया हां मैं वादा करके, फिर चिट्टे नूं मूंह ना लावांगा, मुड़ चिट्टे नूं मूंह ना लावांगा।
1: सैड जां रोमांटिक गीतां दे शौकीन हो।

0: रोटी हजम नहीं होंगी। वरतों गोल्डन ग्रेन फ्लोर मिल का गरेवाल चक्की आटा ताजा घट कैमिकल की वरतों वाली कणक जिड़ी कि सीधी खेतों चो मिल च लाई जाती आस्ट्रेलिया का बनिया शुद्ध आटा ताजा खाओ ते तंदुरुस्त रहो। आटे तो इलावा ताजा बेसन लड्डुआ लई स्पेशल बेसन मल्टी ग्रेन आटा काबली छोले मसरां दी दाल चना दाल सोयाबीन ते बादाम भी साडे अपने प्रोडक्शन हन। वधेरे जानकारी लई विजिट करो गरेवाल गोल्डन ग्रेन .com.au या फोन करो 0428895564।
1: आ गया तुहाडा ताया आस्ट्रेलिया दे ब्रिस्बेन चो। ओ आजो ताया जी वेलकम। ताया अज रात साडे कोल ही रहना पऊ थोनू। ओ मैं आ ता गया मैं ता नींद इंडिया आले गद्दे ते आउंदी आ। इथो किथो मिलू इंडिया आले गद्दे? लो ताया आपां लै आउने इंडिया आले गद्दे पंजाबी फर्नीचर तो। पंजाबी फर्नीचर? जी हाँ पंजाबी फर्नीचर एथो मिलदा सारा इंडियन फर्नीचर जो भी तुहानू चाहिदा सब एथो मिलू। मंजे धार्मिक फोटोआं चादरां साइकिल चूल्हे दातियां रंबे कई सब कुछ एथो मिलू। ताया जी लाया था तू मेरी टेंशन ही दूर करती। नाले तेरी ताई कहिंदी सी भी पता करी इंडियन बॉक्स बेड दा ओनू वाला फिकर लगा रहिंदा लीड़े लते सामने दा। लिया फिर पता लिखा फिर पंजाबी फर्नीचर दा। लिखो फिर 2A130 किंगस्टन रोड अंडरवुड ब्रिस्बेन। आ कॉल कर लियो ताया जी 0404-000-536 ते। वेबसाइट है जी punjabifurniture.com.au। नवी अपडेशन दे लई फॉलो करो फेसबुक पेज नू @punjabifurniture।
2: तुसी सुन रहे हो अपना हरमन रेडियो 24 घंटे 7 दिन आस्ट्रेलिया दा पहला पंजाबी रेडियो हरमन रेडियो।

0: जट्टा के मुंडे साढ़े नाल है, चंडा गाड़ के बदमाशी करना है।
1: थोड़ा थोड़ा हंसना जरूर चाहिए।
2: मीडिया ने बच्चे चुस्त कर देते ने, मां प्यो दी निक्की निक्की गल नूं कोखदे ने। अग्गे हुंदा सी मां प्यो ने आपस च लड़े जाना ते बच्चियां ने पतंगा उड़ाई जानियां।
3: असि निके निके हुंदे सां ते आप सारे महल्ले च दस देना, कौलन साडे मम्मी डैडी लड़ाई हो गई, डैडी साडा गालां कड्डन लग पिया, मम्मी कहंदी मैं तां चले ही जाना चले ही जाना, डैडी कहंदा जा चली जा मैं होर लै आनी आ, वेखी काका हुण साडी नवीं मम्मी आ जानी। पर भरावा अजकल दे बच्चे इन्हा गल्लां नूं बड़ा सीरियसली लैंदे, पर मां प्यो नहीं ना सोचदे कि साडी इस लड़ाई दा ना बच्चियां ते की असर पै रिहा। साडे नाल दे घर 24 घंटे मियां बीवी च क्रॉस फायरिंग चलदी रहिंदी, ते उन्हां दा 8 साल दा बच्चा एक दिन मैं वेख्या ते गुरु महाराज दी फोटो अगे बैठा गाउंदे।

0: क्या बात है महाराज, कैसा कमाल दा बच्चा है, उधर सानू भी दर्शन करा दियो ना किते।
1: आजकल जेड़े मर्जी बच्चे दे दर्शन कर ले, सारे इको जाएंगे भरावा।
0: सची यार, अजकल दे बच्चे वेख के ना दोबारा जमन नू जी करदा ही।
1: ओ दवा कर, ओ दोबारा जमन नू, तू ते पहली वारी पता नहीं किदा जाम पिया। ओ इना बच्चियां दे कल्ले कल्ले दे कमरे च अजकल कंप्यूटर पिया है। सानू स्कूलों छुट्टी हो जांदी ही, पर साडी फट्टी तो गाची नहीं सुकदी हुंदी। सूरज दे तरले मारी जाने पे सूरजा सूरजा फटी सका, नहीं सिखाउणी ते घर नू जा। दोपहर नू जाके किते फटी सुकनी, फिर भैन जी ने उड़ा उड़ा लिखण नू देना, असी अजे ठठे तक पहुंचना छुट्टी हो जानी, फिर मैडम ने उसे फटी ना फेंक देना।
2: हसे हसे हसे चारे पासे कॉमेडी आवर।

0: है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूं समंदर में उतर जाऊंगा।
1: हो पुत्रो ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। हो पुत्रो ठंडे ठंडे पानी से।
2: ओए बतेज दिल दा बुआ खोल, मैं अंदर आ रहा।
3: चाचा पांच मिनट वेट कर, मैं अजे नहा रहा।
1: ओ पुत्रो ठंडे ठंडे पानी से।
2: भाई पहला मरासी देखा जेड़ा नहाने तो नहीं घबरा रहा।
4: शर्मा जी जल्दी बुआ खोलो, मैं अंदर आना चाहनी आ।
2: की गल करो नहा के नहीं आई, जेड़ी आउंदी है नहाना चाहनी आ।
4: चाचा जी मेनू पहला ही पता सी तुसी शर्मा जी दे करे होवोगे, इस करके मैं सीधी इधर आई आ।
2: ना हाथ च चाके मठियाई, निर्णय काल जे केड़ी खुशखबरी लेके आई है।
4: चाचा जी तुसी नाना बन गए।
2: ओए काम कर, नजले नाल चार चट्टे की आके नाना ही दसन लग पी।
4: चाचा कहा के तो बड़े खुश रहने हो।
2: ओए कमलिए दुनिया च आही ता एको एक रिश्ता जिदे च कहन आले ते कहाउन आले दोनों नु चा चढ़ जांदा, यानी के चा चा। मुबारका भाई मुबारका। नीलू बैठ।
4: पहला तुसी काके दी फोटो वेख के दसो कि काके दा मुहांदरा कीते गया है।
2: भाई नीलू गुस्सा ता करी ना, नक ता मुंडे दा बिल्कुल कन ते गया।
4: की आवा तवा बोली जाने हो, नक ता हमेशा बच्चे दा मां ते जांदा हुंदा है।
2: ते मां दा नक ता आया जिवें मुंह ते मकडाना लिखया हुंदा।
4: इधर फड़ाओ मठियाई।
2: फड़ ला, मेनू ता वैसे भी आ खान तो मनाही। होर सुना तकड़ियां।
4: तुसी तकड़े हो।
2: क्यों तै तकड़े नू मेथों कुश्ती करवानी है। तू सुना तकड़ियां।
4: की तकड़ी तकड़ी लाई है। हाँ दसो तकड़ियां।
2: बाहरों ही तकड़ियां, अंदरों ता पूरी खचरियां।
4: हाँ?
2: मेरा मतलब बाहरों देखण नू ता अनार लगदियां पर अंदरों बीमार लगदियां।
4: थोनू किन्ने कहा कि मैं बीमार हाँ?
2: मैं सिद्ध कर सकदा तू बीमार हाँ।
4: ना मेनू केड़ी बीमारी है।
2: आपां हुणे दस दिंदे आं। आए दस, राती नींद आउंदी है?
4: आउंदी है।
2: सुपने आउंदे
4: आ? आउंदे है।
2: सुपने च मैं आउना?
4: नहीं।
2: बस यही ता बीमारी है। ओए छोटिए तू ता सुपना ही होगी, तू ता मिलनो ही रहेगी।
4: चाचा जी तुसी कल्या नहीं नी मेनू मिस कीता। मेनू पता लग्या पिछले साल मेरे सारे दर्शकां ने अमृतसर दा पानी विच भी मेनू बहुत मिस कीता है। ताही ता मैं हुण आई आ भी पुछ के ता आवां भी ऐतकी छनकाटे च की कुछ पाणा है।
2: पाणा की आ? तू मैं ते बाला, बाकी मिर्च मसाला।
4: फिर भी तफसील नाल दसो।
2: लै तफसील नाल सुन ला। हासे दियां लाउणियां झड़ियां ने, कुछ सच्चियां ने, कुछ घड़ियां ने, कुछ मिठियां ने, कुछ खरियां ने, कुछ इधरों उधरों फड़ियां ने, कुछ बातां वतनों पार दियां, कुछ गुस्से दियां, कुछ प्यार दियां, कुछ अंदर दियां, कुछ बाहर दियां, कुछ गल्लां मेरी सरकार दियां।
4: चाचा जी हसण वाले थोड़े ने पर बहुते थोतो सड़ने, सो सोच समझ के पंगा लियो, पैणे हर जाने पर ने।
2: ओए जद उखली विच सिर दे दिता फिर मोलियां तो की डरने, चतरे ने विच छणकाटे दे ऐतकी गिण गिण कोके जाने।

0: के धूप में हंसो।
1: जट्टा के मुंडे साढ़े नाल है जो चंडा गाड़ के बदमाशी करना है।
2: थोड़ा थोड़ा हंसना जरूर चाहिए।
1: रुक दे फट्टा।
3: मेरे वीरों भैनों बच्चियों बुजुर्गों ते भाभियों देशां विदेशां च बसदे सारे पंजाबियों प्यारे पेंडू शहरी शादीशुदा छड़े ते कुआरियों झगड़े छड़ के दो मिनट हसो।
1: जट्टा के मुंडे साढ़े नाल है जो चंडा गाड़ के बदमाशी करना है।
2: थोड़ा थोड़ा हंसना जरूर चाहिए।
1: रुक दे फट्टा।

0: अमलिया एमएलए बनना कितने सौखा नहीं पिया, सियाने बंदे नाल रख, पढ़े लिखे बंदे नाल रख अपने।
1: उन पढ़े लिखे कितों दिहाड़ियां ते लै लिए संत, एदे च कोई शक नहीं है भी एमएलए बनना बहुत औखा, पहला छोटे छोटे फैसले करने पेंदे।
0: आहो
1: पर एक गल आ संत, साडे ता जेड़े अनपढ़ बंदे नाल हैगे हैगे आ, पर लोग भी बड़े संतिए भेड़े मिलते सन।
0: हुण किहदी गल करी जाना?
1: और संतिए साडे पिंडला कुत्ते का मुंडा जेड़ा शिंदा,
0: आहो
1: ओ घर आली दा सताया हो, पंचायत कठी करी बैठा।
0: हाय हाय
1: ओथे मैनू भी बुला लिया।
0: अच्छा
1: सारी पंचायत कठी बैठी, जनानी इन्नी कबी संतिए, तेनू मैं की दसा, कतूरियां दी मां गुण टुट टुट के पर।
0: हाय हाय दस है,
1: जदों गल करे बे मैं तेरी हक च डांग दे के बसू, बे मैं तेरी हक च डांग दे के बसू। संतिए सानू धरती बेल ना दे, वो फिर चढ़ चढ़ बोले ये मैं तेरी हक च डांग दे के बसू। ओ मैं क्या भाई सॉरी, कुछ ता पंचायत दी शर्म कर। कहंदी बाबा पंचायत दी शर्म करके कह रही है भी मैं एदी हक च डांग दे के बसू, नहीं तो मैं डांग दे किसे होर ता कहनी सी।
2: Harman Radio
3: 24/7
4: बारे मुंह छालिया बारे हरिकोट का मशहूर पंजाब, अखा बारे कन्ना बारे मुंह छालिया बारे हरिकोट।
5: मंडके साहो बंबिया बंगराड़ी रण सिंगला दल सिंगला न्यामी वाला बैवल कोठे मारा सिंह वाले गंदारा लंब वाली बाजा खाना वाड़ा भाई घर माणा चीदा तैन कौनी गोनिया ना भोखड़ा पत्ती गल बठिंडा जसी कटार सिंह वाला कोट चमीरा हेड जॉन सिंह वाला भागी बांदर तलवंडी साबो फरीदकोट मचाकी मैमोना साधक कौनी दीर सिंह वाला दोदा नीचे गुरु साइट डोना गहरी सलाम रणजीतगढ़ खापिया वाली गुलाबे वाला लंबी गट्टी मतल मंदरा हजारा राजा राय ममदौर करमा काला टिब्बा खाई फिरोजपुर नूरपुर रुकने वाला सानिया वाला राजा वाला गोले वाला राजू वाला कावल वाला पीपली दराज के पहलवान के अमृतसर तरन तारन सैरों टोचिया कोट नशहरा सरहली रिका पत्तन माकू जीरा तलवंडी भाई मौदगी फरीदकोट संधमा टैपीर माड़ा गुरु घटाव जैतो सयो वाला चंद भंट लवा बहवल रामपुरा फूल तबा मानसा जेठू के हाकम सिंह वाला मिल भाई रूपा सलावतपुरा दयालपुरा जलाल हमीर भगता केसरवत राजकोटला संगतपुरा चन्नूवाना बाघा प्रणा नथो कोई फूले वाला पुल घोरिया कलां घोरिया खुरद चड़क दुने के रणिया बुटर बठिंडा पुचो मंडी पुचो कलां सेमा पूली पूला नाथपुरा नथाणा कल्याण कोठे गुरु के भगता जलाल लहरा महाबत आदमपुरा सैदो मदो दीना खाई पत्तो रणसी राउ के निहाल सिंह वाला लोहारा नंगल बौडे बदनी लोपो मीनिया दौदर टुडी के चूड़ चक जगरावा श्री नानक सर तलवंडी कोट पत्ता भाई बखतौर माईखाना मौड़ घूमन भाई देसा भैनी ठूठिया वाली कैंचिया मानसा खेलन फफड़े गुरने बलाडा सोने वाल फटन वाल लद्दूआना कांगा सजो के जलालाबाद पुट्टी आला हसा बुटर खचड रोड़ी कपरा रामे आना गोविंदगढ़ रत्ता टिब्बा महला पन्नी वाला गाड़ बाम शेरे वाला चिबड़ा वाली चूड़े वाला लेलेबू फतेहगढ़ पंज दूर कंबे तोते वाला टोले वाला धर्मकोट जलालाबाद फतेहगढ़ अंबोर बल्लूआना कारजवाल मलोट औलखर पाणा मौसर सरायना खारा मोगा मैणा जैतवाल चौंकी मान मुलापुर बदोवाल कलकलां डकरू जोगे वाला दारापुर तलवंडी भाई कोट करो डरोली कोरे वाला वड्डा घर नथू वाला माला कलां मौदकी चंद बाजा कले टहना जलंधर कपूरथला सहनपुर पूंजियां डेडविंडी सुल्तानपुर लुईया गिदड़विंडी जोगे वाला मकू संगरूर बडबर तनौला बरनाला चीमा पखो कंचिया सैना पदौ डब वाली ख्यो वाली आकू वाला कखा वाली सिखा वाला पांचवा जंडा वाला मलिया टंगारा खालचिया राइया लिदर फेरूमान जलालाबाद राइया मौड़ ब्यास डेरा ब्यास बाबा बकाला जठियाला कालज गगड़ा भाणा बुटर मेहता रगड़ोमन नंगल तल साहब कादगा मौड़ वैरका जेठू वाला कंत नंगल जेती बरबटाला संगरूर मैल उदे वेली नसहरा माझा धारी वाला सोल जापू वाला बेवरी गुरदासपुर पनियार दीना नगर परमानंद झोक लड़ी डमटाल घाट पठानकोट गड़ागा कजल माजरा सैलतम सिड़ी संगतपुरा चलाकी ताजपुरा दमहेड़ी उदल लाडपुरी मुगल माजरा मुलापुर बसी पठाना शहीदगढ़ कमांडगढ़ फतेहपुर राइया जोधपुर कमाली मैन माजरी महमदपुर सोडिया देदड़ा रामगढ़ गुणगार सूरपुर कंदीपुरा सहनपुरा बेहड़ रायपुर गुजरा दफड़ा सहयादपुर रैली नगावा नाहन हेड़ी करमपुरा मुडला मेड़ा डडियाणा डडियाणी फाजल सैंपली पमोर कंस पड़ी सैंपला ਵਿੰਡ ਵਿਚ ਮੇਲ ਵਾਲੀ ਬਰੀ ਵਾਲਾ ਬਾਜਾ ਵੱਟੂ ਹਰਗੇ ਵਾਲਾ ਦਾਣਾ ਰਮਾਣਾ ਡੱਗੋ ਰਮਾਣਾ ਮਰਾੜ ਫਿੱਡੇ ਕਾ ਚੱਕ ਕਲਿਆਣ ਵਾਂਦਰ ਰਿਡਾਣਾ ਟੀਮਾਂ ਵਾਲੀ ਰੱਤੀ ਰੋੜੀ ਭੰਗੇ ਵਾਲਾ ਲਾਈ ਆਣਾ ਮੌੜ ਬੂੜਾ ਗੁੱਜਰ ਸੱਗੂ ਧੌਣ ਦੋਦਾ ਸੁਖਣਾ ਛੱਤੇ ਆਣਾ ਕੋਠੇ ਕੋਟ ਭਾਈ ਭਾਰੂ ਗਿੱਦੜ ਵਿਆਹਾ ਬਲਾਸਪੁਰ ਜਾਵਲੀ ਨੋਨੀ ਕੋਠੀਪੁਰਾ ਕੱਲਾ ਸੰਡੋਲ ਜਾਮਲੀ ਗੰਬਰ ਮਨੇੜ ਪੰਜ ਪੀਰੀ ਸਾਵਰਘਾਟ ਪਲਾ ਚੌੜਾ ਮੌੜਾ ਗੜ ਮੌੜਾ ਕਹਿਣੀ ਮਿਸੇਵਾਲ ਨੰਗਲ ਬ੍ਰਾਹਮਪੁਰ ਭਣ ਭਲੀ ਢੇਰ ਗੰਗੂ ਵਾਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਕੀਰਤਨਪੁਰ ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਰਤਗੜ੍ਹ ਸਰਸਾ ਘਨੌਲੀ रोपड़ सिंह तलाई उच्चा पिंड खमानो जटाना समराला नीलो कटानी कहाड़ा लुधियाना चौंकी मान मुलापुर बदोवाल नराले पैखविंडी कच्चा पक्का पट्टी मोड़ पट्टी कीर्तनपुर पीर मोहम्मद शाह बुकर मंदर कोट ईसेखान जनेर लहारा नकोदर मलसिया साहेकोट बाजवा भगता कोठा गुरु दयालपुरा कल्याण नाथपुरना थाना टैलवंग बैंदपुरा बीबी वाला चीदा सुखानंद ठठी माड़ी वैरोके सेखा समाल सर हद पांच ग्राई मालके
3: कॉमेडी आवर गीत ते हास्य।

0: ते कदे बॉम्बे गेड़े लॉन ड्राइवर लंबे कट देने राता जेड़े सड़का ते सोसो सो मैं हुन जिन्हां नु पेश करन जा रही हां उना दा नौ है मिंदर पौ पौ
1: ए जी बुरी जात है गल सुनो हुन आ गया मैं
2: ओ गुरु अगर तू ड्राइवर है मिंदर पौ पौ तो हमको बता डीटीओ का मतलब क्या होता है।
1: मैं क्या है डीटीओ का मतलब हुंदा दियो ते उड़ जाओ। मैं एक बारी चुंगी ते जाके पुछया मैं उन्होंने क्या गल सुनो राहदारी की हुंदी है कहिंदे तुसीं सानूं पैसे दियो असीं तुहानूं राह दिंदे आ। गल सुनो है
2: ओ गुरु जदो तुसी शराब पीती हुंदी है उदो तुहाडा मूड किस तरह दा हुंदा।
1: गल सुनो गिद्दू साहब है असी शराब पी के 100 दी स्पीड ते गड्डी चलाने आ
2: ते जे कोई बंदा अगे आ जाए
1: आंदा ते आ जाए असी कड़ा ब्रेक लाने आ। गल सुनो है हां बैटर को मन जी मैनू किसे ने पुछया कहिंदे तुसी आ गड्डियां दे पिछे टोंटके बड़े लखाने आ। मैं कहा साडे टोंटकियां नू छड्डो गल सुनो है सरकार घट कर दी आ शहर दी एंट्री ते लिखिया हुंदा धन्नवाद फेर आना जी। मैं कहा असी ते आ जावांगे तेल तुहाडे प्यो ने पवाना जी। गल सुनो है एक पुला ते होर बड़ी वधिया गल लिखी हुंदी आ होली चलो जी अगे पुल तंग है इन्हां नू पुछे भी होली चलना ना पुल खुला हो जूगा। गल सुनो है जिंदों साहब की दसीए ए पुलिस वाले बड़ा तंग करदे आ। एक बारी मैनूं पुलिस वाला कहिंदा तैनूं पता नहीं रात नूं डिप्पर दा प्रयोग करीदा। मैं कहा जी असीं ना करिए कहिंदे फिर ही छित्तर दा प्रयोग करीदा। गल सुनो है
2: ओ गुरु ओ हुण तू ड्राइवरां नूं की कहना चाहुंदा।
1: लो जी ध्यान नाल सुनो दारू पी के गड्डियां चलाई जांदे ने किकरां नाल जफ्फियां पाई जांदे ने फिर कहंदे ट्रैफिक पुलिस साडा चलान कटदी आ इस करके महिंदर पौंपो कहंदा कि ड्राइवरी तेज आखदी आ। गल सुनो है हुण नवी मंडीर दी गल सुन लो तीन दिन ला के ड्राइवरी सीखी चौथे दिन गड्डी खड़की सीटी खड़की डिगी गड्डी दी जैसी कित्थों बचदी आ इस करके महिंदर पौंपो कहंदा कि ड्राइवरी तेज आखदी आ। गल सुनो है
2: शाबाश गुरु जिदा तेज गर्मी विच पीनी रसना जरूरी है एदा ही टेंशन भरी जिंदगी विच हसना जरूरी है।
3: आर्मन रेडियो 24/7

0: फिर मैं सोचिया भी चतर सिंह ऐदा सोचन नाल तां नहीं सड़क पार होनी, वेखदा की आ फड़के मार के दो लफड़ सामने ठाणा आपे फड़के लै जाणगे नाले बहाने नाल सड़क पार होजू।
1: फिर मारे थप्पड़
0: कानू ए सोच के कैंसल करते के मन्या ए स्कीम चतरे नू सड़क दा पार जरूर कराऊ पर बाद च नू भूंडा दे खखरा तो कौन बचाऊ।
1: फिर
0: की वेखदा के ठाणे दे एन सामने जाने के जड़े पासे मैं खड़ा सी पुलिस महकमे वालों एक बड़ी वड्डी होल्डिंग लाई हुई सी।
1: अच्छा बोर्ड
0: जिस विच एक सिपाही वालों एक बुजुर्ग नू हाथ फड़के सड़क पार कराउंदे दी फोटो बनाई हुई सी। भाई ओनू वेख के मेरी जान च जान इउं आई जिवें पानी आला घड़ा वेख के सियाणे कां दी जान च जान आई सी।
1: फिर
0: कुदरती उसे बोर्ड दे थले दो सिपाही रेहड़ी ते खड़े कुलचे छोले खान। मेरा जी करे जिवें सियाणे कां ने घड़े च कंकर पाए सी मैं भी इन्हां दी छोले आली प्लेट च बट्टे पावां।
1: फिर
0: मैं हौसला जिहा करके कोल गया मैं कहा भाजी मैं सड़क पार करनी सी, कहना जिप्सी मंगाईए तेनू जीना नहीं असीं रोटी खा रहे पहला रज तां लईए। मैं सोचा भाई मनाए तां भुखे नहीं माण हुंदे रज के पता नहीं मेरी किन्नी सेवा करनगे। मैं मुड़िया पंजा का मिंटा बाद रेहड़ी आले नू थुक ला के आ गए पेंटा नाल हथ पूंझ दे आंदे हुण दस तेरे की मख लड़दी सी। मैं कहा जी जिवें आप फोटो च बुजुर्ग बंदे दा हथ फड़ के सड़क पार कराउंदे हो मैनू भी करा दिओ। आंदे ध्यान नाल वेख फोटो वाला भाई अन्ना साडे महकमे ने सिर्फ अन्या नू सड़क पार कराउण दी स्कीम चलाई आ ना के जने खाने नू, नाले पर उपकार असीं अन्या खातर नहीं कीता अपनी सहूलत लई कीता। मैं कहा जी ओ किवें? आंदे असल विच आ नवीं सरकार नू झल चढ़िया इमानदारी दा ते रिश्वत खोरी नू जड़ों मकाउण लई नित विजिलेंस आलियां तों छापे मरा रही आ, पर इन्हां नू कौण समझावे के फी वांगू साडे हड्डां च रची किसे गल नाल ही निकलू। नाले असीं भी कोई कच्चियां गोलियां नहीं खेडियां, हुण तक निम्म ते करेले चढ़ाए ने, आ विजिलेंस आलियां दी अखां च धूल पाउण लई थां थां सड़क ते अन्ने बिठाए ने।
1: की मतलब?
0: ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਮੀਆਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀ।
2: ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਇਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਚੋਂ। ਉਹ ਆਜੋ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ। ਤਾਇਆ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਊ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਮੈਂ ਆ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਗੱਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਗੱਦੇ? ਲਓ ਤਾਇਆ ਆਪਾਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਗੱਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਰਨੀਚਰ ਤੋਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਫਰਨੀਚਰ? ਜੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਰਨੀਚਰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਅਨ ਫਰਨੀਚਰ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲੂ। ਮੰਜੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਫੋਟੋਆਂ, ਚਾਦਰਾਂ, ਸਾਈਕਲ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ, ਦਾਤੀਆਂ, ਰੰਬੇ, ਕਈ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲੂ ਤਾਇਆ ਜੀ। ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰਤੀ। ਨਾਲੇ ਤੇਰੀ ਤਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਬੁਕਸ ਬਿਡ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਲਾ ਫਿਕਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਲੀੜੇ ਲੱਤੇ ਸਾਂਭਣ ਦਾ। ਲਿਆ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲਿਖਾ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ। ਲਿਖੋ ਫਿਰ 2A 130 ਕਿੰਗਸਟਨ ਰੋਡ, ਅੰਡਰਵੁੱਡ, ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ। ਆ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਇਆ ਜੀ 0404000536 ਤੇ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜੀ punjabifurniture.com.au। ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਫਾਲੋ ਕਰੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ @ ਪੰਜਾਬੀ ਫਰਨੀਚਰ।
3: ਰੋਟੀ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵਰਤੋ ਗੋਲਡਨ ਗ੍ਰੇਨ ਫਲੋਰ ਮਿਲਸ ਦਾ ਗਰੇਵਾਲ ਚੱਕੀ ਆਟਾ, ਤਾਜ਼ਾ, ਘੱਟ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਖੇਤਾਂ ਚੋਂ ਮਿਲ ਚ ਲਿਆਈ ਜਾਂਦੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸ਼ੁੱਧ ਆਟਾ, ਤਾਜ਼ਾ ਖਾਓ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ। ਆਟੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਜ਼ਾ ਬੇਸਨ, ਲੱਡੂਆਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੇਸਨ, ਮਲਟੀ ਗ੍ਰੇਨ ਆਟਾ, ਕਾਬਲੀ ਛੋਲੇ, ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ, ਚਨਾ ਦਾਲ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇ ਬਦਾਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਿਜਿਟ ਕਰੋ ਗਰੇਵਾਲ ਗੋਲਡਨ ਗ੍ਰੇਨ .com.au ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਰੋ 0428895564।
4: अपनी बिजनेस की तरक्की लई तुसी भी हरमन रेडियो दियां सेवावां हासिल कर सकदे हो। हरमन रेडियो ते अपने बिजनेस की एड देने लई जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करने लई संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन च विजिट करो।
5: तुसी सुन रहे हो अपना हरमन रेडियो, 24 घंटे 7 दिन आस्ट्रेलिया दा पहला पंजाबी रेडियो। हरमन रेडियो, हर्मन रेडियो।

0: हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया
1: 24 घंटे 7 दिन।
2: मलेशिया की कहावत है, कछू हजार आंडे दे के भी किसी नु पता नहीं लगन दिंदा, पर मुर्गी एक आंडा दिंदी है तो सारे मुल्क नु खबर हो जाती है। लेखक परमिंदर सोडी, किताब संसार प्रसिद्ध मुहावरे, चंगे अते सोहने विचारां नाल जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

0: लगना। सुनो ते सुनाओ अर्बन रेडियो।
1: यात्रा बारे युगांडा दी कहावत है कि जिसने दुनिया घूम फिर के ना देखी होवे उस लई अपनी मां ही सब तो बढ़िया रोटी बनाने वाली हुंदी है। सुने विचारा लई सुन

0: हरमन रेडियो 24 घंटे 7 दिन।
1: सुधार दी लोड़ उदो ही पैंदी है जदों कोई परंपरा अपने रूल निभा के रुकावट बन चुकी हुंदी है। चंगे विचारां लई जुड़े रहो हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया दे नाल। दिल पंजाबी, जज्बात पंजाबी।

0: हरवन रेडियो दिल पंजाबी जज्बा पंजाबी पंजाबी
1: अथरू एक नहीं कालजा बेरे बेरे।
2: जदों कोई बंदा फोकी हमदर्दी जाहिर करे अते गल्लां गल्लां नाल कम सारे उदों ए अखाण बोलदे हन।

0: आओ सुनावा अखाण सियाणिया दा ज्ञान। लो जी अज दा मुहावरा शरीक लाए लीक पुजे जिथों तीक।
1: भाव ए है कि शरीक दूजे शरीक दा वध तो वध नुकसान करन दा यतन करदा है।
0: मुहावे अते अखाण साडी अमीर सभ्यता दियां निशानियां। हरमन रेडियो, हरमन रेडियो, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया।

0: 24 घंटे
1: पैसे बारे अमरीका की एक कहावत अनुसार जेड़ा ए कहंदा है कि पैसे नाल खुशी नहीं खरीदी जा सकती वो असल विच आप गरीब हुंदा है। लेखक परमिंदर सोडी किताब संसार प्रसिद्ध मुहावरे चंगे अते सोहणे विचारां नाल जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

0: रोटी हजम नहीं होंगी। वरतो गोल्डन ग्रेन फ्लोर मिल दा गरेवाल चक्की आटा, ताजा घट कैमिकल दी वरतों वाली कणक जेड़ी के सीधी खेतों चो मिल च लियाई जांदी। ऑस्ट्रेलिया दा बनिया शुद्ध आटा, ताजा खाओ ते तंदुरुस्त रहो। आटे तो इलावा ताजा बेसन, लड्डुआं लई स्पेशल बेसन, मल्टी ग्रेन आटा, काबली छोले, मसरां दी दाल, चना दाल, सोयाबीन ते बादाम भी साडे अपने प्रोडक्ट हन। वधेरे जानकारी लई विजिट करो garhiwalgoldengrain.com.au या फोन करो 0428895564।
1: ओ आ गया तुहाडा ताया ऑस्ट्रेलिया दे ब्रिस्बेन चो। ओ आजो आजो ताया जी, वेलकम। ताया आज रात साडे कोल ही रहना पऊ थोनू। ओ मैं आ ता गया, मैं ता नींद इंडिया आले गद्दे ते आउंदी आ। इथों किथों मिलू इंडिया आले गद्दे? लो ताया आपा ले आउने इंडिया आले गद्दे पंजाबी फर्नीचर तो। पंजाबी फर्नीचर? जी हाँ, पंजाबी फर्नीचर एथो मिलदा, सारा इंडियन फर्नीचर जो भी तुहानू चाहिदा सब एथो मिलू। मंजे, धार्मिक फोटवां, चादरां, साइकिल, चूल्हे, दातियां, रंबे, कई सब कुछ एथो मिलू। ताया जी लाया था तू मेरी टेंशन ही दूर करती। नाले तेरी ताई कहिंदी सी भी पता करी इंडियन बॉक्स बेड दा, ओनू वाला फिकर लगा रहिंदा लीड़े लते सामने दा। लिया फिर पता लिखा फिर पंजाबी फर्नीचर दा। लिखो फिर 2A130 किंगस्टन रोड अंडरवुड ब्रिस्बेन। अकाल कर लियो ताया जी 0404000536 ते। वेबसाइट है जी punjabifurniture.com.au। नवी अपडेशन दे लई फॉलो करो फेसबुक पेज नू @punjabifurniture।
2: अपनी बिजनेस दी तरक्की लई तुसी भी हरमन रेडियो दियां सेवावां हासिल कर सकदे हो। हरमन रेडियो ते अपनी बिजनेस दी एड देण लई जां किसे भी पसंदीदा प्रोग्राम नू स्पॉन्सर करन लई संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन च विजिट करो।
3: तुसी सुन रहे हो अपना हरमन रेडियो, 24 घंटे 7 दिन ऑस्ट्रेलिया दा पहला पंजाबी रेडियो। हरमन रेडियो, हरमन रेडियो।

0: हरमन रेडियो
1: 24 घंटे 7 दिन।
2: असलियत बारे जर्मनी दी कहावत है कि जिसनों ज्ञान दी भुख होगी वो उस्ताद अपने आप लब लवेगा।

0: हार्मन रेडियो 24/7।
1: मुसीबत बारे अमरीका की कहावत है कि मुसीबत विच्चों बाहर निकलन वाला रस्ता मुसीबत अंदर जान वाले रस्ते जिन्ना सौखा नहीं हुंदा। सुने विचारां लई सुनदे

0: वाज़ इन द हुड।
1: पाशा बारे अफ्रीका दी कहावत है कि पाशा सरल चीज नहीं है। चंगे विचार विचारो अते जिंदगी विच लागू करो।

0: हरमन रेडियो कमाल बा कमाल।
1: हित बारे अफगानिस्तान दी कहावत है कि चाकू पावे सोने दा बनिया होवे, बंदा इसनू अपनी छाती च नहीं खोप सकदा। चंगे विचार विचारो अते जिंदगी विच लागू करो।

0: सुख संगे
1: धर्म रेडियो ऑस्ट्रेलिया
2: 24 घंटे 7 दिन
3: एक चुप सो सुख।
4: इस दा मतलब है कि कई मौकियां ते अपनी राय प्रगट करन नालो चुप रहना वधेरे लाभदायक ते सुखदाई हुंदा है।

0: सब कुछ गवा के ओए पंगू की फायदा या पछताउण दा। जिनू जीऊं दे जी खुशी ना दे सके ओ दे मरण ते की फायदा या रोण दा। ओ दे मरण ते की फायदा या रोण दा।
1: मुहावे अते अखाण साडी अमीर सभ्यता दियां निशानियां यक्का वेख के ही पैर पारे हुंदे हन।
2: जद कोई पहला ता किसे कम नू चंगा पला करी जावे पर कोई सहायक आउंदा वेख के विटर बहे ता ए अखाण कहंदे हन।
1: मुहावरे अखाण अते पंजाबी बोले हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया।

0: रेडियो 24/7।
1: युद्ध बारे सियाने कहंदे हन कि युद्ध तो दूर हर कोई ही फौजी हुंदा है। विद्या विचारी ता पर उपकारी

0: हार्मन रेडियो
1: 24/7।
2: बोलन वारे अरब की कहावत है कि कई युद्धां दा मुड इको शब्द नाल होया है।

दिक सुचेत व्यक्ति हसमुख नहीं होंगे। वो हर लतीफे ते मुखौल दे अर्थ गलती करते हैं। विचार नरिंदर सिंह कपूर, चंगे विचार ले जुड़े रहो हरमन रेडियो के नाम।

कार्बन ही निर्धारित करता है, उवे ही एक आदमी विचली खूबी उसका चरित्र निर्धारित करता है। विचारां लई जुड़े रहो हरमन रेडियो नाल।

हनेरे मन चानना दे सर्जक नहीं हो सकते, फिर हनेरे दियां लकीरां क्यों फड़ियां जान। सर्जक बन वास्ते हौसले ते तर्क परे चानन दी मिसाल बलनी पैंदी है। हौसला कोल होवे तां उद्दम अगे लक्ष्मी, पक्खे अगे पौन कहावत ना रह के सच बन जांदी है। सच दे कदम कदे भी नहीं डोलदे। विचार केर शरीफ, किताब समय ना संवाद, संगे विचारां लई वचनबद्ध है हरमन रेडियो।

0: हरमन रेडियो
1: 24 घंटे 7 दिन
2: तेली भी कीता ते रुख भी खादा।
3: ए अखाण उदों बोलदे हन जदों कोई अपनी मर्जी दे उल्ट कम करे परंतु उस विच उसनू कोई लाभ जां खुशी प्राप्त ना होवे।

0: हार्मन रेडियो
1: 24/7।
2: एक यूरोप की कहावत अनुसार जे सिर्फ बुरे काम करने वाले ही सफल होंदे होण ते ईमानदार सफल ना होण तां लोकी जल्दी ही चंगे काम करना छड्ड देंगे। चंगे विचारां लई जुड़े रहो हार्मन रेडियो दे नाल।

चल चलिए एक दुनिया बनाइए विच होण खुशियां दे रंग, गल्लां करिए दिल वालियां, भाईचारे दे संग। सोच परवाज नवा आगाज ते दिल मिलियां दे साज, सुनिए सुनाइए सांझी एक आवाज। ऑस्ट्रेलिया दा 24 घंटे सत्तो दिन चलन वाला पहला पंजाबी रेडियो ट्रूली यूअर्स।

0: हरमन रेडियो तमाल बा कमाल।
1: लालच बारे अंग्रेजी दी कहावत है कि सिरके नालो शहद नाल ज्यादा मक्खियां फड़ियां जा सकदियां हन। सुने विचारां दे अंग संग

0: राजा।
1: रोटी हजम नहीं होंगी, वरतों गोल्डन ग्रेन फ्लोर मिल का गरेवाल चक्की आटा, ताजा घट कैमिकल की वरतों वाली कणक जेडी के सीधी खेतों चो मिल च लाई जाती, आस्ट्रेलिया का बनिया शुद्ध आटा, ताजा खाओ ते तंदुरुस्त रहो। आटे तो इलावा ताजा बेसन, लड्डुआ लई स्पेशल बेसन, मल्टी ग्रेन आटा, काबली छोले, मसरां दी दाल, चना दाल, सोयाबीन ते बादाम भी साडे अपने प्रोडक्शन हन। वधेरे जानकारी लई विजिट करो गरेवाल गोल्डन ग्रेन .com.au या फोन करो 0428895564।
2: आ गया तुहाडा ताया आस्ट्रेलिया दे ब्रिस्बेन चो। ओ आजो ताया जी, वेलकम। ताया अज रात साडे कोल ही रहना पऊ थोनू। ओ मैं आ ता गया, मैं ता नींद इंडिया आले गद्दे ते आउंदी आ, इथो किथो मिलू इंडिया आले गद्दे। लो ताया आपां लै आउने इंडिया आले गद्दे पंजाबी फर्नीचर तो। पंजाबी फर्नीचर? जी हाँ, पंजाबी फर्नीचर एथो मिलदा, सारा इंडियन फर्नीचर जो भी तुहानू चाहिदा सब एथो मिलू। मंजे, धार्मिक फोटो, चादरां, साइकिल, चूल्हे, दातियां, रंबे, कई सब कुछ एथो मिलू। ताया जी लाया था तू मेरी टेंशन दूर करती, नाले तेरी ताई कहिंदी सी भी पता करी इंडियन बॉक्स बेड दा, ओनू वाला फिकर लगा रहिंदा लीड़े लते सामने दा। लिया फिर पता लिखा फिर पंजाबी फर्नीचर दा, लिखो फिर 2A130 किंगस्टन रोड अंडरवुड ब्रिस्बेन। आ कॉल कर लियो ताया जी 0404000536 ते। वेबसाइट है जी punjabifurniture.com.au। नवी अपडेशन दे लई फॉलो करो फेसबुक पेज नू @punjabifurniture।
3: तुसी सुन रहे हो अपना हरमन रेडियो, 24 घंटे 7 दिन ऑस्ट्रेलिया दा पहला पंजाबी रेडियो, हरमन रेडियो 24 घंटे 7 दिन।
4: सारे श्रोतियां नूं दलजीत सिंह वल्लों वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सिडनी आस्ट्रेलिया समय अनुसार शाम दे 5 बज चुके ने, तां आओ जी दिन भर दे अकेवें थकेवियां तों मुक्त होण लई सरवण करदे हां श्री दरबार साहिब अमृतसर साहिब तों बख्शिश होए अज दे वाक दी कथा विचार। हर की अकथ कथा सुनो जन पाई, जित सहसा दुख भूख सब लह जाई

छतर चवर तख्त दे मालिक सतगुरु शब्द गुरु जुगो जुग अटल तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दे पावन पवित्र चरणा विच जुड़मिल बैठे गुरु प्यारे गुरु स्वारे खालसा जी गुरु फतेह प्रवान करो आखो जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया पूरी होई करामात आप सिरजनहार धारिया छोड़ी सुल्तान चौथे पातशाह धन धन श्री गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज जी दे पावन पवित्र सचखंड श्री हरिमंदर साहिब दरबार साहिब तो अज दे अमृत वेले जो सतगुरु जी ने मनुखता दी झोली विच अमृत बचन पावन हुक्म बख्शिश कीता है अमृत बचन दी विचार करन वास्ते तरन गगन नव खंड मह जोत सब रूपी रहे हो पर भन मथुरा कश भेद नहीं गुर अर्जन प्रतख हर शहीदां दे सरताज सतगुरु धन धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी दे पावन पवित्र स्थान गुरद्वारा मंजी साहिब दीवान अस्थान सतगुरु महाराज जी दे पवित्र पावन चरणा विच जुड़ बैठे हाँ। गुरु गरीब नवाज पातशाह जी ने कृपा कीती है वड्डे किया वड्याईया किश कहना कह ना जाए आशा की वार दे कीर्तन होए हन सतगुरु जी ने त्रुट करके बख्शिश कीती है तित जाए बहो सत संगती जिथे हर का हर नाम बुलोई है संगत विच बैठन दा सानू सुभाग बख्शिश कीता है। आओ अज दे आए इस पावन पुत्र मुख वाक हुक्मनामे दी पावन विचार करन तो पहला एक वार जिन्हें भी आपां जो विच मन करके सुरत करके गुरु शब्द नाल जुड़ना करिए रसना पवित्र करदे हां सरबत संगत।

0: पन कढ़ाइया।
1: बाणी गुरु, गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कह सेवक जन मानै प्रताख गुरु निस्तारे। ए अमृत बचन सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी बल्यो चिराग अंधियार मैं, सब कल उदरी एक नाम धर्म प्रगट सगल हर भवन मैं, जन नानक गुर पार ब्रह्म। पहले पातशाह धन धन श्री गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी दे मुख तो उच्चारण किया होया सूही राग विच धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे 752 अंग ते शोभनीक है दर्ज है। गरीब नवाज पातशाह जी इस पावन बचन की पहली पंक्ति विच कृपा करते ने। ज्यों आरण लोहा पाए भन कढ़ाई है, दो पाठ असी पढ़ते हैं। एक शब्द असी अमृत वेले जप बाणी विच पढ़ते हैं, जत पहारा धीरज सुनियार अहरण मत वेद हथियार। गुरु अमरदास महाराज जी दे पवित्र बचन पढ़ते हैं, हस्ती सिर ज्यों अंकस है अहरण ज्यों सिर दे। उत्थे ओ अहरण लोहे दा टुकड़ा के जिदे ते कीमती समान बनदा, हथौड़े वदान दियां सट्टां वजदियां ने। इत्थे शब्द आया आरण, जिस भट्टी विच लोहे नूं घालिया जांदा। गुरु नानक साहब जी दे पवित्र बचना विच असीं शब्द पढ़दे हां, काया आरण मन विच लोहा, पंच अग्न तित लाग रही कोयले, पाप पड़े तिस ऊपर मन जलिया सन्नी चिंत पई। साहब जी कहन लगे जिमें लोहे नूं टुकड़िया नूं घाल के ते फिर उहदियां नवीआं चीज़ां वस्तुआं बनाईआं जांदियां ने ना, इवें सच्चे पातशाह महाराज जी कृपा करदे ने। ज्यों आरण लोहा पाए भन कढ़ाई है, लोहे नूं भन के घाल के वस्तुआं तैयार हुंदियां हन।
0: त्यों साकत जोनी पाए भवै भवाइया,
1: त्यों साकत जोनी पाए भवै भवाइया। साहब जी कहणगे इवें ही साकत मनुख की हालत है। सतसंगत साकत मनुख तो भाव के रब तो परमेश्वर तो अकाल पुरख तो वाहिगुरु सिमर तो टुटा होया मनुख जेड़ा है, इवें जोनिया विच भटकदा है। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विच आपां मनमुख की बेमुख की गल हुंदी है, पर सब तो माड़ा सतगुरु की बाणी विच साकत नूं आख्या है। क्योंकि साकत जिथे आप रब नालों टुटा होया ना, यह बड़ी महारत रखदा है कि मैं दूसरियां नूं किवें तोड़ना है। गुरु गुरु करन वालियां नूं, गुरु जपण वालियां नूं किवें मैं रब नालों तोड़ना है। तो सतगुरां दी बाणी विच आपां बचन पढ़दे हां, कबीर साहब जी कहिंदे ने फिर ऐसे पुरशां दी संगत नहीं करनी। कबीर साकत संग ना कीजिए दूरे जाइए भाग। कहिंदे दूर तो जिथे कोई साकत मनुख तेनू दिसदा है उहदी संगत नहीं करनी, रस्ता बदल लेना। गुरु अर्जन साहब जी ने बड़े प्यारे बचन आखे, जिवें किसी नूं प्रैशर नाल दबा पा के आखी दा ना भी आ कम तू छड़ दे, जोर दे के आखी दे। साहब कहन लगे उल्टी रे मन उल्टी रे, साकत स्यों कर उल्टी रे, झूठै की रे झूठ प्रीत, छुटकी रे मन छुटकी रे। कहिंदे साकत तो उल्ट हो जा, भाव साकत रब नालों टुटिया होया है, तू रब नाल जुड़ जा, परमेश्वर दे नाम नाल जुड़ जा। किदां दी हालत होवेगी देखो ना, संसार विच समाज विच विचर रहे हैं, कोई नशेड़ी मनुख हो, नशा करन वाले मनुख हो ना, ते कोई दो चार दिन उन्हां लागे अपना घर दा मैंबर पुत्र कोई बैठ जावे ते परिवार वाले कहिंदे भी तैनूं नशा ना लग जावे, इन्हां दी संगत ना करिया कर। इवें कबीर साहब जी ने आख्या, कबीर साकत संग ना कीजिए दूरे जाइए भाग, बासन कारो परसीए तौ कछ लागै दा। कहिंदे ने जिवें काला बर्तन होवे ना, ते ओ कपड़े नूं भी हत्थां नूं भी दाग ला दिंदा। साकत दी ऐसी संगत है। गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी ने वचन आखे, कहन लगे संतन का दाना रूखा सो सर्ब निदान। कहिंदे सतपुरख प्रभु परमात्मा की भगती करन वाले नाम रस्सियां रूहां जिहड़ियां सख सन, कहिंदे उन्हां दे हाथ विचों किते सुक्का मिस्सा प्रसादा मिल जावे ना, कहिंदे ओह भी सो सर्ब निदान, क्योंकि उन्हां वास्ते नाम की बन जांदा साध संगत। हर नाम हमारा भोजन छती प्रकार, जित खाया हम को तृप्त भई। कहन लगे नाम उन्हां वास्ते सत्ती पदार्थ बन जांदा, तृप्त हो जांदे ने, रज जांदे ने। गुरु अर्जन साहब जी कहिंदे ओ सतपुरख ओ संत जन, संतन का दाना रूखा सो सर्ब निदान। ते दूसरा बचन च कहिंदे ने गृह साकत सत्ती प्रकार ते बिखू समान, कहिंदे जहर वर्गे ने। गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच बहुत प्यारे बचन सतसंग सानू बख्शिश करदे ने सतगुरु, कि भगत जना का लूगरा, तीन वार साकत शब्द वरत्या साहब जी ने, भगत जना का लूगरा ओढ़ नगन होई साकत सिर पौ रासमी पहरत पट खोई। कहिंदे भगत जन जिहड़ा है वह तुहानू माण सत्कार दिंदा है, लूगरा तो भाव के सरो पाओ जिन्हों बख्शिश हुंदा है वह माण सत्कार करते हैं, कहिंदे इज्जत मिलती है, माण मिलता है संसार विच। पर कहिंदे साकत जिहड़ा है वह भावें तुहानू रेशम दे वस्त्र देवे, कहिणगे पत नहीं, इज्जत नहीं मिलेगी, दुनिया विच विचरदियां चलदियां फिरदियां माण नहीं मिलेगा। साकत स्यों मुख जोरी है अद बीचों टूटै, हर जन की सेवा जो करे इत उत्ते छूटै। कहिंदे जे साकत नाल कोई प्रीत पाउणी है बैठना है, कहिंदे फिर अद विचालियों टुट जाएगा जीवन। साकत नूं इन्ना माड़ा आख्या कबीर साहब जी, कहणगे कबीर साकत ते सूकर भला राखै आछा गाओ, ओ साकत बपरा मर गया कोई ना ले है नाओ। कहिंदे साकत जदों खत्म हो जांदा है ते कोई नगर कोई ग्राम कोई पिंड वाला नाओ नहीं लैंदा, कहिंदे उहदे नालों सूकर सूर चंगा है जिहड़ा नगर दी पिंड दी गलियां दी गंदगी साफ करदा है। सच्चे पातशाह महाराज गुरु नानक साहब जी कृपा करते ने त्यों साकत जोनी पाए, कहणगे इवें साकत फिर जोनिया विच भटकदा है। भवें भवाइया भवें भवाइया भाव जन्म लैंदा ते मर जांदा है। गुरु रामदास जी के बचन तुसी रोज पढ़ते, जे साकत हर रस साध न जाणिया तिन अंतर होमै कंडा है। उहदे अंदर होमै दा कंडा है, साकत विच इह दिलचस्पी है कि वह दूसरों नूं तोड़दा है, दूसरों नूं रब नालों पासे करदा है। महाराज सच्चे पातशाह जी की बाणी पढ़न वाले हैं, सत संगत गुरमुखां की संगत करनी है। सतगुरु सानू सुभाग बख्शिश करदे ने ना, रोज़ बाणी अंदर असीं पढ़दे हाँ सतगुरु की बाणी के बचन ने, मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया। सत संगत विच मिल के तरना है, ते जे किते संगत साकदी होवेगी ते महाराज कहणगे किदां दा जीवन बन जाएगा। कबीर मारी मरों को संग की, केले निकट जो बेर ओ झूलै ओ चीरिया साकत संग ना है। कहिंदे केला ते बेरी दी उदाहरण दित्ती है, जिवें हवा सवेरे तूफान आ रहा सी ना, कहिंदे मस्ती विच केला झूम रहा है ते पता ही नहीं कि मेरे लागे बेरी है, तो उहदे पुठे कंडे हुंदे ने। ज्यों ज्यों ओ हवा दे नाल झूलदा केला ते पत्ते चीरे जांदे ने, कई वारी साकत मनुख भी ऐसा हुंदा, उहदी संगत भी ऐसी हुंदी है। बड़े लोग ऐसे संसार ते सत्संग मिलणगे, धर्म दे नां ते अंदरों टुटे हुंदे ने पर बड़े धर्म दे नां ते कर्मकांड करदे, बड़ियां रब दीआं गल्लां दसणगे पर सतगुरु दी बाणी ने खंडन कीता है। कहणगे नहीं, जीवन अंदर कदी साकत दी संगत नहीं करनी। साकत की अवरदा जाए बरथारी, कहिंदे उहदे कीते काम सारे निफल ने, किवें जो कागद के भार मूसा टूक गवावत काम नहीं गवारी। कहिंदे जिवें चूहा ना ते ओह लाइब्रेरी विच किते बुकां नूं टुक्की जावे ते कदी फिलासफर कोई विज्ञानी कोई साइंटिस्ट कदी बणिया देखिया, कहिंदे नहीं, उहदे टुके होए ओह लाइब्रेरी विचों बुकां किसे काम नहीं आउंदियां। इवें रब तों टुटिया होया जिहड़ा मनुख है पर जिहड़ा जुड़िया होया उहदे वास्ते सतगुरु सानू बचन कहिंदे ना, किनका एक जिस जीव सावै तां की महिमा गनी ना आवै, सिमरों सिमर सिमर सुख पावों कल कलेश तन माहे मिटावो, असी सिमरन करना, नाम जपना, गुरमुखां दी संगत करनी है सत संगत। तां महाराज कृपा करदे ने, इवें भाई साकत दी हालत है कि वह जन्म मिर्च आउंदा है, जमदा ते मर जांदा है, आउंदा ते चले जांदा है।
0: बिन बूझे सब दुख दुख कमावना,
1: साहब जी कहण लगे बिन बूझे सब दुख दुख कमावना, बिना समझ तो। देखो ना जुगती है ना, सतगुरु साडे जीवन अंदर किन्नी तरतीब दिंदे ने, सत संगत सानू जीवन जांच दसते ने। जन्म मिलिया, मैं कई बारी बेनतियां करना स्थान तो, कि जन्म मिलिया माता पिता राही संसार विच विचरे हैं, पर जे जीवन अंदर सत संगत गुरु नहीं, गुरु की बाणी नहीं है, बाणा नहीं है, तो अजे जन्म ही मिलिया, सानू जीवन गुरु ने देना सत संगत। तो बिना बुझण तो सतगुरु महाराज कहिंदे फिर जीवन विच दुख हुंदे ने। तो कैसे दुख? गुरु नानक साहब का तुसीं बचन पढ़ जे दे कि दुख विछोड़ा, एक दुख भूख, एक दुख शक्त वार जम दूत, एक दुख रोग लगे तन धाए, वैद न भुले दारू लाए, परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग। ताई महाराज बाणी विच कहिंदे ने, जियो डरत है अपना कैस्यों करी पुकार, हे मेरे मालिक जी मेरी जिंद डरदी है कंबदी है, कि इन्ने जीवन में दुख चंबड़ गए किदे अगे पुकार करिए। साहब जी कहणगे दुख विसारण सेविया सदा सदा दातार, कहिंदे उस दुखां दे विसारण हार परमात्मा नूं मालक नूं सिमरिया करो। बिना समझ तो साहब जी कहणगे जीवन में दुख आउंदे हन।
0: होमै आवै जाए परम भुलावना,
1: साहब कहण लगे होमै विच जदों मनुख आउंदा जांदा ना, होमै की है सात संगत, गुरबाणी दे बचन ने होमै नामै नाल विरोध है, दोए ना वसै कठाए। होमै जिहड़ी है ये नाम नूं टिकण नहीं देवेगी, जिथे नाम आ जांदा है। दो तरह की विद्वान पुरशां ने होमै का जिक्र किया, एक शुद्ध होमै एक मलीन होमै, हर चीज ते अपनी मोहर लाउणी, होमै विच अहंकार विच मैं करी जाणा, ते हर परमात्मा दी दित्ती दात नूं जिहदे विच साडा शरीर आ गया, धन पदार्थ पुत्र धीआं महल माड़ियां किन्ना कुछ है, हर चीज जिहड़ी वस्तु दात है यह रब की दित्ती हुई, यह शुद्ध होमै। भाव जदों मूल नूं टुट जाईदे, एक देखो ना एक टाणी रुख नूं टुट जावे ते खत्म हो जाती है, कोई फुल टाणी नालों अलग हो जाए तो नेस्तो नबूद हो जाता है, जिवें हड़ आउंदा ते दरिया तों किनारियां तो जदों पानी बाहर हुंदा है ते कई ऐसा पानी अपनी होंद बना लैंदा पर वह बीमारियां नूं जन्म दिंदा है। सतगुरु की बाणी विच भगत जी ने आख्या, जब हम होते तब तू ना ही, अब तू ही मैं ना ही। जदों तक परमात्मा साढ़े विच होमै हुंदी है तू प्रगट नहीं हुंदा, जदों होमै खत्म हो जाती है होमै जाई तक अंत समाई। गुरु नानक साहब के बचन रोज पढ़े जाते हैं, गुरु के कीर्तनीय सत्कारयोग आसा की वार विच, हौं विच आया हौं विच गया हौं विच जमया हौं विच मुआ। धन गुरु अंगद साहब जी तां कहिंदे ने हौं मैं दीर्घ रोग है दारू पी समाए, कहिंदे बड़ी ला इलाज बीमारी है। भाव जदों मूल तों टुट जावांगे। भाई वीर सिंह साहब दे बड़े प्यारे बच्चे ने, कहिण लगे कोला सी ना, ते कोले नूं जदों अग तों पासे उहदे मूल तों पिछे कर दिता टुट गया, ते कहिण लगे बड़ी कोशिश कीती पे इहनूं साबण लाईए धो दईए शायद इहदा रंग बदल जावे, फिर इहनूं दुध विच दही विच पा दईए शायद इहदे विच उह रंग आ जावे, पर कहिण लगे उहनूं साबण वी लाया उहनूं दुध दही विच वी पा के उहनूं रंग वी कर दिता, पर कहिण लगे फिर आवाज़ आई भी नहीं वीर सिंह इह आपणे मूल नाल टुट्टिया होइआ, इहनूं इहदे मूल नाल जोड़ना करिए। वह बड़े प्यारे बचन असा पढ़ते हैं सुनते हैं कि साबण ला ला धोता कोला, दुध दही विच पाया खुंभ चाड़ रंगण भी धरिया रंग ना उस वटाया, कहिंदे उसने रंग नहीं बदलिया, उन्हूं रंग भी दिता है, दुध विच भी पा दिता, दही विच भी पा दिता, साबण नाल भी धो दिता, पर कहिंदे विछड़िया कालख जो आई, कहिंदे जिहड़ी वह अपने मूल अग नालों विछड़ गई ना काला जीवन हो गया। कहणगे जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला हो आश्या हो खनली धोती उजली ना हो भी जे सौ धोवन पाओ। बड़िया उदाहरण साहब ने बाणी विच दित्तियां, पर कहणगे ये अंदरों आवाज आई आत्मा चों ਕਿ ਵਿਛੜਿਆ ਕਾਲਖ ਜੋ ਆਈ ਬਿਨ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਅੰਗ ਅੱਗ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਚੜ੍ਹਦਾ ਦੂਣ ਸਵਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਾ ਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਓ। ਇਹੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਉਮੈ ਆਵੈ ਜਾਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵਣਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਭਟਕਣਾ, ਅਤੇ ਭਟਕਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਕਦੀ ਉੱਧਰ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਆਖਿਆ ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗ ਮਾਣ। ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਨਿਤਨੇਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਉਮੈ ਆਏ ਜਾਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵਣਾ
0: ਰਹਾਉ,
1: ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
0: ਤੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰੱਖਣ ਹਾਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ।
1: ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਗੁਰਮੁਖ, ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੈ, ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਨਾਮ ਤੇ ਜਪਿਆ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ, ਪੁੱਠੇ ਨਹੀਂ ਲਟਕੇ, ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਸਵਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਲੀਆਂ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਭੋਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੂਲ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਆਏ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਨਾਨਕ ਕੁੱਲ ਉਧਾਰੈ ਆਪਣਾ ਦਰਗਾਹ ਪਾਵੈ ਮਾਣ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸੇ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਖੀਆਂ ਸਿੱਖ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਖੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਖੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਈਆਂ, ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਪਾਸ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕਾਰੈ ਲਾਈਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ, ਰੱਖਣ ਹਾਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।
0: ਮਿਲ ਹੈ ਤੁਝੇ ਰਜਾਏ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਈਐ,
1: ਮਿਲ ਹੈ ਤੁਝੇ ਰਜਾਏ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਈਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸੇਈ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਮੇਲੈ ਤੁਝੈ ਰਜਾਏ ਤੇਰੀ ਰਜਾ ਹੋਵੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਪ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਤੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਝੂਠ ਦੀ ਪਾਲ ਕੰਧ ਟੁੱਟਣੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੰਨਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਿਖ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਜੋ ਚੱਲੈ ਸੋ ਪਵੈ ਖਜ਼ਾਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਔਰ ਤੂੰ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਮੇਲੈ ਤੁਝੈ ਰਜਾਏ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਰਜਾ ਤੇਰੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ। ਸਤਸੰਗ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਮੰਨਿਆ। ਸਤਸੰਗ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸਾਗਰ ਦੁੱਤਰ ਕਹੀਐ ਕਿਉਂ ਕਰ ਪਾਈਐ ਪਾਰੋ, ਚਰਪਟ ਬੋਲੈ ਉਦੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੱਚਾ ਵਿਚਾਰੋ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲਨ ਰਾਲਮ, ਮੁਰਗਾਈ ਨੇ ਸਾਣੇ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਐ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਖਾਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦਾ ਹੈ।
0: ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੇ ਆਪ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਈਐ।
1: ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਆਪ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਈਐ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿ ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ ਉਤਪਜ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਜਨਤਾ ਏਕ ਪੁਰਬ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦੇਖਿਆ ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਵਾਹੇ ਰਵੰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਵੇਖਿਆ ਦਾ ਆਪ ਵੀ ਉਹ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਰੱਖਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ, ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
0: ਤੂੰ ਦੇਖੇ ਥਾਬ ਉਹ ਥਾਬ ਦਰ ਵੀ ਨਾਈਐ,
1: ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤੂੰ ਦੇਖੇ ਥਾਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਥਾਪਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਵੀ ਨਾਈ ਹੈ ਦਰ ਵੀ ਨਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੇਠ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੇਠ ਹੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬਣੇ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਉਤਪਤ ਪਰਲੋ ਸ਼ਬਦੇ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਬਦੇ ਹੀ ਫਿਰ ਉਪਤ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਲੱਕੜ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਕੜ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਕਰੀਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੰਕਰੀਟ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਹਾ ਕੋਈ ਧਾਤ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਧਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇਗੀ। ਇਵੇਂ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ ਸਤ ਸੰਗਤ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਦੇਖੈ ਥਾਪ ਉਹ ਥਾਪ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਵਈਆ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦੀਨਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੈ ਨਿਤ, ਸੰਤ ਉਭਾਰ ਗਨੀਮਨ ਗਾਰੈ, ਪਛ ਪਛੂ ਨਗ ਨਾਗਨ ਰਾਤਵ, ਸਰਬ ਸਮੇਂ ਸਭ ਕੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰੈ, ਪੋਖਤ ਹੈ ਜਲ ਮੈਂ ਥਲ ਮੈਂ ਪਲ ਮੈਂ ਕਲ ਕੇ ਨੀ ਕਰਮ ਵਿਚਾਰੈ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਦਇਆ ਨਿਤ ਦੋਖਨ, ਦੇਖਤ ਹੈ ਪਰ ਦੇਤ ਨਹਾਰੈ। ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਐਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਰਧ ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਥਾਪਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਥਾਪਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਦਰ ਬਿਨਾਈ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
0: ਦੇਹੀ ਹੋਵਗ ਖਾਗ ਪਵਨ ਉਡਾਈ ਹੈ,
1: ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਸਤ ਸੰਗਤ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਹੀ ਹੋਵਗ ਖਾਕ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਢੇ ਤਰੈ ਮਣ ਦੇਹਰੀ ਚੱਲੇ ਪਾਣੀ ਅੰਨ, ਆਇਓ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਤ ਅਸੂਣੀ ਬੰਨ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਤ ਸੰਗਤ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਕ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲ ਤਾਂ ਮੂਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਂਚ ਤੱਤ ਕੋ ਤਨ ਰਚਿਓ ਜਾਨੋ ਚਤਰ ਸੁਜਾਨ, ਜਿਹ ਤੇ ਉਪਜਿਓ ਨਾਨਕਾ ਲੀਨ ਤਾਹੇ ਮੈਂ ਮਾਨ, ਕਿ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਹਵਾ ਅੱਗ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਰਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਸੋਨਾ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਨੌਕਰ ਨੇ ਠਾਲਣਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੇਟਣਾ ਤੇ ਨੌਕਰ ਨੇ ਪਾਸਾ ਵੀ ਬਦਲਣਾ, ਸਰਾਣਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬੰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦੁੱਖ ਘਟਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਲਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਚੱਲੀਏ, ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਖੂੰਡੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਲਾਲਾ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਸੇਠ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਉਹ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣਾ। ਚਲੇ ਗਏ, ਸਰੀਰ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਪੁਰਦੇ ਖਾ ਕਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਰੀਦਾ ਇੱਟ ਸਰਾਣੇ ਭੋਏ ਸਮਣ, ਕੀੜਾ ਲੜਿਓ ਮਾਸ, ਕੇਤਣਿਆਂ ਯੁੱਗ ਵਾਪਰੇ ਇੱਕ ਤਪਿਆ ਪਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁਣ ਯੁੱਗ ਬੀਤ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਬਦਲਣ ਲੱਗਾ ਵੀ, ਸਰਾਣੇ ਬਦਲਣ ਲੱਗਾ ਵੀ, ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਲੱਗਾ ਵੀ, ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸਪੁਰਦੇ ਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਯੁੱਗ ਬੀਤ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਮਹਿਲ ਸੱਖਣ ਰਹਿ ਗਏ, ਵਾਸਾ ਆਇਆ ਤਲ, ਗੋਰਾਂ ਸੇ ਨਮਾਣੀਆਂ ਬੈਸਨ ਰੂਹਾਂ ਮਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਮੀ ਪੁੱਛੈ ਅਸਮਾਨ, ਫਰੀਦਾ ਖੇਬਟ ਕਿਨ ਗਏ, ਜਾਲਣ ਗੋਰਾਂ ਨਾੜ ਉਲਾਮੇ ਜੀ ਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਆਕੜ ਆਕੜ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਸਨ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕੈਰੋਂ ਕਰਤੇ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਸੇ ਭਾਈ ਬਾਰਾਂ ਯੋਜਨ ਛਤਰ ਚਲਾ ਥਾ, ਦੇਹੀ ਗਰਜਨਾ ਖਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ साहिब सच्चे पातशाह महाराज यह देही यह शरीर वैसे गुरु अमरदास जी ने बचन आखे ने रोज नेत्रे विच पढ़दे आ कह नानक यह शरीर आ देह ए काया यह शरीर प्रवान होवा किन्हां दा शरीर जिन सतगुरु स्यों चित लाया जिन्होंने गुरु नाल चित जोड़ लिया सात संगत उन्हां दे शरीर उन्हां दी काया देही प्रवान होगी महाराज कहिंदे एक दिन ऐसा आवेगा कि ए शरीर देही खाक हो जावेगी।
0: एहो किथै घर औताक महल ना पाईऐ।
1: महाराज कहिंदे एह किथै घर औताक महल ना पाईऐ। कहिंदे आ जिहड़े महल माड़ियां दा मान करदा अहंकार करदा ना कि जीवन विच कई बारी ना मनुख बड़े पाप करदा कर कर पाप दर्ब किया किंदे पाप कर करके माया कठी करी जांदा वर्तन कह ताई किंदे वर्तन खर्चन वास्ते बहु परपंच कर परतन लियावै सुत दारा पै आन लुटावै मन मेरे भूले कपट न कीजै अंतन बेरा तेरे जी पै लीजै चोवा चंदन मर्दन अंगा सोतन जलै काठ कै संगा। कहन लगे आ जिहड़ा शरीर है ना ये लकड़ियां ने साड़ देना मिट्टी हो जाना सच्चे पातशाह कहिंदे जिन्ने महल माड़ियां ने तेरे भाई ये किथे ने ये सारा कुछ छड़ के चले जाना है।
0: देहो दीवी अंध कोड कब मुहाईया।
1: देहो दीवी कई बार असि आखदा भी दिने इन्हां दे घर चोरी हो गई गुरु ग्रंथ साहिब जी दे चरणां विच सारे बैठे हां बेनती भी करांगा कि अमृत वेला संभालिया करिए सिमरन सानू जो गुरु ने मर्यादा दिती गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भल के उठर नाम त्यावै उदम करे भल के प्रभाती इशनान करे अमृत सरण आवै झालांगे उठ नाम जप निस बासर आराध। ते कई बारी ऐसा होंदा भी गुरु ग्रंथ साहिब साडे जीवन दा आधार ने गुरबाणी है अमृत वेला सानू गुरु ने दिता रहता रहत मर्यादा विच सानू दसियां ने पर असी असर ही नहीं करदे सत संगत। कबीर साहब का एक बचन है ना दुनिया होशियार बेदार जागत मुशियत हो रे भाई निगम होशियार पहरुआ देख जम लै जाए। कहिंदे तेरे कोल धर्म ग्रंथ भी ने पुस्तकां भी ने जिवें साडे कोल गुरु ग्रंथ साहिब जी होण ते असीं कच्चे पिल्लियां नूं गुरु बनाउंदे आ सत संगत। जे सतगुरु की बाणी विच सानूं बचन सानूं हुक्म होया होए कि आग्या भई अकाल की तबै चलायो पंथ जिस बाणी ने सानूं पाठ राही समझाया कि भाई गुरु जिन्हां का अंधला सिख भी अंधे कर्म करेन वो भाणे चलन अपने नित झूठो झूठ बुलेन ऐसे सतगुरु की बाणी के बचन साढ़े कोल होण कि सतगुर बाजो गुर नहीं कोई निगुरे का है नाउ बुरा। साहब कहने लगे फिर सौ लो भी दिने जिवें लुट्टे जाता ना मनुख सौ जाता है लापरवाह होके कहन लगे इवें देहो दीवी अंध घोर कब मुहाइया। फिर इवें समझो कि जिवें मन नूं दिने ही मनुख जिहड़ा है गुरबाणी सिमरन नाम तो बिना सतसंग तो बिना भाई वकारां विच गुनाहां विच ऐबां विच लुट्टिया जा रहा है।
0: गर्भ मुसै घर चोर किस रुआई है।
1: कहन लगे अहंकार विच गर्भ जदों गुरबाणी विच पाठ आवेगा ना गग्गा रारा भब्बा गर्भ उत्थे गर्भ दी गल हुंदी जिवें मात गर्भ मह आपन सिमरन दे जिथे गर्भ बब्बे ना आवेगा उत्थे अहंकार दी गल। कहिंदे अहंकार विच मोह माया विच ही भाई गर्भ मुसै घर चोर किस रुआई है। कहिंदे किहदे अगे फरियाद करेगा क्योंकि गुरु गुरु जपण तो बिना साध संगत साथ ना चालै बिन भजन बिखिया सगली शार हर हर नाम कमावना नानक एह धन सार। जीवन विच कहिंदे अहंकार मोह माया विच भाई लुटिया जा रहे हैं चोरी हो रही है किस रवाई है फिर किदे अगे रोना रोवांगे।
0: गुरमुख चोर ना लाग हर नाम जगाईऐ।
1: भाई जेडे गुरु दे सनमुख ने चोर ना लाग ओनू फिर केड़े चोर ने। गुरु अमरदास जी का बचन असी पढ़िए इस देही अंदर पंच चोर वसै इस शरीर अंदर काया अंदर पंच चोर वसै काम क्रोध लोह मोह अहंकारा। कहिंदे पंज चोर वस रहे ने काम वस रहा क्रोध वस रहा लोभ वस रहा अहंकार अमृत लुट्टै। कहिंदे तेरे सारे शुभ गुण अमृत लुट रहे ने मनमुख नहीं बूझा ते अपनी मत दे पिछे तुरन वाला समझ नहीं रहा। जिवें पंक्ति आई ना, बिन बूझे सब दुख दुख कमावना। कहिंदे अमृत लूटै मनमुख नहीं बूझै कोई ना सुणै पुकारा। कहन लगे भाई जीवन विच जिहड़ा भाई गुरमुख है ना, उहनूं फिर चोर नहीं लगदे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं है उहदे जीवन विच। फिर दैवी सत संतोख धर्म धीरज दया इह शुभ गुण आ जांदे ने। कहिंदे गुरमुख चोर ना लागै, हर नाम जगाइए, उहनूं परमात्मा दा नाम जिहड़ा है जगा दिंदा, गुरु आवाज़ मारदा है उहनूं कि जाग ले हो रे मना, जाग ले हो कहां गाफल सोया, जो तन उपजिया सांग ही सो भी सांग ना होया। कहिंदे हे मना जाग लै भाई। और जागना कित्थे असी, सतगुरु बाणी विच कहिंदे ने कि जागना जागन नीका हर कीर्तन मैं, कीर्तन तो भाव रब की सिफत सला वडियाई उस्तत। कहिणगे ओ फिर जाग पैंदे, नाम उहनां नूं जगा दिंदा है। या सांग ही सो भी सांग ना होया। कहिंदे हे मना जाग लै भाई। और जागना कित्थे असी, सतगुरु बाणी विच कहिंदे ने कि जागना जागन नीका हर कीर्तन मैं, कीर्तन तो भाव रब की सिफत सला वडियाई उस्तत। कहिणगे ओ फिर जाग पैंदे, नाम उहनां नूं

0: आग जिहड़ी तृष्णा की अग लगी हुई है ना, काम क्रोध अहंकार की जीवन विच साढ़े शरीर अंदर, ये महाराज कहिंदे ने शब्द निवारी आग। जिवें कई बारी जीवन विच देखो शरीर नूं कैंसर हो जांदी, उन्हूं फिर साड़िया जांदा है, इवें सच्चे पातशाह महाराज कहिंदे शब्द निवारी आग, अंतर तृष्णा अग शब्द बुझाई है। तृष्णा अग्न प्रभ आप बुझाई, नानक उदरे प्रभ शरणाई। तृप्त भई सच भोजन खाया, मन तन रसना नाम ते आया। जिहड़े नाम रसना नाल जपदे ने सतसंग तृप्त हो जांदे ने, वो रज जांदे ने। सतगुरु महाराज कहिंदे ने शब्द दे नाल उन्हां दी भाई अंदर दी जिहड़ी तृष्णा दी अग है खत्म हो जांदी है। जोत ते पाई है, सारिआं विच ही जोत है रब दी, सब मैं जोत जोत है सोए। पर जदों गुरु कृपा करदा है, गुरु शब्द की दात दिंदा है, फिर उन्हूं सारे में रब की जोत दिसदी है, तो उस संसार नूं फिर सुनेहा दिंदा सात संगत के सब है घट राम बोलै, रामा बोलै राम बिना को बोला रे। वह फिर दुनिया नूं संसार नूं अपने अमृत बचना राही किड्डी वड्डी बख्शिश दिंदे ने कि सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। एक सूत मन सत संस जैसे ओत पोत प्रभ सोई। कहिंदे इक्को सूत्र है, जिवें मणके वक्रे वक्रे हुंदे ना, कई अमीर गरीब उच्चे नीवे संसार ते ने, पर कहिंदे सारे विच परमात्मा दी जोत वस रही है।
1: लाल रतन हर नाम गुर सुरत बुझाइया,
0: लाल रतन हर नाम गुर सुरत बुझाइया। जेहड़ा गुरु शब्द नाल सुरती जोड़दा है सत संगत, देखो शरीर साडा हुंदा है, ते कई बारी लैबोरेटरी वाला दसदा है वी तुहाडे विच आ नुक्स है, आ बीमारियां ने। आख्या शरीर साडा तेनू किवें पता है, कहिंदे भाई तेरे ब्लड दे टेस्ट दस रहे ने। इवें गुरु शब्द नाल सानू शब्द दी दात दे के ते दसदा भाई तेरे अंदर हौम है, तेरे अंदर विकार ने, तेरे अंदर दुबदा है, तेरे अंदर ईरख है। शब्द की दात दे के सतगुरु ये चानन बख्शिश कर देंगे ने। रतन जवेहर लाल हर नामा गुर काढ़ तली दिखलाया। कहिंदे हिरदे अंदर जपजी साहब के बचन चेते आए, मत विच रतन जवाहर माणक जे एक गुर की सिख सुनी। गुरु फिर अंदर वास्ते रतन प्रगट कर देंदा है। रतन जवेहर लाल हर नामा गुर काढ़ तली दिखलाया। किवें चीज ना ना लभे कई बार घर विच, ते सियाणी माता होवे पिता होवे कहिंदे आ की है तेरे सामने पई है। इवें गुरु साडे जीवन विच ओ परमात्मा दी जोत नूं प्रगट कर दिंदा है। घर मैं घर दिखाए दे सो सतगुर पुरख सजाण। साडे हिरदे विच जिहड़ा परमात्मा दी जोत नूं प्रगट कर देवे ओ पूरा गुरु है सत संगत। महाराज कहण लगे ने गुर सुरत बजाई है। महाराज शब्द नूं ते सुरत नूं, शब्द गुरु सुरत धुन चेला, सच्चे पातशाह महाराज कहिंदे ने जदों सुरत शब्द नाल जुड़ गई भाई, उदों फिर अंदरों विकार खत्म हो जाने ने ते गुण प्रगट हो जाने ने। सत संगत कई बारी जिस चीज़ की खुराक बंद कर दी ना, रुख है उन्हां नूं पानी ना पाओ, फसल नूं पानी ना पाओ, सुख सड़ जाती है। साडी आत्मा की खुराक है एक बार आखो सतनाम श्री। जदों जिस दिन जद असी इंदी खुराक बंद कर दिती सात संगत, अमृत वेला भुल गए, नाम जपना भुल गए, संगत विच आउणा भुल गए, ते ये जीवन भी जेड़ा है सच्चे पातशाह ने आख्या जियो तपत है बारो बार, तप तप खपै बहुत बेकार, जै तन बाणी विसर जाए ज्यों पक्का रोगी विरलाए। रब जदों चेते आ जावे संसार दे सुख झोली विच पै जांदे ने, ते जदों रब भुल जांदा संसार दे दुख फिर हानू आके चंबड़ जांदे ने। महाराज कहिंदे ने कि भाई ये जीवन शब्द ते सुरत दा

दी मर्यादा, जेड़ा मर्यादा तो उल्ट जाएगा वह फिर जेलां विच रहिंदा है। गुरु ने सानू गुरमत राही रहना दस्या, सासन गुरु घर किवें रहना, गुरु घर मन करके करमा करके बचन करके रहना। गुरु घर पैंदेखा वांगू सतगुरु कहिंदे ना रिहा कर, गुरमत दी रहनी है सत्संग। गुरु घर रहना तो बिधी चंद साहब वांगू रहीए। गुरु घर रहना तो कहन लगे तू शीहे मछंद वर्गी बिरती ना धार के आवी, तू मक्खण शाह लबाणे वर्गी बिरती धार के आवी। कई बार असी ना बाहरी तौर ते आ पर अंदरों आत्मा जिहड़ी हिरदा जिहड़ा गुरु तो पासे आ हुंदा है। देखो शरीर करके तो दुनी चंद भी तो गुरु साहब के चरणों में ही रहिंदा सी, पर शरीर करके भाई बचित्र सिंह साहब भी रहिंदे सन, पर अंदरों समर्पित सन। गुर कै गृह सेवक जो रह, गुर की आग्या मन में सह, आपस को कर कश न जनामै।

ऐसी रोजाना प्रसार प्रोग्राम कथा विचार जो दरबार साहब अमृतसर साहब दे मंजी साहब दीवान हाल तो रोजाना प्रसारित किया जाता है। आस है कि तुसी कथा विचार दे इस प्रोग्राम का आनंद माणिया होगा। तो फिर आज दी कथा विचार दे प्रोग्राम की इत्थे समाप्ति है। मैं दलजीत सिंह तुहाडे तो आजाद चाहांगा। दिओ आग्या ते करो गुरफते सांझी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

दुनिया भर दे कोने कोने विच वसदे पंजाबियां दी दिली चाहत हुंदी है कि ओ हर हिले सिखी दे मुकद्दस स्थान दरबार साहिब अमृतसर साहिब नाल जुड़े रहन। पंजाबियां दी इस अध्यात्मिक चाहत नूं पूरा कर लई हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया वल्लों सिडनी समय अनुसार रोजाना शाम 5 बजे दरबार साहिब अमृतसर तों बख्शिश होए हुक्मनामे दी शब्द विचार ब्रॉडकास्ट की जा रही है। हरमन रेडियो, सबदा रेडियो।

0: तुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। तुरकी बाणी सानू गुरु साहबान ने साडे ते तरस करके अपनी किरपा द्वारा प्रेम पदार्थ बख्शिया है। जद असी गुरबाणी विचारदे हां तां साडियां गुरु साहबां नाल गल्लां हुंदियां हन। गुरु साहबां नाल गल्लां करन दा इक नमाणा जिहा हीला प्रोग्राम गुरबाणी विचार दे तहत हर रोज सुनना शामी हरमन रेडियो ते।
1: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ।

0: साडी अमीर सभ्यता दियां निशानियां, रीसी पुत ना जम दे होर सबे गल्लां।
1: जेड़ा किसे दी रीस करके कुछ करना चाहे पर सफल ना हो सके, उस उत्ते ए अखाण टुकांदे हन।
0: मुहावरे, अखाण अते पंजाबी बोले, पंजाबी बोले। हरमन रेडियो, हरमन रेडियो, आस्ट्रेलिया, आस्ट्रेलिया, आस्ट्रेलिया।
2: सैड जां रोमांटिक गीतां दे शौकीन हो।

0: महानता बारे तमिल दी कहावत है कि कुत्ते भौंकण नाल पहाड़ नूं कोई फर्क नहीं पैंदा। सुने विचारां दे अंग संग हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया नाल।
1: हां गप कैवें यार, सुना दे कोई नवा गाना भाई। ओए
2: भाई एक मिनट खड़ जा, हुणे सुनाऊंगा।
1: ओए ए नहीं मेरे यार, इहदा पुराना होगा, कोई नवा सुना यार, चक्कमा जा भाई।

बहाने बारे अफरीका की कहावत है कि जदों बिल्ली ने अपने बलूंगड़े खाने होण तां ओ बहाना करदी है कि उना चो चूहियां वर्गी बू आ रही सी। सुने विचारां लई सुनदे रहो हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया।

एक दिन एक जट मूह सवेरे ही साध दे डेरे चले गया ते कहा, गल सुन बई साधा, अज सवेरे सवेरे तू मेरे मथे लगा ते मैं तेरे, अज जा ता मैं भी दुध मलाईया छकू ते बीबिया मेरिया भी लत्तां घुटन गियां, जा तू भी मेरे वांगर गड्डियां च धक्के खावेगा ते धुप्पे मरेगा, देख ला हुण किद्दां करनी है। दोनों एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। चंगे विचारां लई वचनबद्ध है हरमन रेडियो।

0: परिवार की ताकत मैं विच नहीं सगो असी विच हुंदी है। आधुनिकता दे इस दौर विच रिश्तियां अते सभ्याचार नूं विसरन तो बचाइए।
1: हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया चंगे विचारां नाल करवांदा है जिंदगी दी सच्चाई दा एहसास।

जो हो रहा है उसनों सोचिया नहीं करते, जो मिल गया उसनों गवाया नहीं करते। मिलती है मंजिल उन्हां लोकां नूं जो वक्त ते हालात अगे रोया नहीं करते। तुहाडा एकांत ही तुहानूं मनुख बना सकता है, पीड़ता तुहानूं पेड़ बना देवेगी। याद रखना, जिंदगी च सब तो हैरानीजनक चीजां उदो हुंदियां ने जदों तुसी आस छड़ रहिंदे हो। इंसान जदों हत्थां दीआं लकीरां च भविख लभण लग जावे तां समझ लैणा कि उस दीआं बाहां च ताकत ते मन च विश्वास खत्म हो गया है। मरी हुई मछली पानी दे वहां नाल वहिंदी है ते जीवित मछली वहां दे उलट। जेकर तुसी भी जीवित हो तो गलत का विरोध करना सीखो, वहां दे उल्ट चल के वेखो, जिंदगी नूं अजमा के तां वेखो, हनेरियां खुद मोड़ लैणगे रस्ता, एक दीपक जला के तां वेखो। किसी भी इंसान नाल ज्यादा लगाव हानिकारक हुंदा है, क्योंकि लगाव उम्मीद दे वल लै जांदा है ते उम्मीद दुख का कारण बनती है। मदद एक अजिही घटना है, कदीए तां लोक भुल जांदे ने ते ना कदीए तां लोक याद रखते ने। इंसान नाल ज्यादा लगाव हानिकारक हुंदा है, क्योंकि लगाव उम्मीद दे वल लै जांदा है ते उम्मीद दुख का कारण बनती है। मदद एक अजिही घटना है, कदीए तां लोक भुल जांदे ने ते ना कदीए तां लोक याद रखते ने। इंसान भी कितना अजीब हुंदा है।

अंदर की तरफ देखना सब तो बेहतर है। जीवन च हजारां लालच हुंदे होए भी सिद्धांतां ते चलना सब तो बेहतर है। जिंदगी च अगे वधना है तां कदी कदी बहरे हो जाओ, क्योंकि ज्यादातर लोगों की गल्लां मनोबल गिराउण वालियां हुंदियां ने। कदे बेहाल होवेगी ते कदे खुशहाल होवेगी, कदे आम होवेगी ते कदे खास होवेगी, कदे जित होवेगी कदे हार होवेगी। जिंदगी दी एक किश्ती हौली हौली ही पार होवेगी, हौली हौली ही पार होवेगी। सो दोस्तों, किवें दी लगी है वीडियो कमेंट बॉक्स विच अपना विचार जरूर दसना। फिर मिलते हां एक होर नवी वीडियो विच, तद तक लई अपना ख्याल रखना।

0: युद्ध बारे एक यहूदी कहावत अनुसार जे एक फौजी नू ए पता लग जावे कि दूजा फौजी किस तरह सोचता है तो युद्ध होनो हट जानगे।
1: लेखक परमिंदर सोडी, किताब संसार प्रसिद्ध मुहावरे। चंगे अते सोहणे विचारां लई जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

0: आओ सुनावा अखाण सियाणियां दा ज्ञान। लो जी अज दा मुहावरा, छड्या गिरां ते की लैणा ना।
1: जदों किसी नाल दिलों सांझ ना रहे उस बारे ना सोचो।
0: मुहावे अते अखाण साडी अमीर सभ्यता दियां निशानियां। हरमन रेडियो, हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया, आस्ट्रेलिया, आस्ट्रेलिया,
2: आस्ट्रेलिया। तुहाडे मन दी रीज पुगावांगे, मन चाहे असीं गीत सुनावांगे। हरमन रेडियो।

0: रोटी हजम नहीं होंगी। वरतो गोल्डन ग्रेन फ्लोर मिल का गरेवाल चक्की आटा, ताजा घट केमिकल की वरतों वाली कणक जिड़ी के सीधी खेतों चो मिल च लाई जाती। आस्ट्रेलिया का बनिया शुद्ध आटा, ताजा खाओ ते तंदुरुस्त रहो। आटे तो इलावा ताजा बेसन, लड्डू वाले स्पेशल बेसन, मल्टीग्रेन आटा, काबली छोले, मसलों की दाल, चना दाल, सोयाबीन ते बादाम भी साडे अपने प्रोडक्शन हैं। वधेरे जानकारी लई विजिट करो गरेवाल गोल्डन ग्रेन डॉट कॉम डॉट एयू या फोन करो 0428895564।
1: आ गया तुहाडा ताया आस्ट्रेलिया दे ब्रिस्बेन चो। ओ आजो आजो ताया जी, वेलकम। ताया आज रात साडे कोल ही रहना पऊ थोनू। ओ मैं आ ता गया, मैं ता नींद इंडिया आले गद्दे ते आउंदी आ। इथो किथो मिलू इंडिया आले गद्दे? लो ताया आपां ले आउने इंडिया आले गद्दे पंजाबी फर्नीचर तो। पंजाबी फर्नीचर? जी हाँ, पंजाबी फर्नीचर एथो मिलदा, सारा इंडियन फर्नीचर जो भी तुहानू चाहिदा सब एथो मिलू। मंजे, धार्मिक फोटोआं, चादरां, साइकिल, चूल्हे, दातियां, रंबे, कई सब कुछ एथो मिलू। ताया जी लाया था तू मेरी टेंशन ही दूर करती। नाले तेरी ताई कहिंदी सी भी पता करी इंडियन बॉक्स बेड दा, ओनू वाला फिकर लगा रहिंदा लीड़े लते सामने दा। लिया फिर पता लिखा फिर पंजाबी फर्नीचर दा। लिखो फिर 2A 130 किंगस्टन रोड अंडरवुड ब्रिस्बेन। अकाल कर लियो ताया जी 0404000536 ते। वेबसाइट है जी punjabifurniture.com.au। नवी अपडेशन दे लई फॉलो करो फेसबुक पेज नू @punjabifurniture।
2: अपनी बिजनेस की तरक्की लई तुसी भी हरमन रेडियो दी सेवावां हासिल कर सकदे हो। हरमन रेडियो ते अपनी बिजनेस की एड देने लई जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नू स्पॉन्सर करने लई संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन च विजिट करो।
3: तुसी सुन रहे हो अपना हरमन रेडियो, 24 घंटे 7 दिन आस्ट्रेलिया दा पहला पंजाबी रेडियो। हरमन रेडियो 24 घंटे
4: Harman Radio. Well, here we go. We back up in the same old joint again with the original gangster, the hardest of the hardcore, Mr. Jazzy B. Put the G in the Glock.

0: जसपिंदर भला भगवंत मान
1: साडी रैली च पहले ही बड़े नंग ते मलंग कठे होए
0: भजना अमली
2: बड़े बड़े शिकारी रहे संत के
0: गुरप्रीत कुगी
3: मैं ते ओनू करदा सौरी दियो
0: माई मोनो
4: पोस्ती
1: अपनी मारी जाने मेरी भी सुनो
0: पोटू शाह
5: पोटू शाह यार जेल जाके बुल्ले शाह तो नहीं बन गया
0: और खास खास कलाकारां दी कॉमेडी
6: बोलता ना बोल मैं पता नहीं केड़ी गल्लां चुप
0: हर रोज शाम नू 7-8 बजे तक सिडनी समय मुताबिक
7: वार्ता सुनावा थोनू बस दी मैं बस विच गुजरे जो हो जाए बस भी जिन्नी मेरे नाल हुई बठिंडे पटियाले तक कली कली गल थोनू रहा दस भी जदों बस अड्डे उत्ते हाकर आवाजा मारे इथो चली रामपुरे ते रामपुरे तो बरनाले रास्ते च रुकनी नी कच्ची भुचो भुचो मंडी बेगा ते धूरकोट बैठे हो ना रुकनी नी राह छोटे मोटे अड्डे ते चक के समान माई गठड़ी जी पास कर बस है चढ़ी ताई लंबड़ा दे गड्डे ते सुरमे वाला आके एक बस विच चढ़ गया मूरलियां छड़ के फ्रंट सीटां दोने तीजी सीट नाल लग खड़ गया हां जी लो जी वीर जी भरा जी दास नूं जोगी सप्पां दा बादशाह कहिंदे ने दास दे दादे पड़दादे तो ला के जोगी सप्पां दा कम करिया करदे सप्प नूं रखदे सप्प दी सिरी तो सुरमा तैयार करा करदे ने बस चलन विच सिर्फ 50-60 मिंट बाकी ने भाजी गल्लां बड़ियां बेतुकियां ते बेसुरियां कर रहे हो इन्ना टाइम दे विचो दास नूं टाइम बख्शना सिर्फ 50 मिंट दा जांदे जांदे साडी मशहूरी साडे प्रचार सुणदे जाना कई कई मेरे वीर भरा कह दिंदे ने 15-20 कर्मां ते बंदा तुरिया हुंदा बंदे नूं चंगी तरह पछाण लैंदा कि उजागर सिंह तुरिया हुंदा अखबार पढ़दा अखबार दे बरीक तो बरीक अखर चंगी तरह देख लैंदा ट्राई करो जमैस करो साडे सुरमे दी पाओ इक सलाई 15 मिंटां दे विच विच भरा जी ना तां तुहानूं उजागर सिंह दिसेगा ना तुहानूं अखबार दिसेगा घड़ी ते देखो टाइम साडे सुरमे दी पाओ इक सलाई 15 मिंटां दे विच विच भरा जी साडे सुरमे दी सलाई पाउंदे सारी साडा सुरमा तुहाडे दोनों डेलियां नूं पाड़ के इस तरह बाहर कढ़दे जिवें पुन्नां दा चन्न बदलां चों पाड़ के बाहर आ जांदा कई कई मेरे वीर भरा कह दिंदे ने नक कन्न डुलदे ने होर भी अनेकां फायदे रहा प्रचार कर वस भी जिन्नी मेरे नाल हुई बठिंडों पटियाले तक कली कली गल तुहानूं रहा दस भी रामपुरे दे अड्डे उत्ते आ के भी आवाजां ही होवे ना सवारी कोई जेठू किते गिल तपा बरनाला संगरूर जाऊ बारो बार भी रुकनी नी राज किते लंडू पंजू अड्डिया ते किते कोई कहदे बड़रुखेदार भी चक के जवाक माई गोदी च वहाला खिच के पीपा भैने सीट ना लाला बिस्कुट लगदे चक के जवाक माई गोदी च वहाला खिच के पीपा भैने सीट ना लाला मारी जरा पासा आखियां इस भैन नू इक दी जगह तां पई आ होर वहन नू दो वाली सीट उत्ते तीन तीन बैठे सी तीन वाली उत्ते बैठे चार चार भी इधर नू हो जा कानू पैर मिधी जाना कनैक्टरा भरावा रहे धक्के मार भी किथे हैगा थां अगे कानू धक्के देण लगे देखो पहला किन्ना गड्डी विच रस भी जिन्नी मेरे नाल हुई बठिंडों पटियाले तक कली कली गल थोनू रहा दस भी चल भाई नाल लग थोड़ी जी जगह तू छड इंजन ते जाके वेजा चाके झोला नाल ले जा सिद्धियां सवारियां चढ़ाउन लगे आ गड्डी ता विचाले पई है सारी खाली पिछे हो जा इत्थे की मख्याल लगे हाथ इथो छड भाई आंडे जे ना कढ भाई होश नाल खड़ा हो जा अपने तू भार ते मैं ता पहला औखी खड़ी अद्धो वध डिग्गी खड़ी बापू वे बीमार ते बस विच भीड़ बड़ी मेरे केड़ा बस भाई देख ला किसे ने मेरे लीड़े पाड़ते तूड़ी वांगू थुन के कनैक्टर पतंदर ने देख भैने किन्ने लोग फाहे चाढ़ते घावदां दी कोठी वाला फग्गो वाला चन्न ते वजीदपुर वाली जावे ना सवारी कोई गड्डी विच चढ़ एक्सप्रेस गड्डी बठिंडों पटियाले तक इथो चली रुकूगी भवानीगढ़ दो मिनट आली रुकू सिर्फ भवानीगढ़ उतरन वाले जाओ बारी विच खड़ उतर जाओ जी ने उतरना हाले जी इथो चली तो रुकू पटियाले जी शेरां वाला गेट ते फुहारा चौक दोनों

0: सब तो पहला सुनो पेंडू जनता दे पार पिंडा वाली जनता तरों दी हर रोज खादा ते तेल दिया कीमतां दा बोझ कदे मारे कुड़ी दे व्याह वाला दाज रहिंदा खुंदा खा जांदा शाहां दा ब्याज कदे हर डोबे कदे सोके दी मार
1: जनता बचाईए किन्ना कपार
0: इक ठगी वजदी दूजी तैयार
1: जनता बचाईए किन्ना कपार
0: हुण सुनो शहरी जनता दे दुख सारिया तो वड्डा महंगाई वाला पूत जीनू जीनू चिंबड़िया होया नसूत बच्चे दी पढ़ाई पानी बिजली दा बिल सारा मीना चिंता च रहंदा ए दिल कईयां नू मारे यारो लाटरी बुखार
1: जनता बचाईए किन्ना कपार
0: इक ठगी वजदी दूजी तैयार ऐसे गलों पीड़ित मुलाजमां दे करने नित कठे होके दिंदे रहन तरने मजबूर नू फड़ा

0: कॉमेडी आवर हरमन रेडियो
1: कांती है उद्धो जद मैं छतरी लेके तुरया रात दे विच मैनू रात पै गई।
2: अच्छा
1: ते मेरी एक तबीयत खराब होगी
2: मैं फेर
1: मैं क्या चल घर नू किथे जावांगी मैं सीधा डॉक्टर दे चले गया।
2: अच्छा
1: मैं ज्यों बैठा डीकन लग्या संतिए तीन चार घंटे बाद डॉक्टर आया
2: फेर
1: ते डॉक्टर आंदा ही कहंदा भाई जेड़े बंदे ने मेरी सब तो वध ठीक कीती है वो आज मेरे को।
2: हाँ।
1: मैं अजे उठण ही लग्या सी नाल एक मेरे होर खड़ा हो गया पहला ओ मैं क्या भाई साहब मैं किन्ने घंटे हो गए बैठे नू मैं सब तो वध डॉक्टर दी उड़ीक कीती है ओ मैनू कहंदा भाई साहब तुसी की उड़ीक करनी है जिन्नी मैं उड़ीक कीती है। मैं क्या तैं की उड़ीक कीती है कहंदा मैनू 2 साल हो गए डॉक्टर दे कपड़े सिउंते नू हजे तक पैसे नहीं मिले। कांतीए डॉक्टर दी क्लीनिक दे विच मैं ड्रामेबाजी बड़ी देखी
2: किवें
1: ओ मैं कंपाउंडर नू कहा मैं कहा यार मेरा नंबर ला मेनू किन्ना चिर हो गया बैठे नू
2: आहो
1: मेनू कहंदा भाई साहब तुसी बैठो थोड़ा हजे खून चेक करना पैना थोड़े टेस्ट काफी लेने।
2: अच्छा
1: ओ मैं कहा खून तो मेरे च पहले ही घटा शांतिए उथे एक बंदा आया मरीज
2: हाँ?
1: डॉक्टर नू आके कहंदा डॉक्टर साहब ते मेरा थोड़े कोलो इलाज चलदा।
2: अच्छा
1: ओ कहंदे भाई हुण की तकलीफ आ कहंदा डॉक्टर साहब तुसी मेरा ना नहाना बंद कीता सीगा ते हुण मैं नहा लवां कोई नुकसान तो नहीं है।
2: अच्छा
1: डॉक्टर कहंदा भी किन्नी देर होगी कहंदा जी 1.5 साल हो गया।
2: ना डॉक्टर फिर की बोलिया
1: ओ कहंदा छोटे तू इलाज मेरा हजे चालू रख ना आने वाले तेनू कट्ठा ही एक दिन नवा दे शांति मेरे बैठे बैठे एक नमूना होर आ गया।
2: अच्छा
1: कहंदा डॉक्टर साहब एक तो मैं ना धुप दे विच गर्मी दे अग जी दे नेड़े ज्यादा काम करदा ते मैनू बुखार जा रहिंदा एक मैनू लूज मोशन लगे हुए आ।
2: अच्छा
1: ते भुख भी मैनू घट लगदी है। डॉक्टर कहंदा काका भी तेरे टेस्ट काफी होंगे ते उधर लैबोरेटरी दे विच जाके अपना खून खान टेस्ट करवा।
2: अच्छा
1: कहंदा डॉक्टर साहब मैं तो बहुत गरीब बंदा वा मेरे कोले पैसे बहुत थोड़े आ ते तुसी मेरा इलाज फ्री कर दियो ते जदो मैं ठीक हो गया एक काम मैं थोड़ा फ्री कर दूं।
2: अच्छा
1: डॉक्टर कहंदा काका तू काम की करना
2: की कहंदा
1: कहंदा जी मैं शमशान घाट दे विच मुर्दे साड़दा। कांतीए बैठे एक मरीज होर आ गया।
2: अच्छा
1: डॉक्टर ने ओनू पैरां तो लेके सिर तक चेक कीता डॉक्टर कहंदा भाई साहब दोनों बीमारी बड़ी नामराद शुगर थोड़ी इन्नी वध गई ओवरफ्लो होगी।
2: अच्छा
1: ते एदे विच तुहानू परहेज बहुत रखना पैना।
2: हाँ।
1: सब तो वड्डी गल ता ए आ वी तुहानू शुगर फ्री लेनी पैनी।
2: ना मरीज की बोलिया
1: मरीज कहंदा डॉक्टर साहब तुसी शुगर फ्री दी गल छड्डो मैं पंजाब पुलिस दे विच हौलदार हां मेरे घरे ता सारा राशन ही फ्री आउंदा। कांती ओदो नू लेडीज डिपार्टमेंट दी बारी आ गई।
2: अच्छा
1: किते ओवर वेट आली लेडी सी।
2: हाँ।
1: डॉक्टर कहंदा बीबे अपना वेट करो जदो जनानी वेट आली मशीन ते चढ़ी डॉक्टर बड़ा खुश होया शांति।
2: अच्छा
1: डॉक्टर कहंदा वेरी गुड मैडम कहंदा तुसी मेरी दवाई इन्नी परहेज दे नाल खादी आ देखो कल थोड़ा 65 किलो वेट सीगा और अज 5 किलो थोड़ा वेट घट गया 60 किलो रह गया।
2: ना भजनिया जनानी की बोली
1: जनानी कानो बोली कोल बैठा घर आला बोलिया कहंदा डॉक्टर साहब एदा वेट कानो कटिया कल मेकअप करके आई सी अज बगैर मेकअप तो आ गई। संतिए नाल दे कमरे दे विच लेडी डॉक्टर मरीजा नू चेक कर रही सी।
2: अच्छा
1: ते एक जनानी ना गल कर रही सी डॉक्टर भाई जदो बच्चा होण आला होवे जनानी नू ओदो जनानी नू खान पीन दा ध्यान रखना चाहिदा
2: आहो
1: और चंगे काम करने चाहिदा रोमांटिक मूड दे विच रहना चाहिदा मनोरंजन दियां ज्यादा चीजां वल ध्यान देना चाहिदा।
2: आहो भजनिया
1: कहिंदी देखो एक मेरी मरीज सी 1 महीना पहलां दी गल ओनू न्याणा निक्का होण आला सी और 4 दिन पहला फिल्म देख के आई बालक।
2: हाँ।
1: ओदे मुंडा हो गया।
2: अच्छा
1: कहिंदी एक होर मेरी मरीज सी ओनू बच्चा होण आला सी ओ फिल्म देख के आई बॉबी
2: फेर
1: ओदे कुड़ी हो गई। अजे इन्नी गल कहण दी देर सी शांतिए जेड़ी जनानी नू चेक कर दी सी डॉक्टर ओ ता उठ के भज निकली चिक्का मारन लग गई।
2: हाय हाय की होया
1: कहिंदी ओए डॉक्टर मेरा की बनू मैं ता अजे राती फिल्म देख के आई आ जानवर। एक ता शांतिए जनानिया नू अकल देण आला कोई नी
2: की गल होगी
1: बई पता होना चाहिदा हस्पताल दे विच चली आ बई चलो नाल घर आला होया एक बंदा होया ता चलो चल जां।
2: आहो
1: एक जनानी देखी 11-12 न्याणे उधे लई फिरे।
2: ਇੰਨੇ ਜਵਾਕ
1: ਜਵਾਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਤੂਰ ਚੱਕਤਾ।
2: ਅੱਛਾ,
1: ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਿਰੰਜ ਜੀ ਚੱਕੀ ਵੀਰੇ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਚੱਕੀ ਵੀਰੇ, ਕੋਈ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਮੂੰਹ ਚ ਲਈ ਵੀਰੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ।
2: ਅੱਛਾ,
1: ਉਹਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਈਆਂ ਜੀਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੋਤਲ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾਈ ਫਿਰ।
2: ਹਾਏ ਹਾਏ,
1: ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਚੜੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ।
2: ਅੱਛਾ,
1: ਉਹ ਬੇਰ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਆ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਆ, ਉਹ ਬਲਵਿੰਦਰ
2: ਆਹੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਧਾਰੀ ਆ
1: ਬਈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਖੋਰਾ। ਉਹ ਬੋਲ ਪਿਆ,
2: ਕੀ
1: ਕਹਿੰਦਾ, ਬੀਬਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਸਿਆਣੀ ਬਿਆਣੀ ਆ ਤੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖੋਰੂ ਪਾਇਆ ਪਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅੱਧੇ ਨਿਆਣੇ ਘਰੇ ਛੱਡਿਆਉਂਦੀ।
2: ਮੈਂ ਜਨਾਨੀ ਕੀ ਬੋਲੀ,
1: ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਿਆਣੀ ਆ, ਅੱਧੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ। ਤਾਂਤੀਏ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੀ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਨੀ ਡਰਦੇ।
2: ਆਹੋ ਭਜਨੇ ਆ,
1: ਉਹ ਚੂੜ ਚੱਕ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਰਾਣਾ
2: ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ,
1: ਕਿੰਨਾ ਹੱਟਾ ਕੱਟਾ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਬੈਠਿਆ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਮੂੰਹ ਜਾ ਬੜੀ ਆਵੇ।
2: ਅੱਛਾ,
1: ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਹਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਕਲੇਮ ਲੈਣਾ।
2: ਅੱਛਾ,
1: ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ?
2: ਕੀ ਬੋਲਿਆ?
1: ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਲਾਈਟ ਚਲੀ।
2: ਅੱਛਾ,
1: ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਗਈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਦੰਦ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਓਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਜਾ ਕੇ ਤਾਕੀ ਚ ਵੱਜਿਆ ਹੋਣਾ।
2: ਨਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਬੋਲਿਆ?
1: ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤਾਕੀ ਚ ਮੂੰਹ ਕਾਹਨੋ ਵੱਜਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਝੇੜ ਬੈਠਾ।
0: ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ,
3: 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ।

0: जट्टा के मुंडे साढ़े नाल है जो चंडा गाड़ के बदमाशी करना है।
1: थोड़ा थोड़ा हंसना जरूर चाहिए।
2: पिछले साल मेरा बड़ा भुलेखा दूर होया।
3: क्यों की गल होगी सी?
2: गल की होनी सी, छनकाटा 95 रिलीज हुई नू अजे 2 दिन नहीं हुए सी।
3: अच्छा।
2: मैं अपनी कार च कपूरथले नू जा रहा सी।
3: अच्छा।
2: की वेखदा मेरे सामने एक बस जावे, ओदे पिछे मोटा करके लिखा हुआ छनकाटा 94। मैं गदगद हो उठिया, मैं कहा भी ड्राइवर मेरा तकड़ा ही फैन लगदा, पर इन बेचारे नू अजे तक ए नहीं पता कि हुण तां छनकाटा 95 भी रिलीज हो चुकी आ, ते हाले तक छनकाटा 94 लिखाई फिरदा। मैं सोचिया कि बस रोक के इनू नवी कैसेट दिंदे आ, बहुत खुश होऊ। मैं भतीज कार अगे कढ के बस दे मूहरे जाके ठा ब्रेक मारी।
3: अच्छा।
2: मैनू कहिंदा क्यों मरना? मैं कहा जी नहीं। घरों लड़के आया? मैं कहा जी नहीं। थाबड़दानी च पानी पै गया? मैं कहा जी नहीं। कोई सवारी कढाउणी आ? मैं कहा जी नहीं। कहिंदा फिर फुफड़ा मेरे मूहरे क्यों आया? मैं कहा लै भाई जिहड़ा रिश्तेदारी कढण लग पिया, शायद फुफड़ तो चाचे ते भी आ जावे। मैं कहा जी गल ए आ, मैनू तुसीं पछाणिया नहीं। कहिंदा पछाणन नू तू चैक कर। मैं कहा जी मैं भला? कहिंदा मैं कहिंदा दही चक्की फिरदा, कहिंदा बिच डिगण नू फिरदा। ओहो। मैं कहा जी मैं जसविंदर भला, जानी उर्फ चाचा चतर सिंह छनकाटे आला। कहिंदा केड़े छनकाटे आला? मैं दवा दब जेब चो कैसेट कढ के फड़ाई। मैं कहा हद होगी जनाब, एडे मेरे जबरदस्त तुसी फैन हो, ते थानू अजे तक ए नहीं पता के मार्केट च 95 भी आ गई, ते तुसी हजे तक पिछे छनकाटा 94 लिखाई फिरदे हो। उन्हें कैसेट फड़ के भतीज बगा के ठा मारी बाहर। कहिंदा तैनू किने कहा होए मैं तेरे पिछे छनकाटा 94 लिखाया? मैं कहा होर किहदे पिछे लिखाया? कहिंदा मेरी तां गड्डी दा माडल आ 94, मैं तां इस करके लिखाया छनकाटा 94। ते मैं कहा फिर पिछे छनकाटा क्यों लिखिया? कहिंदा पहले साल ही सारी खड़क गई। इन्हे नू भतीज उथे तुरदियां फिरदियां 2-4 बुढ़िया सवारियां आके बस के चढ़ गियां। अखां जियां कढ के ड्राइवर उन्हां नू कहिंदा की बुड़बुड़ करी जानी हो, सीटां साफ नहीं, सीटां साफ नहीं, हजे पहला गेड़ा दूजे गेड़े साफ हो जाणगियां।
3: चाचा फिर तां ड्राइवर ने खासा ठिठ कीता।
2: ओए भतीज कदे कदे इन्ना क ठिठ हो भी जाना चाहिदा।
3: क्यों?
2: बंदा धरती ते रहिंदा। ऐदां ही भतीज एक सिपाही ने लुधियाणे तों जलंधर जाण वाली बस फड़ी। जदों बस फलौर पहुंची तां उथों इक थानेदार चढ़िया। बस च भीड़ भी चंगी सी। सिपाही अपनी सीट तो उठ के कहिंदा जनाब बैठो। थानेदार कहिंदा कोई गल नहीं काका, बह जा बह जा बह जा। 10 मिंटां बाद बस ग्राया पहुंच गई। सिपाही तो फेर ना रह गया, उठ के कहिंदा जनाब तुसी बैठो, खड़े चंगे नहीं लगदे। थानेदार कहिंदा काका फॉर्मेलिटी वाली कोई गल नहीं, तू अपनी सीट ते बैठ। बस भाई फगवाड़े पहुंच गई। सिपाही फेर उठिया। थानेदार कहिंदा काका तैनू एक बारी कहता बह जा, एवी चमची मारन की लोड़ नहीं। सिपाही नू चढ़िया गुस्सा, उन्हें थानेदार नू गल तों फड़ लिया।
3: क्यों?
2: कहिंदा तू जलंधरों मेरे फेरे करा के मोड़ना, मैं फलौर उतरना सी, धक्के नाल मैनू इत्थे तक लै आया।
4: इनू कहंदे आ भुलेखा पैणा।
5: हास रास कलाकारां दे हासे ठठे हरमन रेडियो ते।

0: ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਗਾ ਪੋਸਤੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੋ ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਛਾਣ ਮਾਰਿਆ
1: ਕੱਚੀ ਟੁੱਟ ਗਈ
0: ਹੈ
1: ਕੱਚੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜਿੰਨਾ ਦੀਆ
0: ਓਹੋ ਆਲਾ ਦਾਦਾ ਵੇ ਪੋਸਤੀਆਂ
2: ਓਹੋ अज तो रब तो कुछ होर मांग लेंदे ते चंगा
0: मैनू दो घंटे हो गए थे एयरपोर्ट ते फिरदी नू
2: दो घंटे हो गए माई मोनो मैंने दूजा महीना जा रहा है जी
0: दूजा महीना तेन कनेडा आए जा रहा है तू मेनू लैन वास्ते आए ही नहीं मेरे घर दो घंटे हो गए
2: माई मोनो मैनू की पता तुसी दस्या ही नहीं जी अज तो रब तो कुछ होर मांग लेंगे
0: मैं तो तार दिती तेन भी मैं आ रही है
2: माई मोनो
0: की हाल चाल है तेरा
2: मैं कहना पूछना कुछ
0: अच्छा
2: हां जी
0: बजन पूछती है शो शू चंगे किते लगते जी मोहन पर आके तू ना पैसे पूसे कोई जोड़े लगते डॉलर ना तो जेबा भरी फिर
2: माई मोनो पैसे की जोड़ने सी जी मैं तो जिदन का मेरे गोडे जुड़े पे
0: कितने गोडे जोड़ने कितने पैसे जोड़ने
2: माई मोनो इतने बर्फबड़ी पी सारे ने गठिया हो
0: चल पूछती है बहुत गल सुनाई हूं मैं चल दी है ना हूं शो कितना तेरा
2: माई मोनो शो अज है
0: अज शो है
2: हां जी
0: कितने बजे है
2: अज शाम क्वीन एलिजाबेथ थिएटर च है जी केदीप जगमोहन कौर दा
3: बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों वैनकूवर निवासियों की खिदमत दे विच एक बार फिर मैं ते जगमोहन जी असी हाजिर हो गए हैं बहुत देर बाद क्वीन एलिजाबेथ थिएटर दे विच तुहानू इन्नी तादाद दे विच अज देखिया है और जदों भी मैं इस स्टेज ते आउना है मैनू बहुत सारिया पुरानी यादा आ जांदियां ने मेरे ज़हन दे विच इस बारे खुशखबरी सुना दे हां वी कनेडा विच रहिंदे होए पंजाबियों लई असीं उन्हां दे मनोरंजन लई इस बार

0: पोस्ती जी भी नाल लेके आए। मैं जदों दा इस वैनकूवर दी इस स्टेज दे उत्ते आया, क्वीन एलिजबेथ थिएटर दी स्टेज ते, बहुत सारियां फरमाइशां आईयां ने भी, ये गीत सुनाओ, ये सुनाओ, वो सुनाओ, लेकिन मैनू तुहानू पता कॉमेडी मेरा सब्जेक्ट है। मैनू एक बड़ा फ्रैश जिहा नवां जोक याद आया है। जदों मैं कॉलेज पढ़दा सी साडे वेले को एजुकेशन सी, हुण भी हैगी है, हुण किहड़ा मुक गई। सो मेरी मुराद यह भी साडे नाल एक साडी क्लास वालों सी लड़की, मैनू याद आ गया, उन्हें एक ड्रामे दे विच भूआ दा रोल कीता। लो जी, रोल बड़ा जबरदस्त कीता, उन्हें फर्स्ट प्राइज मिलिया, लेकिन उहदा नौं ही भूआ पै गया। सारा कॉलेज उन्हें भूआ भूआ भूआ, जिधर जावे भूआ। बेचारी बहुत तंग आ गई। प्रिंसिपल साहब ने उन्हें शिकायत लाई, कहनी देखो जी, एक तो मैं रोल खूबसूरत कीता, एक मैं सारी क्लास, सारा कॉलेज भूआ भूआ कहना है। प्रिंसिपल साहब एक क्लास दे विच गए, कहने खड़े हो जाओ जड़े जड़े भूआ कहें। लो जी, सारी क्लास तकरीबन खड़ी हो गई, तो खूंजे च एक मुंडा बैठा रहा, कहने तू नहीं खड़ा है, कहना मैं सारे का फुफड़ लगता है।
1: क्लासिक पंजाबी कॉमेडी, हरमन रेडियो, हरमन रेडियो।

0: भाई धोती क्या और जिहड़े साडे मराशी भांडा है ये जे ट्रैफिक पुलिस दे विच भर्ती हो जान ते ए चलान किवें कट्टणगे।
1: महाराज ऐसा कर गड्डी जरा साइड ते ला ऐ लो जनाब लग गई ऐ लिया फिर दे ऐ कागज लिया किसे चेक करिए जनाब इदा करो ले दे के कर लो तू सानू के देना महाराज ऐ जनाब आलू फड़ो 100 रुपया 100 रुपया हौलदार है जल सुना इधर फिटे मुतरा इधर इन इदा कर 99 रुपये बाकी मोड़ दे का तो मोड़ा केड़ी गल मोड़ा फिटे मुतेरा पाग लगे रहन खेतां च साग लगे रहन बाजे नू राग लगे रहन भावे आपा पुलिस लग गए भावे आपा पुलिस लग गए पर वधाई 11 रुपये लैने आ।
0: मैं भी पोती छा अज कल साजी भी प्रोग्राम फड़न लग पे है।
2: मैं भी काकी गल सुन थोड़े दिन पहले एक तबले आले ते बाजे आले ने ब्याह दा प्रोग्राम फड़ लिया। जदो प्रोग्राम फड़ लिया ना हुण बाजे आला नाले बाजा बजाउंदा ते नाले गाउंदा।
0: अच्छा
2: तबले आले ने पता की कीता
0: की
2: अख बचा के ना 4 चमचे अपनी जेब च पा ले
0: छड के
2: होर किसी ने नहीं देखिया बाजे आले ने देख लिया। बाजे आले ने सोचिया जे किसी ने होर ने देख लिया तां मेरी तां होजूगी बेइज्जती।
0: भाई ओ तां है।
2: लै भी काके बाजे आले ने अनाउंसमेंट कर दित्ती।
0: केड़ी
2: लो भी गल इदां दोस्तों मैं गाण दे नाल नाल इक जादूगर भी आ तुसी आए करो 4 चमचे लिया के मेरी जेब च पा दियो ते तवले वाली दी जेब चो कढ लियो।
0: ना फिर तवले वाली दी जेब चो चम्मच निकले।
2: ले काके चम्मच की निकले सी मंडीर ने चमचे बाजे आले दी जेब ता पाते।
0: अच्छा
2: ते तवले आला जेब नू हाथ ना लान दवे।
0: आहा
2: ते बाजे आला पता की कहंदा
0: की
2: दापा दानी सारेगा रे चम्मच दे दापा दानी सारेगा रे चम्मच दे।
0: ना फिर अग्गे तवले वाला की कहंदा।
2: तबले आला पता की कहंदा
0: की
2: दिन्ना तिरकड़ता था दिन्ना प्रोग्राम तो बाद में दिन्ना दिन्ना तिरकड़ता था दिन्ना प्रोग्राम तो बाद में दिन्ना।
0: भाई को पीछा तो जो कोई कलाकार गाउंदा है और पैलेस दे विचों प्रोग्राम करके बाहर आउंदा है बाहर जिहड़ियां बुढ़िया मंगण वालियां खड़ियां हुंदियां ओह कलाकार कोल किवें पैसे मंगदियां।
2: लै फिर सुन वे गाण वालिया वे गाण वालिया दैके जामी रब करे तू शू सिकंदर बन जावे वे रब करे तू गाउंदा गाउंदा समाना ते चढ़ जावे दैके जा गरीबणियां सवेर दियां बैठियां। अगे गाउण वाला पता की कहंदा
0: की
3: ओ चलो चलो गड्डी दे कोल भीड़ पाई आ
2: फिर पता की कहनी है
0: की कहंदियां
2: ते जा चला जा गाण वालिया जिन्ना क तू गाना इन्ना क साडी बकरी गा लैंदी है।
4: कॉमेडी आवर

0: ओहो आ भी फाटक बंद, जदों भी किते जल्दी जाना हुंदा अगे फाटक बंद मिलदे। तुसी यार पिछे जे बाहरले मुल्क जाके आए हो, बाहरले मुल्क च भी फाटक दा इही हाल है?
1: ना ना ना ना ना, ना। बाहरले मुल्क च सब कुछ ऑटोमेटिक है यार, फाटक है ही नहीं, बस लाइटां ने। गड्डी आउण तो अद्धा मिंट पहला लाल लाइट हो जानी है, सारियां गड्डियां कारां मोटर गड्डियां रुक जानियां।
0: अच्छा,
1: ते गड्डी दा आखरी डब्बा लंघन सार हरी लाइट हो जानी है, सारियां गड्डियां दोबारे चलन लग जांदियां ने। यानी के फाटक ते वध तों वध 50 सेकंड लगदे ने।
0: बल्ले बल्ले बल्ले।
1: ते अपने मुल्क च आ हाल है के गड्डी लुधियाणे तों जलंधर नूं चलदी है, फाटक सरहंद वाला बाद पता लगता यार गड्डी जलंधर चली गई, फिर सोचते ने चलो कोई गल नहीं सरहंद वाली भी आने वाली है, अद्धे घंटे नूं कट्ठे ही खोलांगे। अद्धे घंटे बाद सरहंद वाली टूटी जी गड्डी आउंदी है, तैनूं देख के खानदानी बंदे दे शर्म नाल सिर झुक जांदे ने, यार इहदे पिछे खड़े रहे पौणा घंटा। कोटकपूरे वाले फाटक वार तां तुसीं सारे ने सुनी हो।
2: तुसीं सुन रहे हो अपना हरमन रेडियो, 24 घंटे 7 दिन आस्ट्रेलिया दा पहला पंजाबी रेडियो। हरमन रेडियो, हरमन।

0: Harman Radio 24/7.
1: बहुते लोग 25 साल की उम्र विच मर मुक जाते हैं, बस उन्हां दा अंतम संस्कार उदों तक नहीं किया जाता जदों तक वो 75 साल दे नहीं हो जाते। विचार बेंजामिन फ्रैंकलिन। चंगे विचारां लई जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

0: हरमन रेडियो 24 घंटे 7 दिन।
1: तेरे जख्म वर की मिली ना कोई मरहम, तेरे दर्द जही ना कोई दवा दिखी। तेरे जख्म वर की मिली ना कोई मरहम, तेरे दर्द जही ना कोई दवा दिखी। तेरा जिक्र दुखां दा इलाज दिठा, तेरा ना रोकां दी शिफा दिखी। जे ना इश्क तेरे दी अमान मांगदा, बनती दार दिलदार मनसूर दीना। तेग सीस सरमत दा लौन वाली, तैथो बनी ओदी दिल रुबा दिखी। तेरी गल ते असर तो रह लेंदे, दरस जिंदगी दा इलियास वरगे। तेरे प्यार दी टोर विच जुलमता दे, खिजर वर्गियां दी रहनुमा दिखी। तेरे किसे तालब जद आवाज दिती, सूरज मंजला मारता परत आया। सीने जख्म मोहब्बत दा लान ते ले, चन तेरी उंगल दी अदा दिखी। बाग विच जाके नरगस वांगरा ओ पेच संबल दी चुल्फ ते वेखते ने। तेरी गली विच महक दी वांग फुला, जिन्ना सदा बहार हवा दिखी। तेरे पैरां नू चुमदिया सार उन्नू हरम पाक दा मर्तबा फिर मिलिया। वेड़े विच जड़े आप कई सदियां, रौनक बुत्तां ने काबे दी ला दिखी। तू कशकोल जिस मंगते दा पूरिया चा, सिर ते उस ते रख्या ताज दुनिया। तख्त शाही उदे पैरां हेठ आया, सरदल तेरे दर दी जिस गदा दिखी। तैनू वेख तेरे वेखण वालिया ने, जदो अपने आप विच नजर मारी। ना कोई गुनेगारा ने गुनाह डिठा, ना खताकारा कोई खता दिखी। सितमगार जुबान दराज देखो, बदला नेक दुआ दा रहा लेंदा। बदले वैर ते वैरी नू प्यार मिलिया, बख्शी तेरे मुजरम दी सजा दिखी। फानी जिंदगी नू क्यों ना गलों लाउंदे, अबदी जिंदगी दी दौलत लैन वाले। तेरे वार ने वारिया शीश जिन्ना, टलदी उन्ना दे सिरों कजा दिखी। तेरे रब कोलो तो जहान अंदर उच्चे मर्तवे मिले फकीर तेनो। तेरे कोल कलाम खुदा दाए, अमर रब दा तेरी रजा दिखी। अमर रब दा तेरी रजा दिखी।

0: अर्बन रेडियो दिल पंजाबी जज्बा पंजाबी पंजाबी।
1: रोज डे ते महबूब नू फुल दिते जांदे ने, कुछ फुल स्वीकार हो जांदे ने, बन जांदा है अटुट रिश्ता, समाज भी जिस नू कबूलदा है, कई बारी अंत तक निभदा है, जिंदगी सूहे फुल्लां वांग जापदी है, पर कुछ फुल मधोले जांदे ने पैरां थले, दिल टुट जा जांदा है, जद ना कामयाबी हाथ आउंदी है, फुल खारां च बदल जांदे ने, फिर नित चुभदे ही रहिंदे ने, ते कुछ फुल ऐसे भी हुंदे ने, एक दूजे नूं स्वीकार हुंदे ने, दिलां दा रिश्ता भी बनदा है, पर दुनिया कबूल नहीं करदी, ये फुल किताबां च रखे रह जांदे ने, ते कुछ रिश्ते बस फुल्लां तक ही रह जांदे ने। फुल्लां दी किस्मत विच वी की

0: बात करके तो तसल्ली कर रहे हैं कि कहीं कोई सांस बाकी तो नहीं रही।
1: हरमन रेडियो 24 घंटे सत्ते।
2: गुरतेज कुहार वाला साहब का एक रंग थोड़े तक हाजिर है। किताबां वर्गियां लोकां नूं खुद विच जोड़ लैंदा हां, मिले गहरा किते लिखिया तां वरका मोड़ लैंदा हां। जे खुले जान देवां जानगे तेरी तरफ सारे, अजे कुछ रस्तियां नूं अपने वल मोड़ लैंदा हां। दुआ दिंदा हां जिस अंबर नूं पूर्णमाशियां वाली, मैं उसकी रात चो हर रोज तारे तोड़ लैंदा हां। वहा दिंदा हां फुलां वांग जो मेरे नहीं रहिंदे, विदाई बाद फिर पानी पिछां नूं मोड़ लैंदा हां। मैं अपनी नींद विच भी जागदा रहना किसी थां तों, जदों सच होण नूं आवे तां सुपना तोड़ लैंदा हां। किताबां वरगियां लोकां नूं खुद विच जोड़ लैंदा हां। गुरतेज कुहार वाला होना दा अंदाज, परमिंदर सिंह पापा टोई टोई दी जबानी।

मुहावरे बारे फ्रांस की कहावत है कि मुहावरा अनुभव का बच्चा हुंदा है। चंगे विचार विचारो अते जिंदगी विच लागू करो।

0: ब्लॉक दे इना 60 मिंटा विच तुसी सुन रहे हो पंजाबी दे नवे प्यार परे गीत, सैड गीत, पंजाबी शायरी, विचार अते पुराना गीत।
1: हार्मन रेडियो 24/7।
2: तेरे दर दा बूहा खड़का के मुड़ गया है, वो तेरे घर दा बूहा खड़का के मुड़ गया है। तू जिस ते चेतियां च बैठा सी लीन होया।
3: Harman Radio
1: 24/7।
4: सैड या रोमांटिक गीतां दे शौकीन हो।

विच खड़न ले तू भी ना सी मौजूद, तेरे हक विच खड़न ले पूरा शहर हाजिर से, जदों मैं गैर हाजिर से तेरे नाल गैर हाजिर से। एक तो बाद दूजा बैक।

0: आरवन रेडियो दिल पंजाबी जज्बा पंजाबी, पंजाबी।
1: नमस्कार सत श्री अकाल हरमन रेडियो सुनने वाले तमाम श्रोताओं को मैं उदित नारायण की तरफ से मेरा प्यार भरा नमस्कार।

सुनो भी दोस्तों, सुनो भी दोस्तों, भावे बैठे हुए हो जा खड़े हुए हो, घर वाली नाल रसे हुए हो जा फिर बापू नाल लड़े हुए हो, काम ते जा रहे हो जा फिर काम तो घर वापस आ रहे हो, ओ भाई नहा रहे हो के कुछ खा रहे हो जा फिर घर विच रौला रप्पा पा रहे ने न्याणे, ओ भाई दुखी ना होवो, सब गल्लां छड्डो आ सुनो हरमा रेडियो तो गाने। तुसी दोस्तों चाहे पिंडां विच बसदे हो जां फिर बसदे हो पिछे शहरां, हरमा रेडियो सदा मंगदा तुहाडियां खैरां।

0: ब्लॉक दे इना 60 मिनटा विच तुसी सुन रहे हो पंजाबी दे नवे प्यार भरे गीत, सैड गीत, पंजाबी शायरी, विचार अते पुराना गीत।
1: हार्मन रेडियो 24/7।
2: सैड जां रोमांटिक गीतां दे शौकीन हो।

0: रोज शाम 8 तो 11 तक सीनी समय के अनुसार
1: अपनी बिजनेस दी तरक्की लई तुसी भी हरमन रेडियो दियां सेवावां हासिल कर सकदे हो। हरमन रेडियो ते अपने बिजनेस दी ऐड देने लई जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करने लई संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन च विजिट करो।
2: तुसी सुन रहे हो अपना हरमन रेडियो 24 घंटे 7 दिन ऑस्ट्रेलिया दा पहला पंजाबी रेडियो हरमन रेडियो 24 घंटे
3: लॉक दे इना 60 मिनटा विच तुसी सुन रहे हो पंजाबी दे नवे प्यार भरे गीत सैड गीत पंजाबी शायरी विचार अते पुराना गीत।
4: हरमन रेडियो 24/7
0: सैड जां रोमांटिक गीतां दे शौकीन हो

0: हरमन रेडियो
1: 24 घंटे सत्ते दिन।
2: स्कॉटलैंड दी पैसे बारे एक कहावत अनुसार खाली जेबा वाला बंदा बाजार चो काली नाल लगदा है। लेखक परमिंदर सोडी किताब संसार प्रसिद्ध मुहावरे चंगे अते सोहणे विचारां नाल जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

तू ना मिलदा वे ऐदा खैर नहीं हुंदी। एक दिन सामने आ जांदा झूठ दे सजना पैर नहीं हुंदे। जो सच दी मंडी च कदी सौखा विकया नहीं तू धोखा देवेगा खिड़ा मुंह ते लिखिया सी। तू धोखा देवेगा खिड़ा मुंह ते लिखिया सी।

0: हार्मन रेडियो
1: 24/7
2: पुत्ता परदेसिया नो दर्शन मावा रुस कईयां लोरियां ते निकलन हामा हर वेले भुए उत्ते नजराने लखियां उमरां ते कद छोटे उड़ीकाने लमियां हंजू खारे पी पी के खुरदी मैं जावां ते पुत्ता परदेसियां नू तरसन मावां खोरे केड़े पत्थरां दे शहर च वस्यां खोरे केड़े दुनिया ते रंग विच जा रच्यां रास नाईयां तैनो पिंड दियां रावां पुत्ता परदेसियां नू तरसन मावां कन्नू रब्बा पुत दित्ते ना करवाउनो फिर कन्नू दूर कीते दिल तरसाउनो केड़े माड़े कर्मा दियां दित्तियां ने सजावां पुत्ता परदेसियां नू तरसन मावां पुत्तरां दे आउण दे सुपने सजा के नैना च भुलेखियां दे कजले नू पाके नौहां पुत्तां पोतियां लई करन दुआवां पुत्तां परदेसियां नू तरसन मावां पुत्तां परदेसियां नू

0: हरमन रेडियो रेडियो कमाल बा कमाल
1: मेहनती शायर जगी जौहल दी गल्लां तुहाडे नाल सांझियां करदे आं। ओह लिखदे ने, मेरे मस्तक अंदर बलदी सोच कहे कदे भी खड़ के सूरज नहीं उड़ीकीदा, दरियावां दे वांग जे वगणा चाहुंदे हां तां फिर अपना रस्ता आप उलीकीदा।

0: ਬਲੌਕ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 60 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਗੀਤ, ਸੈਡ ਗੀਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਗੀਤ।
1: ਹਾਰਮਨ ਰੇਡੀਓ 24/7।
2: ਤੂੰ ਤੇ ਮਰੀਦ ਹੋਇਓ ਵੇ ਚੰਨਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਵਲ ਯਾਰ ਪਈ ਵੇਖਾਂ। ਵੇ ਤੂੰ ਤੇ ਖਿੜੇ ਗੁਲਾਬ ਚੋਂ ਉੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੰਢਿਆਂ ਥੀ ਦੁਲਾਰ ਪਈ ਵੇਖਾਂ। तू ढारियां दा इश्क अलैदा, तू ढारियां दा इश्क अलैदा, वे किंज मैं महल मनार पई वेखा। ना अल्फ तो अगे इलम तेरा, मैं अकलां वालियां चों गुवार पई वेखा। चढ़दे दी लाली जिहा नूर वे तेरा, चढ़दे दी लाली जिहा नूर वे तेरा, झीलां दे कंढियां ते अंग्यार पई वेखा। तू फेरे तस्बी दरगाही बैठा, मैं तेरे विच प्यार पई वेखा। तेरी दिख दे सोहज दी सीमा सहज लगे, तेरी दिख दे सोहज दी सीमा सहज लगे, सगल धरत दे विचों जद शिंगार पई वेखा। वे तू कैसा खलजगन पाया जिंद नू, मोइया रूहां अंदर भी इतबार पई वेखा। तवारीख दी बिरहों भी बदरंग जापदी, तवारीख दी बिरहों भी बदरंग जापदी, बैराग दे रंग विच रंगिया कलाकार पई वेखा। जमीरां दे मरे जरवाणियां तो की मैं लैणा, निक्कियां उमरां विच जज्बे दा म्यार पई वेखा। हाड़ा वे मेरा जी करदा सीस चकाउण नूं, हाड़ा वे मेरा जी करदा सीस चकाउण नूं, अमन दे लफजों निकली जद तलवार पई वेखा। अमन दे लफजों निकली जद तलवार पई वेखा।
3: हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया
0: 24 घंटे 7 दिन।
3: सैड जां रोमांटिक गीतां दे शौकीन हो।

0: सुनो और सुनाओ अर्बन रेडियो।
1: अटेंशन, हम अंग्रेजों के जमाने के लिसनर है और ऑस्ट्रेलिया का नंबर वन पंजाबी रेडियो सुन रहे हैं रे, हारमन रेडियो। हाँ,

0: 24/7.
1: रोटी हजम नहीं होंगी, वरतो गोल्डन ग्रेन फ्लोर मिल दा गरेवाल चक्की आटा, ताजा घट केमिकल दी वरतों वाली कणक जेड़ी के सीधी खेतां चो मिल च लई जांदी, आस्ट्रेलिया दा बनिया शुद्ध आटा, ताजा खाओ ते तंदुरुस्त रहो। आटे तो इलावा ताजा बेसन, लड्डुआं लई स्पेशल बेसन, मल्टी ग्रेन आटा, काबली छोले, मसरां दी दाल, चना दाल, सोयाबीन ते बादाम भी साडे अपने प्रोडक्शन हन। वधेरे जानकारी लई विजिट करो गरेवाल गोल्डन ग्रेन .com.au या फोन करो 0428895564।
2: ओ आ गया तुहाडा ताया आस्ट्रेलिया दे ब्रिस्बेन चो। ओ आ जाओ ताया जी, वेलकम। ताया आज रात साडे कोल ही रहना बहुत थोनू। ओ मैं आ ता गया, मैं ता नींद इंडिया आले गद्दे ते आउंदी आ, इथों किथों मिलू इंडिया आले गद्दे। लो ताया आपां लै आउने इंडिया आले गद्दे पंजाबी फर्नीचर तो। पंजाबी फर्नीचर? जी हाँ, पंजाबी फर्नीचर इथों मिलदा, सारा इंडियन फर्नीचर जो भी तुहानू चाहिदा सब इथों मिलू। मंजे, धार्मिक फोटोआं, चादरां, साइकिल, चूल्हे, दातियां, रंबे, कई सब कुछ इथों मिलू। ताया जी लाया था तू मेरी टेंशन ही दूर करती, नाले तेरी ताई कहिंदी सी भी पता करी इंडियन बॉक्स बेड दा, ओनू वाला फिकर लगा रहिंदा लीड़े लते सामने दा। लिया फिर पता लिखा फिर पंजाबी फर्नीचर दा, लिखो फिर 2A130 किंगस्टन रोड अंडरवुड ब्रिस्बेन। अकाल कर लियो ताया जी 0404000536 ते। वेबसाइट है जी punjabifurniture.com.au। नवी अपडेशन दे लई फॉलो करो फेसबुक पेज नू @punjabifurniture।
3: अपनी बिजनेस दी तरक्की लई तुसी भी हरमन रेडियो दीआं सेवावां हासिल कर सकदे हो। हरमन रेडियो ते अपनी बिजनेस दी ऐड देण लई जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नू स्पॉन्सर करन लई संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन च विजिट करो।
4: तुसी सुन रहे हो अपना हरमन रेडियो, 24 घंटे 7 दिन आस्ट्रेलिया दा पहला पंजाबी रेडियो। हरमन रेडियो 24 घंटे
5: हरमन रेडियो
6: सुनते रहो पुराने गीतों की खूबसूरत दुनिया। हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया दे संग।

0: हर प्रोग्राम दी जानकारी, रेडियो दी हर गतिविधि ते नजर। ज्वाइन करो साडा फेसबुक पेज facebook.com/harmanradioaustralia जां जुड़ो टेलीग्राम ते telegram.me/harmaninfo। वधेरे जानकारी लई विजिट करो साडी वेबसाइट harmanradio.com।
1: तुसी आनंद मान रहे हो पुराने गीतां दी महफिल दा।

0: तुहाडी आवाज, तुहाडी खबर, तुहाडी कल, तुहाडे अंदाज च। आओ बनाइए समाज नू बेहतर। आले दुआले किन्ना कुछ वापरदा है जो खबरां दा हिस्सा नहीं बनदा। खबर ओ जो बेहतर समाज दा निर्माण करे। तां फिर आओ भेजो अपने आले दुआले दीआं खबरां। तुहाडी आवाज, तुहाडी खबर, क्योंकि गल इंज बनदी है।
1: मेरी पसंद दे गीतां दा आनंद माणन दे लई तुसी हो हरमन रेडियो ते अपनी दोस्त सीमा दे नाल।

पंजाब गोरा दी कृपा दे नाल वसदाए बंधन वाले बंध के पंज दरियावां पानी अज भी इको नए विच वगदाए। सतिकाल दोस्तों, मैं तो अपना हरजीत हरमन ते तुसी मेरे नाल ही रेडियो हरमन रेडियो सुन रहे हो ते आप सब नू बहुत बहुत मुबारक। हरमन रेडियो दी शुरुआत हुई है जिहड़ा कि संगीतक समाजिक ते होर तुहाडे जिंदगी दे नाल संबंधित हर एक विषय दे टॉपिकां नू लैके आ रहे हैं ते मेरे वलों आप सब नू बहुत मुबारक। परमात्मा आप सब नू चढ़दी कला बख्शे।

0: हरमन रेडियो नो तुसी कई तरीके दे नाल सुन सकते हो। एप्पल ऐप स्टोर तो तुसी आईफोन आईपैड अति आईपॉड टच ले हरमन रेडियो सर्च करो। एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म ते तुसी गूगल प्ले स्टोर तो फ्री डाउनलोड करो। ब्लैकबेरी नोकिया अति विंडो मोबाइल ले तुसी ट्यून इन ऐप डाउनलोड करके हरमन रेडियो सर्च करो। हरमन रेडियो .com ते भी तुसी सुन सकते हो। कोई भी वाई फाई रेडियो सेट ते भी साडे चैनल उपलब्ध हन।
1: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसी

योग्यता बारे सियाने कहंदे हन कि एक रस्सी 100 लकड़ियां नू बन सकती है। चंगे विचार विचारो अते जिंदगी विच लागू करो।

0: विश्वास रख इस तों परे मैं की कहां, आस रख विश्वास रख इस तों परे मैं की कहां, इस तरह जा उस तरह खुश रह जिवें मैं खुश रहा।
1: तुहाडे मन दी रीझ पुगावांगे, मन चाहे असीं गीत सुनावांगे, हर मन रेडियो ते।

मुसीबत बारे अफ्रीका दी कहावत है कि जद मुसीबत आउंदी है ता नाल अपने रिश्तेदारां नूं भी लेके आउंदी है।

0: सुनावा खान सियाणियां दा ज्ञान। लो जी अज दा मुहावरा हमसाए मां पियो जाए।
1: इस दा मतलब है कि गवांडी भी परावां वर्गे हुंदे हन।
0: मुहावे अते अखाण साडी अमीर सभ्यता दियां निशानियां। हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया
2: एक बार फिर दस दिए भाई तुसी पुराने गीत सुनने ना है मशहूर मशहूर गीत दोपहर नू 12 बजे तो लेके 1 बजे तक गाने लाई छड़ने इसे गुगे गाई छड़ने सुन वाले बस एन मगद मोहद कर देने उन्हां नू चेता ही भुल जा करे भी टाइम हो गया इना पाले हुणे गड्डे गां लै जा करन कोबरम तो पता लगे भी 200 मील गां आ गए ऐदां दे गीत सिटी सुनिया।

कोशिशां सदा रहियां ने कि कुछ अजिहा करिए कि साडे आपणियां नूं सदा माण रहे। तुहाडे संग तुहाडे तों तुहाडे लई ही सदा ए आवाज है। बहुत कुछ कर चुके हां, बहुत कुछ करना अजे बाकी है। आओ इस काफले संग दिओ सानू सहयोग, तुहाडी हाजरी साडे लई मायने रखदी है। तन मन धन नाल इस प्रवास दे सारथी बनो दोस्तो। हरमन रेडियो तुहाडे सहयोग नूं हमेशा सलाम करेगा। इस दिल पंजाबी दी सुहाणी आवाज पंजाबी नूं स्पोंसर करो। साडी वित्तीय मदद करन लई संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां विजिट करो साडी वैबसाइट harmanradio.com। धन नाल इस प्रवास दे सारथी बनो दोस्तो। हरमन रेडियो तुहाडे सहयोग नूं हमेशा सलाम करेगा। इस दिल पंजाबी दी सुहाणी आवाज पंजाबी नूं स्पोंसर करो। साडी वित्तीय मदद करन लई संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां विजिट करो साडी वैबसाइट harmanradio.com।

एक मोराको दे मुहावरे अनुसार जज दा नौकर मर जावे तां उसकी अंतम यात्रा विच हर कोई शामिल हुंदा है, जे जज मर जावे तां उसकी अंतम यात्रा विच कोई भी शामिल नहीं हुंदा। चंगे विचारां लई जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

0: पहाड़ अद्धा सौन है। कपैल पाके नचना तैनू बड़ा महंगा पिया, नच दियां शरियां च हुण मोरा वी तेरी धौण है। तेरे जत सत तों ज्यादा तेरे तरले तों वधीक, पूरना इस कलयुगी खूद उचेरी मौन है। किसाड़ के मेरा लहू मैकां फिजा विच वंड दी, साड़ के मेरा लहू मैकां फिजा विच वंड दी, मेरे अंदर दुख रही ए अगरबत्ती कौन है। मेरे अंदर दुख रही ए अगरबत्ती कौन है।
1: मन चाहे असी गीत सुनावांगे हरमन रेडियो जी।

मुहावरे बारे सियाने कहंदे हन कि मुहावरे तां तितलियां वर्गे हुंदे हन, कुछ फड़े जांदे हन, बाकी उड़ जांदे हन। सुने विचारां दे अंग संग

0: साड़ी अमीर सभ्यता दियां निशानियां सहज पक्के सो मिठा होए।
1: इस दा मतलब है कि सबर नाल कम करन नाल कम सही हो जांदा है।
0: मुहावरे अखाण अते पंजाबी बोले हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया
2: ऑस्ट्रेलिया तुहाडे मन दी रीझ पुगावांगे मन चाहे असीं गीत सुनावांगे हरमन रेडियो जी।

देश विदेश विच बैठे पंजाबी सभ्याचार नूं प्यार करने वाले रब वर्गे स्रोतियां नूं तुहाडे अपने हरिंदर संधू दी प्यार भरी सत श्री अकाल। तुसी सुन रहे हो बहुत ही प्यारा, बहुत घट समय विच जिन्हें बड़ी हरमन प्यारता प्राप्त की है तुहाडा अपना रेडियो हरमन रेडियो। मैं आप सब नूं मुबारकां दिंदा, हरमन रेडियो दे प्रबंधकां नूं लख लख मुबारकां जो पंजाबी मां बोली दी सेवा कर रहे ने। एक बार फिर आप सब नूं बहुत बहुत मुबारकां और मेरे वल्लों प्यार भरी सत श्री अकाल।

0: दोस्तों मैं दीप जगदीप ते तुसी सुन रहे हो हरमन रेडियो हरमन रेडियो हुण मैं हरमन रेडियो ते अपनी आवाज विच पंजाबी साहित विचों प्रसिद्ध कहानियां कवितावां अते अणमुल्ले विचार लेके हाजिर हुंदा हां मेरियां होर भी रचनावां सुनन लई अते अपने कीमती सुझा देण लई यूट्यूब पर मेरा चैनल पंजाबी साहित्यक मंच देख सकते हो।
1: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसी

पैसे बारे पुर्तगाल दी एक कहावत अनुसार पैसे नूं खर्चन दी जरूरत बहुती कमाई नालों भी महत्वपूर्ण हुंदी है। लेखक परमिंदर सोडी किताब संसार प्रसिद्ध मुहावरे चंगे अते सोहणे विचारां नाल जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

0: चट्टा के मुंडे साढ़े नाल है जो चंडा गाड़ के बदमाशी करना है।
1: थोड़ा थोड़ा हसना जरूर चाहिए।
2: पतीज दूए दिन मैं घरों निकलिया की वेना के ना कोई बंदा ना बंदे दी जात बचारे पासे पुलिस आले पुलिस आले। मैं एक सिपाही नूं पुछ बैठा मैं क्या काका किसान मेला ता कदों दा निबड़िया अज कोई पुलिस मेला। कहिंदा जी की दसीए सत दिनां दे टंगे दा असीं होयां उतरना प्रधानमंत्री जी ने। मैं क्या यार तुहाडी ड्यूटी तां फिर बड़ी सख्त है कदे प्रधानमंत्री जी ने उतरना हुंदा कदे मुख्यमंत्री जी ने उतरना हुंदा तुसीं तां फिर 24 घंटे टंगे दे टंगे रहिंदे होवोंगे।
3: फिर की कहिंदा?
2: आंदा जी मुख्यमंत्री जी वेले नहीं अजकल बहुता तंग होईदा। मैं क्या ओ क्यों? कहिंदा जी जिद्दण दा उहनां दा हैलीकाप्टर तारां जिहा जिहा उहदे उतरदे कार च ही आउंदे आ उपर नूं घट ही वेंदे आ। मैं क्या चल ओ ते खैर आ तुहानूं सरकार ने डांगा किवें चकाईआं जिवें सारे पंजाब दीआं रजाईआं तुसीं कल्लिआं ने पिंजणीआं हुंदीआं। औखा जिहा हो के कहिंदा बुढ़िया डांगा रजाईआं पिंजण नूं नहीं फड़ाईआं ये तेरे अर्गे बिगड़े बंदे सीधे घर नूं फड़ाईआं। भुल गया एड्डी जल्दी यूनिवर्सिटी च वैटरनी आले मुंडे कुड़ियां किवें खड़काया। मैं कहा जी किवें भुल सकदे आ तुहाडी बहादरी दे कारनामे आ चैनल आले ने बड़ी दूर दूर तक दिखाया। कहिंदा इन्हां ने तां फिर माड़ा जिहा साडी पग नूं हत्थ पाया सी असीं तां बेकसूरां ते बड़े बड़े केस पाया। आ परसों मैं एक मुंडा फड़िया रेलवे स्टेशन तों ते कुड़ी फड़ी बस स्टैंड तों। केस पता केड़ा पाया?
4: केड़ा?
2: साले उत्थे कठे बैठे की चोल मोल करदे हो।
3: देख लो चाचा जी किथे स्टेशन ते किथे अड्डा केस पाता किड्डा वड्डा।
4: टू मच तक्का टू मच तक्का।
2: ओए तक्के वर्गा तक्का पिछे जे मेनू भी थाने ले जाके लगे खिच तू जी करन।
4: फिर
2: मैं भी हो गया गर्म चढ़ गया पारा। मैं क्या बंदे दे पुत बन के परे हो गए बह जाओ मेनू हाथ ना लाया दुआरा। मैं पढ़िया लिखिया आदमी हां मेनू कोई प्लस टू तो घट हाथ ना पावे मैं सब जानदा तारा। फिर बस फिर की मेरा चल गया फोका फेंटर पंजा मिंटा च लैके स्टार्ट करके कैंटर।
4: फिर तो बड़े डरपोक निकले।
2: ओए कानू पतंदर मेरे नालों भी चादर निकले होर ही नवी स्कीम घड़ लिया है। पता उदो लग्या जदों नेड़े दे स्कूल चो हिंदी वाली मटर नहीं फड़ लिया।
4: बताइए मेरे से क्या करवाना है?
2: ओ कहंदे बताना बतूना की आ बस चतरा सीधा कराना है। लाओ जी जदों हिंदी वाली भैन जी अपने टिक्कियां जिड्डे निके निके हत्थां नाल बोले बोले के तफे मारिया करे फिर हासा निकल जाया करे। उधर पुलिस वाले नूं समझ ना आवे वी ये चतरे ते धर दी आ के कुतकधारियां कढ़ दी आ। बस बिंद च त्रेलो त्रेली होके कहंदी
4: भाई साहब ये आपका चतरा मेरे से नहीं सोताना है मेरे को तो स्कूल ही छोड़ दो अभी मास्टर जी का स्वेटर भी बनाना है।
3: फिर भैन जी नूं छड्डिया है?
2: भैन जी नूं तां छड्डिया है वापसी ते पता नहीं बेरोजगार बी एड वालिआं दा कित्थों कैंटर लद लिया।
3: फिर
2: की पुछदा वाले जदों खोलते कैंटर दे डाले चतरा करता उना हवाले सुका इक भी अंग नहीं छड्या। डिगी खोते तो ते गुस्सा कमियार ते पटुआ ने सरकार वाला गुस्सा भी मेरे ते कढ़िया।

0: Carmen Radio 24/7।
1: कविंदर चांद साहब लिखते ने कि चांद चेहरे तो पर्दा हटाया नहीं, एवें शीशे ते शीशा बदलते रहे, अणपछाते रहे, अपने आप तो जिंदगी पर शनाख्त ही करते रहे।

मेहमान बारे जर्मनी दी कहावत है कि मेहमान सब तो चंगा उदो लगदा है जदो ओ जा रहा होवे। सुने विचारां लई सुनदे रहो

0: नंबर लिया मैं लिखाऊ जमा कार्ड 41 56 52 7। ला भी ठीक है ये तो सीटो सानू सुने जरा दुआबे आले आलू सड़ जाते होंगे सड़क ऐसी सीटो सुने
1: अगले अद्धे घंटे सुनोगे।

0: आवी
1: ओ दिने दिने डैम बिलो आथने जे जगदा नहीं जट की आ चीज हौली हौली पता
0: भी चलो काम ते सुनी जाओ हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया।

बारे तेलगू दी कहावत है कि जंगल कटण तो पहला कि ए जरूरी है कि कुहाड़ी दी सलाह ले जावे। विद्या विचारी ता पर उपकारी। हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया।

0: मुहावे अते अखाण साडी अमीर सभ्यता दियां निशानियां। आशा जीवे निराशा मरे।
1: भाव ए है कि दुनिया आस दे सहारे ही चल रही है, लोग आस दे आसरे ही जीवन जी रहे हन।
0: मुहावरे अखाण अते पंजाबी बोले, पंजाबी बोले। हरमन रेडियो, हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया।
2: एक बार फिर दस दिए भाई, तुसी पुराने गीत सुनने ना, है मशहूर मशहूर गीत। दोपहर नू 12 बजे तो लेके 1 बजे तक मलकीत दी ड्यूटी लाती है मालिका ने, ते जुत्ती मैं फेरनी है जे माड़ा गीत लग गया, नहीं तो अजे गीत वधिया लाऊगा। हां मेरे को तबेला जी बहुत पुराने पुराने सोने सोने पाया।

0: बदलाव कुदरत का खूबसूरत नियम है, सो असी बदल रहे हैं ताकि बेहतर कर सकिए। असी आ रहे हैं नवे अंदाज नाल ताकि संवाद होर खूबसूरत बना सकिए। स्टूडियो दे इस पार असी, स्टूडियो दे उस पार तुसी, आओ मिलके जिंदगी दी खूबसूरत जुगलबंदी पेश करिए। तुहाडा सहयोग साडा हौसला, हरमन टीम हरमन परिवार दे संग पूरे मन दे नाल। आखिर कुछ बेहतर करना ही ता जिंदगी दा राग है।
1: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसी आहा।

युद्ध बारे चेकोस्लोवाकिया दी कहावत है कि युद्ध मुक्कण तो बाद हर कोई जरनैल हुंदा है। विद्या विचारी था परोपकारी।

0: कि जंग दे मैदान तो बदतर है साड़ी गुफ्तगु देखो, जंग दे मैदान तो बदतर है साड़ी गुफ्तगु देखो, शब्द हर तलवार हर एक बोल खंजर हो गया।
1: तुहाडे मन दी रीज पुगावांगे, मन चाहे असी गीत सुनावांगे, हर मन रेडियो ते।

मेहमान बारे रवांडा दी कहावत है कि जदों किसे दे कर अंदर वड़न लगो ता अपने सारे औगुण दरवाजे दे बाहर छड़ देने चाहिदे हन। सोहणे विचारां दे अंग संग

0: सुनावा अखाण सियाणिया दा ज्ञान। लो जी अज दा मुहावरा, जेड़ा जाने आप नू ओदे जानिए मां बाप नू।
1: इस दा भाव है कि जद कोई तुहाडे नाल नेकी करे तां ओदे माता पिता आदि नाल नेकी करो ते ओदी नेकी सदा याद रखो।
0: मुहावे अते अखाण साडी अमीर सभ्यता दियां निशानियां। हरमन रेडियो, हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया, आस्ट्रेलिया, आस्ट्रेलिया,
2: आस्ट्रेलिया। दिल वाली गल हर शनिचरवार अते एतवार सुन सकते हो हरमन रेडियो .com ते एंड्रॉइड अते आईफोन एप्लीकेशन दे राही, आईट्यून एप्लीकेशन दे राही या किसी भी वाईफाई सेट दे।

0: आवाज दी खूबसूरत प्रवास हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया ते आप सब दा स्वागत है। रेडियो ते अपने गीतां दी फरमाइश ले तुसी साडे नाल ईमेल अते टेलीग्राम राही जुड़ सकते हो। टेलीग्राम मैसेज करो इस नंबर ते 9195708449। तुसी सानू ईमेल भी कर सकते हो request@harmanradio.com।
1: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसी।

ए ना भुलना कि धरती थोड़े नंगे पैरां दी छू नूं महसूस करके आनंदित हो जांदी है अते हवा थोड़े बालां नाल खेडण लई तांग रही है। विचार खलील जिबरान, चंगे विचारां लई जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

सफर ते शहर तो सारी दुनिया तक दा सफर तय करांगे असी ते तुसी मिल के पूरी सांझ दे नाल प्रोग्राम सांझ तुहाडे अपने रेडियो स्टेशन हरमन रेडियो ते इस सांझ भरे सफर दा हिस्सा

0: अपने बिजनेस की तरक्की ले तुसी भी हरमन रेडियो दी सेवावां हासिल कर सकते हो। हरमन रेडियो ते अपने बिजनेस की एड देने लई जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करने लई संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन विजिट करो।
1: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसी

तभी चलो काम ते सुनी जाओ हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया।

कुछ समा मिसर दी राजधानी च रहन मगरों रूप ते बसंत अपने पिता नू मिलन लई संगलादी पाए। खड़क सैन हुण बुढ़ा हो चुकिया सी अते चंद्रवती कई वरे पहला अपने अंते करन दी आवाज सुन के पश्चाताप विच मोहरा चट के इस फानी दुनिया नू अलविदा आख चुकी सी। दोहां पुत्रां नू मिलके खड़क सैन दे चुरड़ाए चेहरे ते खुशी दी लहर दौड़ गई। उसने बसंत नू संगलादीप दा राज पाक संभाल दिता ते आप बन प्रसत धारण कर लिया। कुछ दिना मगरों रूप मिसर दी राजधानी नू परत आया। हरमन रेडियो चंगा साहित पेश करन लई वचनबद्ध है।

0: गल करिए किसी शायर की खूबसूरत कलम दे विचों निकले ख्याल ने, किरदार होवे ऐसा कि अफसाना ना भुले, किरदार होवे ऐसा कि अफसाना ना भुले, जिंदा रहो एदा कि जमाना ना भुले।
1: तुहाडे मन दी रीज पुगावांगे, मन चाहे कभी गीत सुनावांगे, हर मन रेडियो ते।

एक चंगी दुनिया है उन्हां सब लोकां लई जो ए चंगी तरह जानदे ने कि उन्हां नूं जिंदगी तो की चाहिदा है ते ओ इस नूं हासिल करन विच रुझे होए ने। अजिहे चंगे विचारां लई माणदे रहो आवाज़ दा सफर हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया।

0: आओ सुनावा खान सियाणियां दा ज्ञान। लो जी अज दा मुहावरा पेके गईयां दी खैर कौन पाए।
1: ए अखाण उदों बोलदे हन जदों कोई किसे गैर हाजर बंदे दा हिस्सा मंगे।
0: मुहावे अते अखाण साडी अमीर सभ्यता दियां निशानियां। हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया आस्ट्रेलिया आस्ट्रेलिया।
2: पंजाब जिस नूं कहिंदे ने उह धरती दा सिर्फ उही टोटा नहीं जिथे पंज दरिया वहिंदे सन। इस पंजाब दीआं सरहदां तों बाहर भी धरती उत्ते कई पंजाब वसदे ने। सो इस पंजाब अते उस पंजाब विचली सांझ नाल तुहानूं रूबरू करावांगे प्रोग्राम सांझ राहीं तुहाडे अपने रेडियो स्टेशन हरमन रेडियो उत्ते। सुणदे रहो अते सांझ।

0: केड़े मंत्री ने कीता एक बार फिर लोकतंत्रता नु नीलाम ते केड़ी बॉलीवुड हस्ती दे प्यार दे चर्चे हो गए आम। इस सब नाल सानू जानू करवाएगा तुहाडा अपना हरमन रेडियो। तो जुड़ो हरमन रेडियो दे नाल ते सचेत होवो अपने आले दुआले बारे, अपने देश बारे, विदेश बारे। इत्थे तुहानू मिलणगियां ना सिर्फ खबरां बल्कि खबरां दी मरम्मत भी, सिर्फ ते सिर्फ साडे अपने हरमन रेडियो।
1: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसीं।

सोना अनुभव रहस्यमयी गल्लां नूं जां गुझियां भेद भरियां गल्लां नूं महसूस करना हुंदा है। यह अनुभव हर कला अते साइंस का आधार हुंदा है, जिसनूं यह एहसास ओपरा लगदा है, जेड़ा हैरानी नाल सुन नहीं हो सकदा, जेड़ा विस्माद नाल मस नहीं हो सकदा, वह मरिया बराबर हुंदा है। उसदियां अखां बंद हो चुकियां हुंदियां हन। लेखक आइंस्टाइन, चंगे विचारां लई जुड़े रहो।

0: साड़ी अमीर सभ्यता दिया निशानिया।
1: अखों ओले कत फड़ोले, ए अखाण उदो वर्तदे हन जदों किसे दूर वसदे व्यक्ति बारे किसे प्रकार दी जानकारी ना होण दा संकेत देना होवे।
0: मुहावरे अखाण अते पंजाबी बोले, पंजाबी बोले। हरमन रेडियो, हरमन रेडियो, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया।

0: अपनी बिजनेस की तरक्की ले तुसी भी हरमन रेडियो दियां सेवावां हासिल कर सकदे हो। हरमन रेडियो ते अपने बिजनेस की एड देने लई जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करने लई संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन विजिट करो।
1: तुसी सुन रहे हो अपना हरमन रेडियो 24 घंटे 7 दिन ऑस्ट्रेलिया दा पहला पंजाबी रेडियो हरमन रेडियो।

0: Hi, I'm Udit Narayan and you all are listening to Harman Radio.
1: गुरु की बख्शी सिक्खी नूं समझना होवे तां सिक्खी दा एक सिद्धांत समझना बहुत ही जरूरी है। ओ ए है कि सिख दा शब्द गुरु है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब नूं अज सिख गुरु आख के मत्था टेकदा है। अणगिणत जीवां दा श्री गुरु ग्रंथ साहिब आत्मिक कल्याण कर रहे हन। अनेकां प्राणी बाणी पढ़दे हन, कीर्तन कथा सुणदे हन ते उहनां नूं मानसिक तृप्ति मिलदी है। अज जगत दे सियाणे इस गल नूं मन रहे हन कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे हुंदिआं सिखां नूं किसे देहधारी गुरु दी लोड़ नहीं। विचार ज्ञानी जसवंत सिंह परवाना, सोहणे विचारां लई जुड़े रहो हरमन रेडियो नाल।

तुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। तुरकी बाणी सानू गुरु साहबान ने साडे ते तरस करके अपनी किरपा द्वारा प्रेम पदार्थ बख्शिया है। जद असी गुरबाणी विचारदे हां तां साडियां गुरु साहबां नाल गल्लां हुंदियां हन। गुरु साहबां नाल गल्लां करन दा इक नमाणा जिहा हीला प्रोग्राम गुरबाणी विचार दे तहत हर रोज सुनना शामी हरमन रेडियो ते।

कहते ने भी होमे जरा दीर्घ रोग है, होमे एक बड़ा खतरनाक रोग है, बंदे नूं छोटी छोटी गल का माण हो जाता है पर उस तो वड्डियां वड्डियां गल्लां संसार दे विच विचरदियां वापरदियां रहिंदियां ने। कहते गुड्डी चढ़ी आकाश ते ना कर बहुता माण, सदा ना रहिंदी ऐश ते सदा ना रहिंदा तान। कहिंदे ने आ पाईए गलवकड़ी मंगीए सब दी खैर, सब विच इक्को नूर है फिर क्यों रखिए वैर।

पांच सालां दा ध्रुव अज भी असी आकाश दे विच एक तारा है जिस नूं ध्रुव तारा कहिंदे हां। बाकी तारे अपनी थां ते सदा नहीं दिसदे पर ओ ध्रुव तारा इको थां ते अटल नजर आउंदा है। उस दा नां ही ध्रुव तारा है। ध्रुव ए तारा होवे जां ना ए विचारण वाली गल है पर ए सच है कि इस तारे दी वड्याई ध्रुव करके बनती है। छोटी उम्र दा प्रहलाद नाम दी गल करदा है, जपदा है, निरपय होके जपदा है, परमात्मा दी प्राप्ति हुंदी है, ओ बच्चा जगत प्रसिद्ध भगत हो जांदा है। विचार ज्ञानी जसवंत सिंह परवाना, सोहणे विचारां लई जुड़े रहो हरमन रेडियो नाल।

विचार नाम दी, विचार शब्द दी, विचार अखुट खजाने दी, विचार महान उपदेशां दी, विचार दृढ़ता दी, विचार आत्मक अडोलता दी। प्रोग्राम गुरबाणी विचार विच रोजाना तुहाडे अपने रेडियो हरमन रेडियो ते वधेरे जानकारी लई लॉग इन करो harmanradio.com ते।

गुरु अमरदास जी ने सेवा की है, उन्हें सतगुरां वास्ते जल की सेवा की है। पहले आप इस्नान करना, फिर सतगुरु वास्ते जल लेना, अंदरों बारो निर्मल होके सतगुरु ले जल की सेवा करनी दसदी है कि पवित्रता ते सफाई नाल उन्हां दा बड़ा प्यार सी। उन्हां दिन रात करके ए कर्म कीते, पर बाणी विच किते अपने कर्म दा जिक्र नहीं कीता, सिर्फ सतगुरु दी ही बख्शिश दा वार वार जिक्र कीता है। विचार ज्ञानी जसवंत सिंह परवाना, सोहणे विचारां लई जुड़े रहो हरमन रेडियो नाल।

सिखा पुछया सी पातशाह तुहाडे दर्शन कित्थों करांगे। सतगुरां कहा सी असल दर्शन तां उस दिन ही होणगे जदों तू शीशा देखे ते तेरे सरूप दे विच्चों मेरा सरूप दिसे ते जदों तू अंतर झाती मारे तां अपनी विचार दे विच्चों मेरी विचार दिसे। सिखा पुछया सी पातशाह तुहाडे दर्शन कित्थों करांगे। सतगुरां कहा सी असल दर्शन तां

सरगुण दुनिया विच विचरदे होए असी गुर शब्द दे अखरी स्वरूप गुरबाणी दे लड़ लगना है अते भाव भावनी नाल पाठ कीर्तन ते विचार करनी है जो कि आत्मक पंध लई अत जरूरी है। गुरबाणी पाठ कीर्तन ते विचारां लैके आप सरबत संगत की सेवा विच हाजिर है तुहाडा अपना हरमन रेडियो प्रोग्राम गुरबाणी विचार दे राहीं।

0: अपने बिजनेस की तरक्की ले तुसी भी हरमन रेडियो दी सेवावां हासिल कर सकदे हो। हरमन रेडियो ते अपने बिजनेस की एड देने लई जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करने लई संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन विजिट करो।
1: तुसी सुन रहे हो अपना हरमन रेडियो 24 घंटे 7 दिन ऑस्ट्रेलिया दा पहला पंजाबी रेडियो हरमन रेडियो।

0: दुर मत हरन कल मैं हर को नाम, निस दिन जो नानक भजै सफल होई तय काम। नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर जी दे इन्हां पवित्र बोलां दे नाल देश विदेश तो आवाज दिया जादूमई तरंगा राही अपने हरमन प्यारे हरमन रेडियो नाल जुड़े स्रोतियां नू प्यार प्रीत सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सिडनी आस्ट्रेलिया दे समय मुताबक सवेर दे 5 बज चुके ने ते मैं दलजीत सिंह हाजिर हां। तहाड़ियां बिरतियां नू रब्बी रहमत नाल जोड़न वाला प्रोग्राम लैके गावो सच्ची बाणी। इस रोजाना प्रोग्राम दी तरतीब आप भली भांत जानदे हो, नितनेम दी बाणी जप जी, बाद विच शब्द कीर्तन गुरमत विचारां ते विच विचाले इतिहासक हवालियां दे नाल चंगे विचारां दा आदान प्रदान भी होवेगा। ता आओ जी प्रोग्राम दा आगाज करदे हां नितनेम दी बाणी जप दे नाल।
1: एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपाओ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सैपं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सोचै सोच न होवी जे सोची लहवार, चुपै चुप न होवी जे लाय रहा लिवतार। भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार, सह सियान पाला खोए ता एक न चले नाल। किव सचियारा होई है किव कूड़ै तुटे पाल, हुकुम रजाई चलना नानक लिखिया नाल। हुक्मी होवन आकार हुक्म न केहा जाई, हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वड्याई। हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है, एक न हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पुआई है। हुक्मै अंदर सब को बार हुक्म ना कोए, नानक हुक्मै जे बुझै ता हो मैं कह न कोए।

पर हासो कर ले जाए। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहा समाई, गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई। जे हो जाना आखा नाई, कहना कथन न जाई, गुरा एक दे बुझाई। सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। तीर्थ नावा जित सपावा, बिन पाने के नाय करी। जेती सिरष्ट उपाई वेखा, बिन कर्मा के मिले लई। मत विच रतन जवाहर मानक, जे एक गुर की सिख सुनी। गुरा एक दे बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। जे जुग चारे आर जा, होर दसूनी होए। नवा खना विच जानिए, नाल चले सब कोए। चंगा नाव रखाए कै, जस कीरत जगले। जे तिस नदर न आवे, ता बात न पुछे के। कीटा अंदर कीट कर, दोसी दोस तरै। नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतिया गुण दे। तेहा कोई न सुजे, जे तिस गुण कोई करे। सुनै सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनै तरतवल आकाश। सुनै दीप लोप पाताल, सुनै पोह न सकै काल। नानक

सुनै सेख पीर पातशाह, सुनै अंधे पावे राह, सुनै हाथ होवे असगाह, नानक भगतां सदा विगास, सुनै दुख पाप का नास, मन्ने की गत कई न जाए, जे को

तौल तरम दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत, जे को बुझै होवै सचियार, तौलै उपर केता पार, तरती होर प्रै होर तिस्ते पार, तलै कवन जोर, जी

जो तुद पावे साई पलिका, तू सदा सलामत निरंकार, असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह।

जो तुद भावै साई पलिका, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कै सिर पार होए, अखरी नाम।

जो तुद पावे साई पलीका, तू सदा सलामत निरंकार, परिये हाथ पैर तन दे पानी तोता उतरस खे, मूत पलीती कपड़ होए दे साबुन लिये ओ तोए, परिये मत पापा कै संग, ओ तो पै नावे के रंग, पुन्नी पापी आखन नाए, कर कर करना लिख ले जाओ।

सुनिया मन्या मन कीता पाओ, अंतर गत तीर्थ मल नाओ, सब गुण तेरे मैं ना ही कोई, विन गुण कीते भगत ना होए, स्वस्थ आथ बाणी परमाओ, सत सुहान सदा मन चाओ, कवन सुवेला वक्त कवन, कवन थित कवन वार।

वक्त न पाया का दिया जे लिखन ले कुरान थितवार ना जोगी जान रुत महा ना कोई जा करता सिर ठीक हो साजे आपे जाने सोई केव कर आखा केव सलाही क्यों वरनी केव जाना नानक आखन सबको आख है एक दो एक सियाणा।

पातालां पाताल लख आकाशां आकाश, ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहन एक वात, सैंस अठारा कहन कतेबा असलू एक तात, लेखा होए तां लिखिए लेखे होए विनाश, नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप, साला ही साला एती सुरत न पाईया, नदियां अत्ते वाह पवे समुंद न जानिए समुंद सा सुल्तान, गिरया सेती माल तन कीड़ी तुल न होनी, जेत समनो न विसरे अंत न सिफती कहन न अंत, अंत न करने दे न अंत, अंत न वेखन सुन न अंत, अंत न जापे क्या मन मंत, अंत न जापे कीता आकार, अंत न जापे पारावार, अंत कारण केते बिललाहे ताके अंत न पाए जाए, ए अंत न जाने को बहुता कहिए बहुता होए, वड्डा साहेब ऊंचा थाओ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ, एवड ऊंचा होवे कोए।

केते मूर्ख खाई खाए केतिया दुख भूख सदमार। ए भेदात तेरी दातार बंद खलासी पाने होए, और आख न सके कोए जे को खाएक आखन पाए। ओ जाने।

नानक पातशाही पातशाह अमूल गुण अमूल व्यापार, अमूल व्यापारिये अमूल भंडार, अमूल आवे अमूल ले जाए, अमूल पाए अमूला समाए, अमूल धर्म अमूल दीवान, अमूल तुल अमूल प्रमाण, अमूल बख्शीश

आसन लोए लोए पंडार, जो कुछ पाया सोए कावार, कर कर वेखै सिरजनहार, नानक सचे की साची कार, आदेश तसै आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश, एक दूजी पौ लख होए, लख होए लख वीस, लख लख गेड़ा आखिया, एक नाम जगदीश, ए तरह पत पवड़िया, चढ़िया होए अकीस, सुन गल्ला आकाश की, कीटा आई रीस, नानक नदरी पाईए, कूड़ी कूड़ै ठीस, आखन जोर, चुपै नहीं जोर, जोर न मंगदे न जोर, जोर न जीवन मर न जोर, जोर न राज माल मनसोर, जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुटै संसार, जिस हाथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच न कोए, राती रुती थिती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिन के नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथै सोहन पंच परवान, नदरी करम पवै निशान, कच पकाई उथै पाए, नानक गया जापे जाए, धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का खो करम, केते पवन पानी बैसंतर, केते कान महेश, केते ब्रह्मे कार्त कड़िया, रूप रंग के वेश, केतिया करम भूमि मेर, केते केते तूप देश, केते इंद चंद सूर केते, केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्ध नाथ, केते केते देवेश, केते देव दानव मुन केते, केते रतन समुंद, केतिया खानी, केतिया बाणी, केते पात नरिंद, केतिया सुरती सेव केते, नानक अंतरांत, ज्ञान खंड में ज्ञान

जे को कह पिछे पछताए तिथे कड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथे कड़िए सुरां सिदा की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथे होर न कोई होर तिथे जोध महामलसूर तिन मैं राम रिया भरपूर तिथे सीतो सीता मैं मामा ताके रूप न कथने जाए ना ओ मरे ना ठागे जाए जिन कह राम वसै मन माहे तिथे भगत वसे के लोए करे आनंद सच्चा मन सोए सच खंड वसे नंकार कर कर वेख नदर निहाल तिथे खंड मंडल वर भंड जे को कथे ता अंत नंत तिथे लो लो आकार जिव जिव हुकम तिवै तिवकार वेख विकस कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत बहारा तीरे सुनियार अहरन मत वेद अथियार पौ खला अगन तपताओ पांडा पाओ अमृत तित ताल कड़िए शब्द

रे नर ऐसी करे आणथ तज सारंग धर भरम तु भूला मोहे लपट्यो दासी संग साणथ। खत्री ब्राह्मण सूद वैस सब एके नाम तराणथ। गुरु नानक उपदेश कहत है जो सुने सो पार प्राणत। राग मारू विच पंचम पातशाह जी दे बख्शे ए पवित्र बोल कि हे मनुख तू ए की अनजान पुना वरत रहा है। जेड़ा सारंग तर है परमात्मा अकाल पुरख है ओनू भुलिया होया है ते भरमा विच पै के दासी भाव माया दे संग लगा है। जिन्ने भी जीव ने ओ भावे वर्ण वंड विच खत्री ने ब्राह्मण ने शूदर ने वैश ने सारिया नू तारन लई इको एक कम ओ है परमात्मा दी बंदगी भगती। ए उपदेश है गुरु नानक दे करदा। सतगुरु किन्ने सोहणे बोल कहिंदे ने गुरु नानक उपदेश कहत है। गुरु नानक दा घर तेनू ए उपदेश कह रहा है ते जेड़ा सुनेगा इस उपदेश नू सुनिया मन्निया मन कीता पाओ मन करके जेड़ा इस नू मन लेगा सो पार प्राणत ओह पार होएगा। ता आओ आपां वी गुरु दे उपदेश नू कमाईए और इस भाव सागर तो इस संसार घूमण घेरी तो पार होण दा उपराला करिए। आओ इस कारज लई सरवण करदे हां ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ।

किताब गुरमत मनोविज्ञान दे विच चिंत भवन बारे जसवंत सिंह नेकी कहिंदे हन कि साडे मन पास कल्पना दा एक बड़ा महत्वपूर्ण हथियार है। यह हथियार है भी दो तारा, चाहे तां सीधा वगे चाहे तां उपट्ठा। जे उपट्ठा वगे तां घोर तबाही दा कारण बन सकदा है। किस्म किस्म दे कल्पित भाव ते त्रास बेहिसाबे वधा चढ़ा के सोचियां औकड़ां, मन घड़त बदकिस्मतियां, मानसिक ड्रामेबाजियां, रेत दे किले बनाउणे ते ढाउणे, ऐसे अनेकां कम अमूदी कल्पना करदी रहिंदी है। पूरी तरह सेहतमंद बंदा भी कई वार अपने आप नूं मनोकल्पित बीमारियां दा शिकार मन बैठदा है। मन दी मदारियां वाली हुनरमंदी सानू मनोकल्पित चिंतावां दा शिकार बना सुटदी है। कल्पना ही सानू दो चित्तियां विच पटकाई फिरदी है। इह दुविधा अन्नी हुंदी है, अन्नी कार ही करदी है। इस दा भुलाया होया प्राणी भरमां दे गुबार विच ही भटकदा फिरदा है। इह मन नूं भी अन्ना कर दिंदी है ते उह अन्नी मत दे मगर लग तुरदा है। मन अंदुला अंदुले मत लागे, राग बसंत विच पहले पाशा कहिंदे हन, ते फिर उस दे चितवे परिणामां तों डरदा फिरदा है। डर डर के डरी जाना मन दा शोर ही तां है। पहले पाशा कहिंदे हन, डर डर डरना मन का शोर। मनोकल्पित डरां नाल मनुख अपने शरीर विच ही कंबी मरी जांदा है। अपने मन दे अपनी कल्पना दे सिरजे हुए डरां नाल

0: शक्ति घटती है, ताकत बिनसदी है ते साहस चढ़ जाता है। मनुख नताणा लाचार बेबस होया अपनी किस्मत उत्ते झूरदा है। ऐसी चिंता, ऐसा डर, ऐसा भाव ते ऐसे त्रास ताई कट्टण दा जिस विच सारा संसार फसिया पिया है, की साधन है? इसका इको एक साधन है, निरभउ दा ध्यान, निरभउ दा जाप। पंजवे पातशाह सुखमनी साहब च कहिंदे हन, निरभउ जपै सगल भउ मिटे, प्रभ कृपा ते प्राणी छुटे। तद फिर यह हुंदा है कि निरभउ भए सगल भउ मिटिया राखे राखण।
1: तृष्णा बिरले की ही बूझी ही, कोट जोरे लाख करोड़े, मन ना होरे परे परे ही कौ लूजी ही। पंचम पातशाह जी जो फरमान करदे ने कि मनुख दी तृष्णालू बुद्धि कदे भी रजदी नहीं, भावे उसको लखा करोड़ा दा धन पदार्थ होवे, फिर भी ओ होर होर करके दौड़ा ही फिरदा है। मनमुख अंदर ता होमे ते तृष्णा दा दी मैल जो है नको नक भरी हुई है, ते गुरु दे शब्द दी विचार तो बगैर ऐसी भैड़ी बिरती कारण ओ जम्मण मरण दे चक्कर विच पिया रहिंदा है। मनमुख मैले मल भरे होमे तृष्णा विकार, बिन शब्द है मैल न उतरै मर जम्मे होए खवार। सतगुरु जी तां इउं बख्शिश कर रहे ने कि मनुख अपने अंदरों होमे ते तृष्णा खत्म करके सच्चा नाम जे हिरदे विच वसा ले तां इहो सब तों वड्डा लाहा है मनुखा जीवन दा, कि गुरु दे शब्द दी विचार उसके अंदर वस जावे। होमे तृष्णा मार के सच रखिया उरतार, जग में लाहा एक नाम पाईया गुर विचार। पर जिवें बदल वरदा है ना ते चफेरे हरियावल ही हरियावल, साफ सुथरा शांत जिहा वातावरण बनस्पति नजर आउंदी है, इवें ये तृष्णा दे भांबड़ जो साडे अंदर बल रहे ने ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਲ ਨਾਲ ਠੰਡੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਇਆ ਨੇ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਮੇਘ ਪਠਾਇਆ, ਜਲ ਥਲ ਮਈਲ ਦੈ ਦਿਸ ਵਰਸਾਇਆ, ਸ਼ਾਂਤ ਭਈ ਬੁਝੀ ਸਭ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਸਭ ਠਾਈ ਜੀਉ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੌੜੀ 52 ਅੱਖਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਉਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਘਰ ਬਾਰ ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਜੋਵਨ ਜਵਾਨੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ? ਤੇਰਾ ਅਸਲ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਹੂੰ ਸੰਗ ਨਾ ਧਨ ਚਲੇ, ਗਹਿ ਜੋਬਨ ਨਹਿ ਰਾਜ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਸਿਮਰਤ ਰਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਰੇ ਕਾਜ। ਤਾਂ ਆਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਜੋਬਨ ਦੀ ਇਸ ਅੱਗ ਤੋਂ, ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ, ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੀਏ। ਰੱਬੀ ਕੀਰਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਗ ਆਸਾ ਦੇ ਸ਼ੰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਸ਼ੰਤ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਧਪੁਰੀ ਦੇ ਜਥੇ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਟੇਕ ਹੈ, मैं प्रेम न चाख्या मेरे प्यारे, पाओ करे मन तृष्ण न बुझी मेरे प्यारे, नित आस करे।

जित सतगुर सेवै जित सेवियै शांत पाई। मेरा मन सतगुर प्रीत लगाई। राग वड़हंस की बाणी विचों धन गुरु रामदास पातशाह दे पवित्र बचन कि उस अकाल पुरख नू उठदियां बहिंदियां सौंदियां जागदियां तुरदियां फिरदियां किरत वित करदियां याद रखिया कर सेविया कर। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो जित सेविया शांत पाए। मालिक दा सिमरन कीतिया मन शांत हुंदा है। मेरा मन सतगुरु दो वार तक गीत कर दी। हे मना सतगुरु प्रीत लगाई। सतगुरु दे बचना दे नाल सतगुरु दी बाणी दे नाल प्रीत लगाएगा तो मालिक दा तिहौना हो जाएगा। आओ आपां भी सच्चे सतगुरु दे बचना दे नाल गुरबाणी दे नाल अपनी प्रीत लगाइए ते सरवण करिए एह पवित्र शब्द।

0: दूसरे नूं देख के मन ते प्रभाव पैणा कुदरती गल है। गुरु रामदास इन्ने टिके सन, अंदरों इन्ने अडोल सन के उन्हां नूं कोई हिला नहीं सी सकदा। ओ लोक लाज तो अडोल रहे। सोडियां ने ताने मेणे दिते, बस इको ही जवाब दिता कि मैं सहुरे घर टोकरी नहीं ढोंदा, मैं सतगुरु दे दर ते सेवा कर रहा हूं। विचार ज्ञानी जसवंत सिंह परवाना। सुने विचारां लई जुड़े रहो हरमन रेडियो नाल।
1: असीं जीव औगुणां दे भरे होए, साडे विच इक वी सतगुण नहीं है, पर अकाल पुरख फिर भी साडी पालना कर रहा है। दीने सगले भोजन खान, मोहे निर्गुण एक गुण ना जान। रागौड़ी विच गुरु नानक पातशाह अपने पंजवें जामे विच निर्गुण जीवां नूं प्रभु अगे अरदास करन दी जाच दसदे ने। निर्गुण यारे कौ गुण की जय, हर नाम मेरा मन जापे, संत प्रसाद नानक हर भेटे, मन तन शीतल त्रापै। भगत कबीर जी रागौड़ी विच इउं उपदेश करदे ने कि अकाल पुरख असीं निर्गुण जीव तेरी उपमा किवें गाईए। जीव नूं जिन्ना क तूं प्रकाश बख्शिया है, उन्नी क तां इह जीव तेरी उपमा करदा है। तेरी निर्गुण कथा काए स्यों कही है, ऐसा कोई बबेकी, कहो कबीर जिन दिया पलीता, तिन तैसी चल देखी। राग सुही विच पंचम पातशाह भी इसे तरह ही बख्शिश कर रहे ने कि मैं निर्गुण तेरे गुणा दा की वख्यान करा। जिवें कोई मुल खरीदिया लाला गोला भाव गुलाम, अपनी चतराई नाल गल नहीं कर सकता, उदी गल किसी लेखे विच नहीं पैंदी, क्योंकि सब कुछ तो मालिक नूं उसने सौंप दिता हुंदा है। तो सतगुरु कहिंदे, क्या गुण तेरे सार संभाली, मोहे निर्गुण के दाता रे, बह खरीद क्या करे चतराई, ए जियो पिंड सब थारी। उस बेअंत मालिक ने जो उच्चे तो उच्चे गुणा नाल भरपूर है, उसने मेरी मौत वाली फाही भी कढ दित्ती जदों ने मैनू अपना सेवक बना लिया, तां हुण मेरा तां कुछ भी नहीं ना रहा। गुरबाणी दा फरमान सुनो, बेशुमार बेअंत स्वामी, ऊचो गुणी गहेरो, काट सिलक कीनो अपन दासरो, तो नानक कहां न होरो। रागौड़ी विच पंचम पातशाह जी दा फरमान सुनो, ऐसो है रे खसम हमारा, खिनमे साज सवारन हारा, काम करी जे ठाकर पावा, गीत चरित प्रभ के गुण गावा। ता आओ सत्संगियो, दिन राती अरादो प्यारो, निमख न कीजे टीला। सानू परमात्मा दी बंदगी विच जुड़ जाना चाहिदा है, रती भर भी ढिल नहीं करनी चाहिदी। ता आओ उस मालिक दी बंदगी विच जुड़न लई हीला करिए। राग आसा दी बाणी विच सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी दा बख्शिया उपदेश भाई साहब भाई हरजिंदर सिंह श्रीनगर वालियां दी आवाज विच सरवण करदे हां। शब्द दी टेक है,

को लोचदा जेता जगत सब कोई बिन भागा दर्शन ना थिया भागहीन बहरोई जो हर प्रभ पाणा सो थिया तुर लिखिया न मेटे कोई तुर लिखिया न मेटे कोई। संसार दे विच सारे जीव सतगुरां दे दर्शनां दी तांग रखदे ने। सच पातशाह कहिंदे जिन्ना जगत मैं देख रहा ना सारयां दे मन विच सतगुरां दे दर्शनां दी तांग है, पर बिना भागां तों सतगुरु दे दर्शन नहीं हुंदे। ते जिहड़े

रोजाना सरवण करदे हो प्रोग्राम गावो सच्ची बाणी। इस प्रोग्राम विच नितनेम शब्द कीर्तन गुरबाणी विचारां अते सिख इतिहास पेश

मनमुख दूजे पच मुए ना बूझे विचारा, एक सबाजो दूजा को नहीं किस आगे करें पुकारा। संसार विच विचरदियां ए जीव मन दे पिछे लग के माया माया कूकदा है, ते असलियत तो बेमुख हुंदा जा रहा है। ए नहीं जानदा कि एक अकाल पुरख तो बगैर इसका होर कोई सहारा नहीं, होर किदे अगे दाद फरियाद करेगा। बाजों प्यारे कोई न सारे एक लड़ी कुरलाई, नानक सातन मिले मलाई बिन प्रीतम दुख पाए। हे जीव तू ये गल देख ला अजमा ला कि उस प्यारे अकाल पुरख तो बगैर तेरी कोई होर सार लैण वाला नहीं। इस करके ये गल चेते रख कि वो प्यारा आप अपने नाल मलावे ता ही तू परवान है, नहीं ता तेरे चफेरे दुख ही दुख ने। सतगुर मेली ता पिर रावी, बिकसी अमृत बाणी, नानक सा तन ता पिर रावे जा तिस कै मन पाणी। जिन्ना नू सतगुरु आप जोड़ता है उन्हां हिरदियां विच खेड़ा आ जांदा है। बस ओहो जीव रूपी इस्त्रियां प्रीतम नू सिमरदियां ने जो उस दे मन नू पाउंदियां ने। मालक दी किरपा हुई जो गुरु संत नाल मिलाप होया, मन नू धीरज आया। गुरु ने मैनू निरभउ अकाल पुरख दा नाम मंत्र दे दिता जो मैं गुरु दे शब्द नू अपने जीवन विच कमाया। कर किरपा संत मिले मोहे, तिनते धीरज पाया, संती मंत दियो मोहे, निरभउ गुर का शब्द कमाया। जीत लए ओए महा बिखादी सहज सुहेली बाणी, कहो नानक मन पया परगासा पाया पद निर्वाणी। ता आओ गुरु प्यारियो अपने हिरदियां विच प्रगाश करन लई राग गौड़ी दे संतां विचों धन गुरु नानक देव पातशाह जी दे बख्शिश एक संत नूं शब्द कीर्तन दे रूप विच सरवण करदे हां। शब्द कीर्तन सरवण करा रहे ने भाई साहब भाई गुरमेल सिंह जी हजूरी रागी, ते शब्द दी टेक है बाजों प्यारे कोई न सारे एक कलड़ी कुरलाए, नानक सा तन मिले मलाई बिन प्रीतम दुख पाए।

भी लभ लिया, वैराग भी धारण कर लिया, पर पाया किन्ने? कोई टावा टावा जीव जिदी एक परमात्मा ना लिव ला गई ते ओ वड्डे भागां वाला बन गया। सतगुरां ने बाणी विच बार बार समझाया है कि अकाल पुरख जीव दे हिरदे विच वसदा है। ये मनुख तू कास तो उसनों जंगलां पहाड़ां विच लभदा फिरदा है। ता आओ गुरु प्यारियो, नौवें पातशाह धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे बख्शिश एक शब्द नूं भाई साहब भाई अमरीक सिंह जखमी जी की आवाज विच सरवण करदे हां। शब्द की टेक है

आपे बख्शे मेल मिलाए नानक शरण तुम्हारी। राग रामकली दी बाणी ते धन गुरु नानक देव पातशाह दे बोल। जोगियां दे नाल विचार चर्चा दी झलक पैंदी है क्योंकि गुरबाणी सांझी सगल जहाने है ते उपदेश चो वरना को सांझा। ए जोगियां नाल ही नहीं सारिया नाल सतगुरां दी वार्तालाप है। ए मन माया मोहया औदू औदू ए मन माया ने अपने नाल परोया होया मोहया होया है। हुण माया दे विचों निकलना औखा है पर निकलदे ने गुरमुख निकलदे ने। निकसै शब्द विचारी जिन्हां ने गुर शब्द दी विचार कीती ओह इस माया दे जंजाल विचों निकलदे ने। पर बख्शिश तां मालिक दी होनी है ना। आपे बख्शे मेल मिलाए नानक शरण तुम्हारी। औदू उस अकाल पुरख अगे बेनती कर तू आप ही बख्श के अपने नाल जोड़ सकदा है। मैं तेरी शरण विच आ गया। आओ सच्चे सतगुरु दी शरण विच आईए ते गुर शब्द राही अकाल पुरख अगे बेनती करिए पातशाह अपने चरणा दी

0: गुरु प्यारियो, अमृत वेले दे पिछले पहर तो आप जी गावो सच्ची बाणी प्रोग्राम राही गुरबाणी कीर्तन अति गुरमत विचारां दा आनंद मान रहे सी। असी आस करदे हां कि पिछले करीब तीन घंटियां तो असी गुरबाणी ते गुरमत दे इस अथाह समुंदर विच आप जी नूं अकाल पुरख दे चरण कमलां नाल जोड़न विच अपना फर्ज ठीक ढंग नाल अदा कीता होएगा। फिर भी जे आप जी दे हिरदे विच इस प्रोग्राम नूं होर चंगेरा बनाउण लई कुछ चंगे सुझाव विचारां हन तां आप जी सानूं अपनी फीडबैक जरूर भेजो। चंगे विचार ते सुझावां दा हरमन रेडियो स्वागत करदा है। हुण प्रोग्राम गावो सच्ची बाणी दी इत्थे ही समाप्ति है। गुरबाणी पढ़दियां गुरमत विचारां करदियां होईयां भुल्लां दी माफी। कल मिलदे हां जी, दिओ इजाजत, रब राखा, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: रोटी हजम नहीं हुंदी, वरतो गोल्डन ग्रेन फ्लोर मिल्स दा गरेवाल चक्की आटा, ताजा घट केमिकल दी वरतों वाली कणक जेड़ी कि सीधी खेतां चो मिल च लई जांदी, आस्ट्रेलिया दा बनिया शुद्ध आटा, ताजा खाओ ते तंदुरुस्त रहो। आटे तो इलावा ताजा बेसन, लड्डूआं लई स्पेशल बेसन, मल्टी ग्रेन आटा, काबली छोले, मसरां दी दाल, चना दाल, सोयाबीन ते बादाम भी साडे अपने प्रोडक्ट हन। वधेरे जानकारी लई विजिट करो garewalgoldengrain.com.au या फोन करो 0428895564।
2: आ गया तुहाडा ताया आस्ट्रेलिया दे ब्रिस्बेन चो। ओ आजो आजो ताया जी, वेलकम। ताया अज रात साडे कोल ही रहना पऊ थोनू। ओ मैं आ ता गया, मैं ता नींद इंडिया आले गद्दे ते आउंदी आ, इथों किथों मिलू इंडिया आले गद्दे। लो ताया, आपां लै आउने इंडिया आले गद्दे पंजाबी फर्नीचर तो। पंजाबी फर्नीचर? जी हाँ, पंजाबी फर्नीचर इथों मिलदा, सारा इंडियन फर्नीचर, जो भी तुहानू चाहिदा सब इथों मिलू। मंजे, धार्मिक फोटोआं, चादरां, साइकिल, चूल्हे, दातियां, रंबे, कई सब कुछ इथों मिलू। ताया जी, लाया था तू मेरी टेंशन ही दूर करती। नाले तेरी ताई कहिंदी सी भी पता करी इंडियन बॉक्स बेड दा, ओनू वाला फिकर लगा रहिंदा लीड़े लते सामने दा। लिया फिर पता लिखा फिर पंजाबी फर्नीचर दा। लिखो फिर 2A130 किंगस्टन रोड, अंडरवुड, ब्रिस्बेन। अकाल कर लियो ताया जी 0404000536 ते। वेबसाइट है जी punjabifurniture.com.au। नवी अपडेशन दे लई फॉलो करो फेसबुक पेज नू @punjabifurniture।
3: अपनी बिजनेस दी तरक्की लई तुसी भी हरमन रेडियो दीआं सेवावां हासिल कर सकदे हो। हरमन रेडियो ते अपने बिजनेस दी ऐड देण लई जां किसे भी पसंदीदा प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करन लई संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन च विजिट करो।
4: तुसी सुन रहे हो अपना हरमन रेडियो, 24 घंटे 7 दिन आस्ट्रेलिया दा पहला पंजाबी रेडियो। हरमन रेडियो, हरमन।

0: खूबसूरत दिन की खूबसूरत शुरुआत, सूरज दिया सुनहरी किरणा रुमक दी पौण, आसमानी चादर दे थले लह लहाउंदियां फसलां दे नाल लहरां लहरां तुहाडी सवेर नूं होर निखारन लई पेश है प्रोग्राम लहरां लहरां लहरां लहरां लहरां तुहाडे मन दे वलवलियां दियां लहरां तुहाडे वडमुल्ले विचारां दियां लहरां तुहाडे दिल दे जज्बातां दियां वखरा दिन वखरा दिन वखरी आवाज वखरी आवाज वखरी गिरां वखरी गिरां लहरां सोमवार तो शुक्रवार सिडनी आस्ट्रेलिया समय दे मुताबिक सवेरे 8 बजे तो 10 बजे तक लहरां लहरां
1: सवेर दी फिजा च सरगश्तगी करदे हुए सवेर दी ताजगी संग ताजा खबरां महत्वपूर्ण जानकारियां मनमोहक संगीत सेहत संबंधी सिलसिले मुलाकातां दा दौर अते सरगोशियां मालबन तो माणो मेरे नाल यानी अमरदीप कौर नाल हरमन रेडियो दे प्रोग्राम लहरां दे विच सवेरे 8 बजे तो 10 बजे तक